107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 31 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नीलांबुज श्याम कूमलांग सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को हम सब प्रणाम करते हैं।

जिस प्रकार धागे में पुरी हुई सुई कभी खोती नहीं, उसी प्रकार ईश्वर के नाम और ध्यान में पिरोया हुआ मन कभी संसार के दुखों और भटकाव में खोता नहीं है। प्रभु का स्मरण ही जीवन का सबसे सुरक्षित कवच है।

परमात्मा से कुछ मांगना है तो सदैव संतोष मांगिए, क्योंकि जिसके पास संतोष है उसके पास ईश्वर की दी हुई हर छोटी चीज भी अनमोल हो जाती है, और जिसके पास संतोष नहीं वह महलों में भी रहकर दरिद्र ही रह जाता है।

तहां ना जाइये कंचन बरसे मेह। जिस घर में अतिथि देवो भवा की संकल्पना ना हो, वहां से हरि भी नाराज हो जाते हैं। जिस घर में जाने पर घरवाले देखते ही प्रसन्न ना हो, जिनकी आंखों में प्रेम न बरसे, उस घर में कितना भी लाभ हो नहीं जाना चाहिए।

यतो धर्मो ततो हनुमान, यतो हनुमान ततो जय। बाजार रूपी पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि में, आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

जीवन जिसकी चिंता सदैव हमें रहती है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारे प्रश्न प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। और इस जीवन में जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें ना हों, तो निराश होने के बजाय हर इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समर्पण में ही सच्ची शांति है। वह प्रभु कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेंगे।

जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। यदि आज संघर्ष है तो प्रभु की इच्छा से कल सुख का सवेरा भी निश्चित ही है। आपका कार्य सिर्फ यही है कि आपको धैर्य रखना है, अपनी सच्ची भक्ति पर विश्वास रखना है।

0: राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं इस पूरे संसार को सीता और राम के स्वरूप में अर्थात सिया राम से ओत प्रोत जानती हूँ, इसलिए अपने दोनों हाथों को हाथ जोड़कर इस संपूर्ण जगत को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार के हर प्राणी का सम्मान करना और उसमें ईश्वर को देखना ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रभु कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।
1: क्या करूं क्या करूं,

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ मैं लक्षा स्टूडियो में आ चुकी हूँ आपको सुनवाने आपके पसंदीदा गाने। जी हाँ, आपके साथ जुड़ी रहूंगी अब से लेकर 8 बजे तक हमारे इस प्रोग्राम में। तो भाई आपको बता दूं कि आप इस समय ट्यून इन है 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर FM रेनबो कानपुर के साथ, और उम्मीद है कि हमारे जो गाने हम चूज करेंगे वो आपको भी जरूर पसंद आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज दिन है रविवार का, यानी हमारा प्यारा संडे। 31 मई सन 2026 आज की है तारीख, और आज पूरे हो रहे हैं पुरुषोत्तम मास के पूरे 15 दिन। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये इस समय चल रहा है पुरुषोत्तम यानी अधिक मास का महीना। और भाई अभी बाकी है पूरे आधे महीने, तो जो भी शुभ और पुण्य कर्म आपको करने हो फटाफट कर लीजिए। फिलहाल मैं लक्ष्या आज के गुड मॉर्निंग कानपुर में आपका स्वागत करती हूँ, और आज पूरे दिन आप कौन कौन से प्रोग्राम एंजॉय करने वाले हैं, आइए अब डाल लेते हैं उन कार्यक्रमों पर एक नजर।

देश दुनिया की ताजा जानकारी के लिए सुबह 8 बजे और 8:15 पर होंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। सुबह 8:30 पर सुनिएगा सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9 बजे रोज की तरह रसबहार में होंगे कुछ रस भरे बेहतरीन सॉन्ग्स। रेडियो के 90 वर्ष के साथ होंगी कुछ और खास बातें। पॉप टाइम प्रोग्राम में एंजॉय कीजिएगा कुछ पॉप सॉन्ग्स सुबह 9:45 पर। दिन में 11 बजे सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। 3 बजे होगा प्रोग्राम म्यूजिक आर, जिसे लेकर आज आपके साथ होंगी आरजे महिमा। विश्व तंबाकू दिवस पर आपसे लेंगी कुछ राय और मशवरे और सुनवाएंगी आपको कुछ गाने। और शाम 4 बजे आरजे वंदना लेकर के आएंगी आपके लिए आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर। तो भाई ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की समरी। स्टे ट्यून ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। आप सुन रहे हैं मेरे आनी आरजे लक्ष्य के साथ चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

गुड मॉर्निंग कानपुर, उम्मीद है आपने आज के दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ अपने चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान लिए ईश्वर को याद करते हुए कर ही दी होगी। और चलिए आपकी इसी सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत बनाने के लिए आज का मॉर्निंग मंत्रा ये कह रहा है कि अवसर के रहने की जगह कठिनाइयों के बीच ही होती है। जी हाँ, ये कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। वैसे आपने भी ऐसा महसूस किया ही होगा कि जब आप किसी मुश्किल काम को अंजाम दे रहे होते हैं तो उस दौरान आपको वो युक्ति या ज्ञान प्राप्त होता है जो आपने पहले कभी सीखा या जाना नहीं होता। इसीलिए किसी भी काम को कमतर या कठिन मानकर छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है जनाब। तो आगे बढ़िए, उसे अंजाम दीजिए और बुद्धत्व की राह पर अपना एक और मजबूत कदम बढ़ा दीजिए। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर इस समय सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग कानपुर, मेरे यानी लक्षा के साथ।

फिलहाल आप जान रहे हैं कि आप इस समय सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे यानी लक्षा के साथ।

दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी का एक पोस्ट इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है और मुझे भी बहुत ही टचिंग लगा उनका ये पोस्ट। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि एक युवा ने मुझसे कहा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने उसे सलाह दी, खुद जैसे बनो। नेता बनकर आगे चलने और अनुयायी बनकर पीछे चलने की संस्कृति केवल सामाजिक विषमता को बढ़ावा देती है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि साथ मिलकर चलना हम सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साथ मिलकर चलने से काफ़ी बातें बन जाती हैं और साथ मिलकर के चलने से हम न कभी किसी से बहुत ज़्यादा आगे जा पाएंगे और जब भी चलेंगे तो दूसरे को हमेशा अपने साथ लेकर के चलेंगे, तो हमारे साथ साथ उसकी भी उन्नति होगी, उसकी भी प्रगति होगी। अच्छा आइडिया है, आजमाते हैं हम लोग इसे अपनी लाइफ में, तो ज़रूर हमें भी कुछ ना कुछ बढ़िया समझने का मौका मिलेगा। और भाई, जो दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट है वो मौसम के अपडेट को लेकर भेजे जा रहे संदेश से है। जिस तरह से रातों रात अलर्ट के संदेश अचानक से सोने वालों को जगा रहे हैं, उससे लोगों में अचानक से होने वाले अलर्ट से दिल की धड़कन भाई बढ़ने की बात कही जा रही है। और इससे कुछ डर भी लोगों के अंदर आ रहा है और साथ ही में कुछ ऐसे चुटकीले पोस्ट भी इस समय सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएँ भी सोशल मीडिया पर इस समय तैर रही हैं। इसके अलावा अपने पर्यावरण विद जो पीपल बाबा यानी कि स्वामी प्रेम परिवर्तन जी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी किताब का प्रमोशन किया है। इनकी किताब का नाम है घोस्ट्स ऑन पीपल ट्रीज। फिलहाल मैं यहाँ पर एक सॉन्ग आपके लिए प्रमोट कर रही हूँ, खास आपके लिए। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय गुड मॉर्निंग कानपुर विद मी लक्ष्या। आते हैं अतीत के आईने को लेकर के, आप सुनते रहिए सॉन्ग ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

ये है रेनबो कानपुर, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम। यहाँ से मैं हूँ आज आपके साथ आपकी अपनी लक्षा 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। और अतीत के आईने में क्या कुछ है आज के नाम, आइए डाल लेते हैं एक नजर। आज यानी 31 मई 1774 को भारत में पहली बार डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। देश का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था कोलकाता में। आज के दिन 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, जो भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधारों में एक बड़ा कदम था। 31 मई 1987 को गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 25वां राज्य बना। इसके अलावा 31 मई 2022 को हमने खो दिया था अपने चहेते स्टार बॉलीवुड सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ यानी केके जी को। आज हम मना रहे हैं उनकी पुण्यतिथि। और इतिहास के बाद वर्तमान में आज का दिन क्या कह रहा है ये भी जान ही लेते हैं। आज 31 मई को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक करने के लिए हम तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा मिस अर्थ इंडिया 2013 शोभिता धूलीपाला आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। ये एक ब्यूटी दीवा हैं और सुपर मॉडल हैं और साथ ही इन्हें मिस फोटोजेनिक, मिस इको ब्यूटी और मिस टैलेंट का खिताब भी हासिल हो चुका है। तो भाई शोभिता को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, डेडिकेट कर रहे हैं उनको ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आप सुन रहे हैं म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। मैं हूँ आज लक्ष्य, आपके साथ चल रहा है हमारा मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग कानपुर भाई। हमारे शो को आप अपने मोबाइल और रेडियो के अलावा हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

भाई बिल्कुल सही है, लव इज लाइफ एंड लाइफ इज लव, और ये फंडा जिसने समझ लिया सोचिए उसने जिंदगी का फलसफा समझ लिया। आप सुन रहे हैं 102.2 FM, जी हाँ म्यूजिकल हार्टबीट FM रेनबो कानपुर, चल रहा है हमारा मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग कानपुर। और अब बारी आ चुकी है देश विदेश से जुड़ी ताजा रोचक सकारात्मक खबरों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया की 15 साल की उस स्टूडेंट की जिसने केले के पत्तों, मकई के छिलकों और कई एग्रीकल्चरल वेस्ट से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड तैयार किया है। इनका ये नवाचार पर्यावरण संरक्षण और फीमेल हेल्थ दोनों के लिए बहुत बढ़िया माना जा रहा है। इस प्यारी सी टीनेजर स्टूडेंट का नाम है रहीमा ओवल पेंटी। तो भाई रहीमा ओवल पेंटी इनका नाम है प्यारा सा, और इनके इस इनोवेशन को पेंटी पैड्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत में एक स्टार्टअप के द्वारा पोर्टेबल ग्रीन हाउस विकसित की जा रही है जिसमें लगभग 98% तक पानी बचाया जा सकता है, और इससे किसानों की जो इनकम होगी वो भी बढ़ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल से जून का महीना शुरू होने वाला है, और इसी महीने 21 जून को हम विश्व योग दिवस भी मनाते हैं। तो इसी क्रम में भारत ने पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 लॉन्च की है। इससे होगा क्या भाई, इससे योग को एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी। और एक खास बात इस समय और भी चल रही है अभियान के रूप में, वो ये है कि इस समय देश के कई हिस्सों जैसे वाराणसी, विदर्भ, उज्जैन और कर्नाटक में लोग मानसून आने से पहले वर्षा जल संरक्षण के बारे में अभियान चला रहे हैं। इसके तहत कुओं, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि बरसात के पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। है ना बढ़िया बात। तो चलिए सुनते हैं इसी पर एक बढ़िया सा गाना।

वहीं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में और अपने भारत के भी कई अलग अलग क्षेत्रों में इस समय बारिश हो रही है और फिलहाल तो अपने कानपुर में चमकती धूप चमचमा रही है और आप सुन रहे हैं इस चमचमाती धूप के साथ गुड मॉर्निंग कानपुर लिसनर्स, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी लक्ष्या। चल रहा है हमारा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर, और अब बारी आ चुकी है कि हम आपको स्थानीय खबरों की भी थोड़ी सी जानकारी दे ही दें। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्थानीय खबरों की, और ये खबर अपने कानपुर के लिए तो है ही, साथ ही कुछ और शहरों से भी जुड़ी है। तो खबर ये है कि अपने कानपुर के साथ साथ हरदोई, गोरखपुर, कन्नौज, गाजियाबाद, लखनऊ और हापुड़ में मेगा लेदर, प्लास्टिक, परफ्यूम, केमिकल और फार्मा के पार्कों का तेजी से विकास हो रहा है, जिससे लोगों के लिए एक बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा। साथ ही साथ रोजगार से जुड़ी एक खबर ये भी है कि अब अपने प्रदेश में ही विमानों की सर्विसिंग भी की जाएगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत तो होगी ही, एविएशन के सेक्टर में रोजगार के नए

सर खुलेंगे और अपना कानपुर भी इससे अछूता नहीं रहेगा भैया। फिलहाल जिस तरह देश विदेश और प्रदेश सभी जगह के लोगों का बराबर हक है इन खबरों पर, जी हाँ उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है उस पर भी। रोजगार की बात हम नहीं करते फिलहाल, लेकिन 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आपका पूरा हक है। सुनिए हमारा अगला सॉन्ग आ रहा है हौले हौले।

दोस्तों, जिंदगी के जो सूत्र हैं, जो फंडा है, वो कहीं से भी सीखे जा सकते हैं। सब्र और हौले हौले जब हम कंसिस्टेंसी के साथ जिंदगी में कुछ भी करते हैं और फ्री होकर के पॉजिटिव माइंड के साथ, तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और इसी का जो एग्जाम्पल है वो आज सेट कर दिया है हमारी पूजा सिंह ने। और खेलों की दुनिया में आज 19 साल की पूजा सिंह ने अपना नाम का झंडा गाड़ दिया है। 1.93 मीटर की हाई जंप लगाते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 2012 में सहाना कुमारी ने बनाया था 1.9 मीटर की छलांग का। भाई, आप जानते ही होंगे कि इस समय चल रही है 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये एशियन चैंपियनशिप इस समय हो रही है हांगकांग चाइना में, और आज है इसका आखिरी दिन, यानी आज ये समाप्त हो रही है। इसमें एथलीट पूजा सिंह ने तो गोल्ड मेडल हासिल किया ही, साथ ही निपुण चौहान ने 100 मीटर महिलाओं की रेस में ब्रोंज जीता है, नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर पुरुषों की रेस में गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही में नितिन चंद्रशेखर ने भी नए कीर्तिमान बनाए हैं, गोल्ड अपने नाम किया है, और इस तरह से कुल 36 पदक हमारे पास आ चुके।

चुके हैं और इस बार हम वाकई सर उठा करके शान से कह सकते हैं कि भारत ने वो जीत दर्ज करी है जो कि आज से पहले कभी देखी नहीं गई। तो खेलों की दुनिया में हम उन पदक तालिका में अब काफी ऊपर आ चुके हैं और दूसरे स्थान पर हैं और अब हमने वो पोजीशन हासिल कर ली है जिसमें हम आगे अपना स्वर्णिम भविष्य देख रहे हैं। और साथ ही में एक खेल प्रतियोगिता आज और होनी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल के फाइनल की, ये होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यानी आरसीबी और गुजरात टाइटंस यानी जीटी के बीच। और ये प्रसारण आप देख सकेंगे अपने किसी ना किसी चैनल पर जिस पर आप देखते होंगे और उस पर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये खेल होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। तो फाइनल के लिए सब अपनी पसंदीदा टीमों को प्रमोट करेंगे ज़रूर और उनकी खिताब को देखना उनके लिए एक बहुत ही रोचक सफर रहेगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, आपको सुनवा रही हूँ ये बढ़िया सा गाना, आइए एंजॉय करते हैं। FM रेनबो कानपुर से चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: वेलकम बैक टू द शो, गुड मॉर्निंग कानपुर। मैं हूं आज आपकी लक्ष्य आपके साथ और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर।

बारी आ चुकी है मौसम अपडेट्स की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण आज से 2 जून 2026 के मध्य तेज हवाओं, गरज चमक एवं ओलावृष्टि के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान जो रहेगा वो रहेगा लगभग 34.9 डिग्री सेल्सियस, साथ ही में न्यूनतम 21.4, सापेक्षिक आर्द्रता 84% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 57% रहेगी। साथ ही में हवा की औसत गति 8.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थी कुछ मौसम की जानकारी, और इस जानकारी के साथ साथ बढ़ते हैं एक अगले से प्यारे गाने की ओर।

दोस्तों, जिंदगी की धड़कन के साथ साथ जी हाँ, हमारे स्टूडियो की घड़ी भी धड़क रही है और वो कह रही है कि समय हमारा हो रहा है पूरा। तो बस अब इसी के साथ आज का गुड मॉर्निंग कानपुर यही हो रहा है पूरा। आज का संडे आप फुली इंजॉय करिएगा, मन का खाइएगा, मन का बनाइएगा और खिलाइएगा भी, और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। स्वाद के साथ पूरा कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, साथ ही घर के बुजुर्गों के लिए आज अपने दिन का सबसे अधिक भाग दीजिएगा। तो चलती हूँ फिलहाल के लिए और मिलूंगी आपसे 8:30 पर शुरू की पुरानी महफिल के साथ। फिलहाल अभी जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।

0: प्रयोग करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ

0: जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम

0: अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News,

कुछ कहानियां जो हमें मोटिवेट कर जाती हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात से, आपकी कहानी से कोई मोटिवेट हो जाए।

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्टेड हैं आप। समय हो चुका है सुरों की पुरानी महफिल का, तो एंजॉय करते हैं हमारा ये प्रोग्राम 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर।

भाई सुबह के समय इन दुआओं का अपना एक अलग ही आनंद है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल, और ये आवाज़ें थी मन्ना डे और आशा भोसले की। रवि का म्यूजिक था और साहिर लुधियानवी का संगीत। फिल्म का नाम आंखें।

0: आपकी कसम फिल्म का ये सॉन्ग था और आवाज लता मंगेशकर जी की थी। आर डी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी ने लिरिक्स लिखे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
1: पहला नशा, पहला खुमार।
2: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।
0: सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो की फ्रीक्वेंसी पर।

बेहद खूबसूरत जुगलबंदी। जी हाँ, ये थी आशा भोसले और रफ़ी साहब की, फिल्म का नाम आपकी परछाइयाँ। और इस गीत में म्यूज़िक था मदन मोहन साहब का और राजा मेहंदी अली खान के लिरिक्स थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा जा जा।
2: आर पार फिल्म का ये प्यारा सा गीत था मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में, ओपी नैयर का म्यूज़िक और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था। चलिए बढ़ते हैं शुरू की पुरानी महफिल में थोड़ा और आगे, और एक प्यारा सा गीत आपके नाम।

आज का पंछी फिल्म का ये सॉन्ग था, मुकेश की आवाज, शंकर जयकिशन का म्यूजिक और शैलेंद्र के बोल। इसी के साथ सुरों की पुरानी महफिल अब यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं आपसे रस बहार प्रोग्राम में बस कुछ ही देर बाद।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

حافظ جاسد خبرون. आप सुन रहे हैं 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आपका अपना फेवरेट चैनल एफएम रेनबो कानपुर। और समय हो गया है प्रोग्राम रसबहार का। तो दोस्तों, इस हॉट मौसम में कूल गाने लेकर मैं लक्ष्य हाजिर हूँ प्रोग्राम रस बहार के साथ। और देखिए ना, हमें आपकी कितनी परवाह है, तभी तो हम एकदम टाइम पर हाजिर हो जाते हैं हर बार। वैसे हमें पता है आपको भी हमारी खासी परवाह है, पर क्या वाकई परवाह किस जगह पर किसकी करनी है और क्या हम सच में सीख पाए हैं अभी तक ये सारी बातें? तो चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी और आपकी सोच में क्या बदलाव आता है इस सॉन्ग के बाद। फिलहाल सॉन्ग को सुनिएगा थोड़ा ध्यान से।

0: हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ। क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक। स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में मस्त राम बनना बहुत जरूरी है, और अगर अपने लिए हम ये कर पाए तो सच मानिए हमने अपने लिए जिया, हमने खुद को समय दिया, हमने खुद को सुना और खुद को समझा भी। वैसे ये तो आपने भी फील ही किया होगा कि दूसरों को समझते समझते हमने खुद को कितना हर्ट किया है ना, पर नतीजा हमेशा शिफर ही निकला। जी हाँ, परोपकार करें, सेवा भी करें, पर बिना किसी एंगेजमेंट और अटैचमेंट के, और काम पूरा होते ही निकल पड़े खुद की मस्ती के सफर पे, ना किसी की चाहत के जस्तजू,

न किसी की सिफारिश की। जी हाँ, न किसी की चाहत की जुस्तजू, न किसी की सिफारिश की। मेरी मुझ पर रहमत ही काफी है, जरूरत नहीं तुम्हारी भी।

0: और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, मेरे यानी लक्षा के साथ चल रहा है प्रोग्राम रस बहार। और दोस्तों, परवाह की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, और परवाह से जुड़ी अगर आपने कभी कोई चीज़ महसूस करी हो या कोई फीलिंग हो आपकी, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है arkansomedia@gmail.com, arkansomedia@gmail.com। आपकी हम जो भी फीलिंग है उसे शेयर करेंगे अभी यहीं।

दोस्तों, परवाह एक ऐसा शब्द है जैसे नदी की तरंगों पर फिसलती सूरज की किरण। चाहे जितनी भी गहरी हो नदी, चाहे जितनी भी उफनाती हो, चाहे जितनी भी शांत हो, किरण हमेशा ऊपर ही ऊपर तैरती दिखती है। जैसे नदी ये संदेश देती है कि मेरी चाहे जो भी परिस्थिति हो, मगर तुम मेरे आंचल में ऐसे ही मचलती रहो, इठलाती रहो, खेलती रहो। तो भाई, कुछ ऐसी होती है परवाह, वरना दिखावे तो जमाने में बहुत है। और इस दिखावटी जमाने में दिखावटी परवाह की क्या ही परवाह करना जनाब। और अगर परवाह ही करनी है तो अपने सपनों की कीजिए, अपने अपनों की कीजिए, वरना चुन लीजिए एक ऐसी मंजिल जिससे आप इश्क लड़ा सके, या फिर खूबसूरत रास्तों की ही कर लीजिए पैमाइश। आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, चल रहा है प्रोग्राम रस बहार, हूं मैं लक्ष्य आज आपके साथ।

भाई होने को क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है जनाब। अब देखिए ना, कभी आपने सोचा था क्या कि हम और आप चलते चलते इतने दूर निकल आएंगे कि प्लैटिनम जुबली से भी आगे निकल जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ के ये 90 साल कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। शॉर्ट वेव से मीडियम वेव और मीडियम वेव से FM तक का ये सफ़र वो गोल्डन सफ़र है जिसमें हमारी यादों के साथ साथ हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की यादें भी गुथी हुई हैं। जी हाँ, नहीं भूलता है माँ का रेडियो से चिपक के सुनना, पिताजी की सुबह की शुरुआत, रेडियो की सिग्नेचर ट्यून, ये दोनों एक साथ गतिमान होते थे। और कुछ खास प्रोग्राम्स में हमारे बाबा जी तो बिल्कुल इमोशनल हो जाया करते थे। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की तो बात थी। और अब आज जब 90 साल पूरे हो गए देखते देखते, तो भाई अपनी इस टुगेदरनेस के नाम ये है प्यारा सा खूबसूरत सॉन्ग।

भाई कदम के निशा तो बहुत ही पुख्ता बने हुए हैं और जिन्होंने इन निशानों की गवाही दी है उनमें हम सब और हमारी पीढ़ियां भी शामिल हैं, पीछे की भी और आगे की भी। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, मेरे यानी लक्षा के साथ चल रहा है प्रोग्राम रसबहार और बात हो रही है हमारे खूबसूरत साथ की। 1936 में इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के रूप में शुरू होकर हमारी आज़ादी की यादों के साथ और आज़ादी की यादों के बाद भी

हमारे साथ आज तक कायम है। जी हाँ, हमारा ये रेडियो का सफ़र। और अगर हम बात करें, किस चीज़ की बात करें, बात करें इस बात की कि भाई इसकी विश्वसनीयता क्या रही, तो भाई आप मान लीजिए मेरी बात की सटीक और वैलिड खबरों के लिए आज भी एकमात्र सोर्स माना जाता है आकाशवाणी। और अब पूरी दुनिया में इसके किसी भी चैनल को न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप कहीं से भी ट्यून कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वैसे आपने कैसा महसूस किया इसके साथ, यानी आकाशवाणी से जुड़ी आपकी कोई यादगार बात हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे ईमेल आईडी @airkansomedia@gmail.com पर, यानी airkansomedia@gmail.com, और हम शेयर करेंगे उसे अपनी सभी लिसनर्स के साथ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
2: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।

खूबसूरत सॉन्ग्स के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रसबहार, और हमारे लिसनर्स हमें मेल तो भेज रहे हैं लेकिन वही उनकी जो फरमाइश है अपने सॉन्ग्स के साथ, जबकि हमने पूछा था कि आपकी क्या फीलिंग्स रही हैं इस आकाशवाणी के 90 साल पूरे करने की, तो भाई अभी तक उससे संबंधित कोई मेल हमें प्राप्त नहीं हुई है। रेनबो कानपुर से सुन रहे हैं आप, आपका फेवरेट प्रोग्राम रसबहार, हूं मैं लक्ष्य आज आपके साथ। और चलिए अब बात हमारे रेडियो की चल ही रही है तो आपको याद दिलाते चलें कि आपके अपने इस रेडियो ने खुद को हर बार आपके लिए अपडेट किया है, और इसी क्रम में हमने शुरू किया है आपसे सुझाव मांगने का सिलसिला हर मंथ के चौथे बुधवार को। दिन में 3:45 पर हम आपसे करेंगे मिलाप हमारे मेल मिलाप प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के लिए जो हमारी मेल आईडी है वो है fmmailmilap@gmail.com fmmailmilap@gmail.com। और आप अपने सुझावों के साथ हमें लेटर भी लिख सकते हैं हमारे प्रोग्राम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना छावर रोड 208002 पर।

तो हमेशा आपके लिए अर्जियां देता ही रहता है और आप हमारी इस महफिल में आते भी रहते हैं और आपका आना हमारे लिए बड़ा ही खूबसूरत उपहार है। आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर रसबहार के साथ, आज लक्ष्या हूं आपके साथ। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में आकाशवाणी केंद्रों से लगभग 887 FM ट्रांसमीटर्स पर प्रसारण किया जा रहा है और इसके अलावा लगभग 43 विविध भारती रिले सेंटर्स है, जिसमें से एक हमारा विविध भारती कानपुर भी है। फिलहाल तो अभी आप सुन रहे हैं रेनबो कानपुर, जो है शहर के दिल की धड़कन 102.2 FM। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के लास्ट सॉन्ग की ओर। एंजॉय कीजिए हमारे साथ और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम पॉप टाइम में बस थोड़ी ही देर के बाद।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। लक्ष्य है आज आपके साथ और दोस्तों शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम पॉप टाइम।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

तो ये थे हमारे पॉप टाइम के कुछ खास सॉन्ग्स जिन्हें आपने एंजॉय किया 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, जिसमें आज हमने आपको सुनवाए अभिजीत लकिया ली और हिमेश रेशमिया की आवाजों के गीत। और अब ये प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे, मैं नहीं आरजे महिमा मिलेंगी आपसे म्यूजिक और प्रोग्राम लेकर के दिन में 3 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय और स्टे ट्यून्ड ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए, दिन में 11 बजे होगी मन की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो स्टे ट्यून्ड ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: और संबंधों को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु है। गांव की पगडंडियों से लेकर महानगरों की ऊंची इमारतों तक भारतीय डाक विभाग ने सदियों से लोगों की सुख दुख, आशाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का पवित्र कार्य किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे मेहमान इसी पवित्र भाव से डाक विभाग में बड़ी ही लगन और श्रद्धा भाव के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरी मुराद है भारतीय डाक सेवा के लखनऊ परिक्षेत्र के PMG यानी पोस्ट मास्टर जनरल श्री सुनील कुमार राय साहब। सुनील कुमार जी, सबसे पहले हम आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपका आबाई वतन यानी कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ की है।
2: देखिए, मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर के नाम से। जब बनारस आप जाएंगे तो बनारस से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे,
1: जी जी,
2: पूरब दिशा में बिहार से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में, पर बाउंड्री बिहार से लगी हुई है। तो वहीं गाजीपुर में एक जमानिया तहसील है
1: जी,
2: और उस तहसील में एक सोनहरिया नाम का गाँव है, उसी गाँव की मेरी पैदाइश है।
1: ये कौन सा सन होगा?
2: जी, मेरा जन्म 1975 में हुआ था और संयोग से आज जब आप मुझे बुलाए हैं तो यही महीना था, 21 मई को मेरी जन्मतिथि है।
1: क्या बात, वाह,
2: तो इसी महीने में मैं पैदा हुआ हूँ।
1: बहुत सौभाग्य का महीना है। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई?
2: देखिए, पिताजी मेरे तबका मध्य प्रदेश था और अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। फादर हमारे 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड, SECL साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर होता था बिलासपुर।
1: जी जी।
2: और वहीं एक जगह थी चिरमिरी नाम की, तो उस समय वो सरगुजा जिले में आता था। अब वो जिला सरगुजा भी दो भागों में बट गया, एक सरगुजा और दूसरा कोरिया जिला हो गया। तो कोरिया जिले में वो क्षेत्र आज की डेट पे आता है और वहीं चिरमिरी से ही सरस्वती शिशु मंदिर से हम लोगों की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई। और उसके बाद फिर मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गया था।
1: जी, ये कहाँ तक हुई एजुकेशन आपकी?
2: जी, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब मैं आया तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तीन विषयों में था मेरा, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास और दर्शन शास्त्र। और

0: और जो स्नातकोत्तर मैंने किया तो वो प्राचीन इतिहास विषय में मैंने किया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, दिस वॉज माई सब्जेक्ट। और हिस्ट्री से ही मेरा जेआरएफ भी था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैंने क्वालिफाई किया था, मैं पीएचडी अपनी कर रहा था, लेकिन उसी बीच में भारतीय डाक सेवा में मेरा रिकमेंडेशन हो गया तो पीएचडी जो है थोड़ा बीच में छूट गई। पर इस समय वर्तमान में मैं पुनः, चूंकि मेरी वो पीएचडी की लालसा बनी हुई थी, तो मैंने आईआईएम लखनऊ से पीएचडी में अभी दाखिला लिया हुआ है।
1: अच्छा।
0: जो मैं परसों कर रहा हूं। जी।
1: अच्छा, ये बताइए कि इलाहाबाद के लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की हो, या बाकी जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उनमें अपना सिलेक्शन के लिए इलाहाबाद जाता है। तो क्या ऐसी खास बात देखी आपने इलाहाबाद में, ऐसा क्या है वहाँ?
0: देखिए, दो बातें हैं। एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ, और देश के जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा नाम था, और बड़ी बड़ी शख्सियतें वहां से हुई हैं, जी एन झा, ए एन झा, फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन। तो एक लंबी श्रृंखला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो चाहे साहित्य का क्षेत्र रहा हो, सिनेमा का क्षेत्र रहा हो, विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, राजनीति का क्षेत्र रहा हो। जैसे राजनीति में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय चंद्रशेखर जी जो बलिया से आते थे वो थे, भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे वो थे। तो एक लंबी श्रृंखला थी विश्वविद्यालय में विद्वानों की, वैज्ञानिकों की, राजनीतिज्ञों की, तो हर तरह की प्रतिभा वहां निखरी। और इलाहाबाद के बारे में एक बड़ा खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद शहर अब वर्तमान समय में तो हमारी सरकार ने उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है।
1: हो गया। जी जी जी।
0: लेकिन जब हम लोग गए थे तब वो इलाहाबाद था, और आज भी जो पुराने लोग हैं जब आप उनसे बात करेंगे तो उसे इलाहाबाद के नाम से ही वो बात करते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे प्रोफेसर आर पी त्रिपाठी, एक बार बीबीसी पे उनका इंटरव्यू, मार्क टुली साहब इंटरव्यू उनका ले रहे थे, दैट टाइम आरपी त्रिपाठी साहब लंदन में थे।
1: अच्छा।
0: तो मार्क टुली साहब ने उनसे पूछा कि इलाहाबाद के बारे में आप बताइए कि इलाहाबाद कैसा आपको लगता है। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि देखिए, इलाहाबाद शहर समुद्र में चलने वाले उस जहाज की तरह से है, और हम लोग उस जहाज के किनारे उड़ने वाले उस पक्षी की तरह से हैं, जो बार बार चाहे जितनी दूरी तय कर लें लेकिन फिर से जाके उसी जहाज पे बैठने का मन करता है। तो इलाहाबाद शहर के बारे में प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी साहब ने ये बात कही थी। तो आज भी इलाहाबाद शहर का नाम सुनते ही एक नॉस्टैल्जिया, मतलब ये एक ऐसी इच्छा है कि ऐसा लगता है कि हम फिर से वहां पहुंचे। और चूंकि हम लोगों का तो पूरा जो युवावस्था का काल था वो उसी शहर में गुजरा, उसी शहर ने लिखना सिखाया, उसी शहर ने बोलना सिखाया, उसी शहर ने अभिव्यक्ति दी, उसी शहर ने यहां तक पहुंचाया, तो उस शहर का हमारा जो व्यक्तित्व है उसको सेव करने में, उसको एक दिशा देने में उस शहर का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए उस शहर को भूलना एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपनी माँ को भूल गए, आप अपने पिता को भूल गए, कुछ उस तरह का, कि आप अपनी जन्मदात्री को ही भूल जाएं, उस तरह की बात होगी। तो इसलिए इलाहाबाद शहर को भूल पाना असंभव है।
1: निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी का, हर विद्यार्थी का एक सपना होता है कि उसकी शिक्षा जो है वो इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं,
0: उसे आप जानते होंगे, उसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है।
1: जी जी।
0: आज भी हम लोग अगर कैंपस में घुसते हैं तो मन पूरा रोमांचित हो उठता है कि ये वही जगह थी जहाँ से हमने सब कुछ पाया। जी,
1: वो यादें आज भी संजोए हैं।
0: जी जी।
1: अच्छा, इस दौरान आपके किसी कोई साहित्यिक हस्ताक्षर से, किसी कवियों से, किसी बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात भी हुई इस दौरान आपके वहाँ
0: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? देखिए, उस समय चूंकि हम लोगों का कुल फोकस होता था पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई के क्रम में बड़े बड़े जो हमारा जो जैसे एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट था या फिलोसफी डिपार्टमेंट था, तो जो बड़े स्कॉलर्स थे उनसे अक्सर करके, अब फिलोसफी डिपार्टमेंट में डी एन द्विवेदी एक बड़ा नाम हुआ करता था, जैसे एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था तो हम लोगों के प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर बी डी मिश्रा साहब थे, या हमारी एक टीचर थी जो हम लोगों को पैलियोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाती थी, प्रोफेसर अनामिका राय थी। तो ऐसे मतलब इतिहासकारों से, दार्शनिकों से इतनी मुलाकातें हुई हैं, और उस समय चूंकि हम लोग विद्यार्थी थे तो वो अवसर जैसे कभी कहीं कोई कवि सम्मेलन या मुशायरा या कुछ उस तरह से हो रहा है तो हम लोग भीड़ का हिस्सा होते थे, उधर से बैठ के देखते थे, तब मंच साझा करने का कोई अवसर नहीं था।
1: जी, जी, जी, जी, जी।
0: तो इस रूप में इलाहाबाद का जीवन जो है काफी हद तक निकला।
1: अच्छा, आप जब भारतीय डाक सेवा में पहली बार जब आपकी नियुक्ति हुई, वो कौन सा शहर था, कौन सी जगह थी जहां आपकी पोस्टिंग हुई?
0: देखिए, भारतीय डाक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस

0: कमीशन से जितनी नौकरियां दी जाती हैं उसमें एक नौकरी ये भी है, भारतीय डाक सेवा। और भारतीय डाक सेवा में रिकमेंडेशन के बाद हम लोगों का जो जो स्टाफ कॉलेज है जहां हमारी ट्रेनिंग होती है वो गाजियाबाद में है, पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद के नाम से हम उसे जानते हैं। पोस्टल स्टाफ कॉलेज में आने के पहले हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स होता है जो मसूरी में होता है, कॉमन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक कॉमन आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग यूपीएससी द्वारा ऑफर की जाने वाली 18-20 नौकरियां हैं, उन सारी नौकरियों के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, वो आते हैं। तो वहां से करने के बाद सबसे पहले तो मैं आ गया था वहीं गाजियाबाद, और गाजियाबाद से जो ट्रेनिंग हुई फिर वो कई शहरों में हुई। तो एज ए ट्रेनी मैं हैदराबाद भी ट्रेनिंग किया हूँ, हरियाणा में मैंने ट्रेनिंग की है, और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन के लिए मैं अपने पुराने शहर इलाहाबाद में भी अपनी ट्रेनिंग किया।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो इन 3-4 जगहों पे मिला करके ट्रेनिंग हुई मेरी, और फिर उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी कानपुर शहर में हुई थी। तो मैंने भारतीय डाक सेवा अधिकारी
1: की शुरुआत वो कानपुर
0: से।
1: अच्छा, पढ़ाई के दौरान हमने ये देखा कि ज्यादातर विद्यार्थी रेडियो का सहारा लेते हैं, गाना सुन रहे हैं, गाना चल रहा है और इधर पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में भी कुछ इस तरह का रहा है क्या?
0: हाँ, हम लोगों के लाइफ में था, और मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा मैं मतलब पैसा इकट्ठा करके उस समय करीब 550 की एक रेडियो मैंने खरीदी थी। शाम को बीबीसी का समाचार आता था 7:40 पे।
1: जी जी जी।
0: वो हम लोग नियमित रूप से 1 घंटे का कार्यक्रम होता था जिसे सुनते थे। तो उससे जो देश विदेश की खबरें थी, जो एक विश्लेषण करने की क्षमता थी, उसका विकास होता था बच्चों के, उसमें एक अप्रोच आपका डेवलप होता था बीबीसी के समाचार सुनने से। और जैसा आपने फरमाया तो निश्चित रूप से जब भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता था या पढ़ाई का मन नहीं, तो फिर हम लोग रेडियो में गाने लगा करके और जो पुराने गाने होते थे
1: आए, आए, आए।
0: वो सुनना बड़ा पसंद करते थे हम लोग।
1: अच्छा, कोई गाना ऐसा बताएं जो आपको अभी भी याद हो और जो आपकी पसंदों में भी है और यादों में भी है।
0: देखिए, पुराना तो गाना, जैसे मैंने बताया कि मैं पूर्वांचल के जिले से हूँ, तो एक एक भोजपुरी में मूवी आई थी विदेशिया नाम से।
1: जी जी जी,
0: उसका एक बहुत पुराना गाना है जिसे महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा अपना बसेरे परदेश।
1: क्या बात है।
0: तो ये गाना जो है मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं इसे सुनना।
1: तो आप कहें तो फिर अपने सुनने वालों को
0: जी,
1: गाना
0: बिल्कुल सुनवाएं।
1: लीजिए, गाना सुनिए दोस्तों।

0: ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी की परीक्षा के बाद भारतीय डाक सेवा में आपकी सेवा की शुरुआत हुई, तो जाहिर सी बात है तमाम चैलेंजेस रहे होंगे। उस दौरान की जो वर्किंग थी, आप जब पहली बार गए उस वक्त अंदाजा नहीं होता है तमाम तरह के, एक जो आखिरी आपके विभाग का बंदा है उससे लेकर के पूरे स्टाफ को मैनेज करना बड़ा कठिन कार्य था
1: जी,
0: तो कैसे आपने सबको मैनेज किया?
1: देखिए, दो साल प्रोबेशन के दरमियान हम लोग काफी कुछ चीजें सीख जाते हैं, लेकिन एक हिंदी का बड़ा पुराना मुहावरा है, आप जानते होंगे, कहा जाता है कि बिना मरे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठते हैं तब तक आपको चीजों की समझ नहीं होती है। आपको अपने दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, और कोई भी ऐसी पत्रावली अगर आ रही है, कोई भी इस तरह का विषय आया जिसपे आपको निर्णय लेना है, और जैसे कोई कर्मचारी बड़ा इसमें है कि सर इसे अभी करना है तुरंत ही भेजना है, तो उस तरह की पत्रावलियों में निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा अपने को होल्ड कर लेना चाहिए। उसे आराम से देखिए, आराम से करिए, समझ के। और हर व्यक्ति, आप जो भी सिस्टम में है, जो भी किसी भी विभाग में है, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी निर्णय में। एक आप देखेंगे कि सामूहिक जो निर्णय है, कोई भी निर्णय हुआ तो उसमें कई लोग शामिल होते हैं उस निर्णय की प्रक्रिया में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके पास एकदम एब्रप्ट तरीके से एकदम गलत आ जाएगा या कोई वैसा उस तरह का प्रोड्यूस कर देगा कि आप जो है, तो चूंकि सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप हमेशा ये मान के चलिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है, लोग करते क्या है कि अपने मिलने के दरवाजे, मिलने की जो चैनल्स हैं उसको बंद कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए किसी भी अधिकारी को। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों को सुनेंगे, वो चाहे कर्मचारी डी स्तर का हो, सी स्तर का हो, बी स्तर का हो, या यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कॉमन मैन आता है, आप किसी भी मिलने वाले को उसकी बात को फीडबैक के रूप में लीजिए। जब उसकी बात आप सुनेंगे और समझेंगे तभी निश्चित रूप से आप उसके सम्यक समाधान की ओर पहुंच पाएंगे।
0: आपने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय डाक सेवा में अपनी नौकरी की शुरुआत की, कानपुर से आपकी नौकरी की शुरुआत हुई, जाहिर सी बात है एक अच्छी खासी नौकरी है, समाज में उसका बड़ा रुतबा है, एक रुआब है। माँ बाप सोचते होंगे कि भाई लड़का बड़े अच्छे पद पर आ गया है, जाहिर सी बात है चिंता होती है कि शादी कर ली जाए, विवाह कर दिया जाए इसका
1: जी।
0: तो उस वक्त क्या सीन रहा, माता पिता की तरफ से कोई प्रस्ताव आया या आपके मन में कोई ऐसा ख्याल था?
1: देखिए, शादी विवाह को लेकर के शुरू में तो मेरे दिमाग में था कि विवाह नहीं करना है। अच्छा। प्रारंभिक जब मैं तैयारी शुरू किया था, और इनफैक्ट अच्छा। मैंने जीवन में पहला इंटरव्यू यूपीएससी का ही दिया, 2000 में मैंने पहला इंटरव्यू यूपीएससी का दिया, तो उस समय मेरे दिमाग में ये चलता था कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो शादी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि लगातार मैं इंटरव्यू दे रहा था, रिजल्ट में मतलब हर बार रिजल्ट जो है अनसक्सेसफुल का हो जाता था, तब हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट होते थे
0: जी, जी जी।
1: तो जब चौथा अटेम्प्ट हुआ मेरा, उसके पहले हमारी जो अभी वर्तमान में पत्नी हैं, वो भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही, और वो वहीं से, वो भी पीएचडी कर रही थी। सिलेक्शन के बाद चूंकि मेरा प्रीवियस कमिटमेंट था, तो जो प्रीवियस कमिटमेंट था वही मैंने अपने अभिभावकों के सामने ये प्रस्ताव रखा, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो मैंने बिना किसी डाउरी के, बिना किसी, लोग तो बातें करते हैं ना कि हम दहेज नहीं लेना चाहिए या नहीं लेंगे, और तो मैंने उसे साबित किया है, मैंने किसी तरह के बिना किसी डाउरी और इसके जो मेरा प्रीवियस कमिटमेंट था उसी शादी को, और हमारे अभिभावकों को भी उस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे पिताजी ने बड़ा ही सहज तरीके से इस बात को स्वीकार किया, तो शादी हुई। आज 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा 12th कर चुका है, छोटा बेटा अभी 9th में है।
0: वाह जी। देखिए, परिवार की धुरी हैं आप, परिवार को संगठित रूप से रखा।

0: ना परिवार को खुशहाल रखना एक पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें घर की जो माता है, घर की जो पत्नी है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और वैसे ही डाक विभाग, आप ये देखिए कोई घर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में क्या बल्कि पूरे विश्व में, हर आदमी कुछ न कुछ सुबह इंतजार करता है। उस जमाने में तो अलावा डाक विभाग के कोई ऐसे और माध्यम थे भी नहीं कि पत्र आ रहे हैं, या टेलीफोन का जमाना भी कम था, कभी कभी कुछ कुछ हुआ करते थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डाक विभाग की सबसे बड़ी भूमिका क्या है?
1: देखिए, डाक विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आप ये समझिए कि 170 वर्षों से ज्यादा समय से ये विभाग सेवा दे रहा है, और ये एक सेवा विभाग है। सेवा कैसी करते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि उस दौर में कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन होता
0: जी
1: था
0: जी।
1: और कम्युनिकेशन के साधन के साथ साथ इसमें जैसे जो छोटे निवेशक थे, जो छोटी बचत करने वाले लोग थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट पे 1,65,000 करीब डाकघर हैं पूरे देश में, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और इन 1,65,000 डाकघरों में लगभग 90% जो डाकघर हैं वो रूरल एरिया में हैं। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई एक विभाग अपनी सच्ची सेवा दे रहा है तो वो डाक विभाग है। और डाक विभाग का जो डाकिया था, उसने न केवल सेवा दी है, बल्कि आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे उसने सामाजिक आर्थिक क्रांति करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है डाकिये ने। कैसे, आपको याद होगा कि पहले जब पत्र आया करते थे तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे वो कहते थे कि अरे भैया पढ़ के सुना दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो डाकिया ये बात कहता था कि जो आप हमको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए कि आपका पढ़ के मैं सुना दूं, तो आपके इस पत्र में क्या क्या लिखा होगा मैं भी जानूंगा,
0: मैं भी जान
1: जाऊंगा, तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लिख लेते हैं। तो एक तरीके से उसने शिक्षा को प्रमोट किया, और वो जैसे हमारा जो विभाग है और आम आदमी के बीच सबसे बड़ा इंटरफेस हमारा डाकिया है। सिर्फ इस बात को उसने प्रमोट नहीं किया, उसने सेविंग बैंक, किसी का आरडी का खाता खुलना है, किसी का सेविंग बैंक का खाता खुलना है, ठीक है, किसी का आज की डेट पे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलना है, किसी को एनएससी करना है, किसी को केवीपी करना है, तो डाकिया न केवल उस सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन का माध्यम बना, न केवल उसने शिक्षा को प्रमोट किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी उसने भूमिका निभाई। इसलिए हमारा जो विभाग है वो सेवा विभाग है, और लगातार अपनी सेवा के माध्यम से देश के नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है।
0: अच्छा, डाक विभाग जो है इतना विश्वास कैसे कर लेता है जो आम जनता है? सुनील राय
1: जी,
0: आपके डाक विभाग में इतने वर्षों से आपने एक विश्वास अर्जित किया है, जीता है
1: जी।
0: इसका मूल कारण क्या है?
1: देखिए, इसका मूल कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसे आप आर्थिक मामलों में, आप ऐसा नहीं है, यहाँ एक रुपए की भी अगर चोरी किसी कर्मचारी ने की, किसी सपोज करे कि कोई खाता धारक है और आपने गलती से भी कुछ उसमें इधर उधर हेर फेर करने का प्रयास किया, तो वो निश्चित रूप से उसे एक हफ्ता लगे, दो हफ्ता लगे, तीन हफ्ता लगे, महीने दिन लगे, वो पकड़ा जाएगा और लोग उसके लिए दंडित होते हैं, आर्थिक रूप से दंडित होते हैं, बहुत बार तो लोगों की सेवाएं तक चली जाती हैं। तो इसलिए कर्मचारी उस तरह की हिम्मत करने से पहले डरता है। तो एक जनता में ये विश्वास का माहौल है, और दूसरी बात, अगर किसी कर्मचारी ने किया तो उसमें जनता की कोई गलती नहीं। जैसे हम लोगों के पास भी केसेज आते हैं, तो जो केस एकदम जेन्युइन है, जो निवेश हुआ है, वो तो चाहे जितना बड़ा कोई गबन का मामला आ जाए या कुछ, लेकिन जनता प्रभावित नहीं होती, हम वो भुगतान जनता का करते ही करते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ पता नहीं ये स्थिति क्या रहती है, वो ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन सरकार में अब जैसे मैं मेल की बात कर रहा हूँ, आज की डेट पे आप चले जाइए लखनऊ जीपीओ में, चले जाइए चौक में, चले जाइए किसी और पोस्ट ऑफिस में, चले जाइए, तो आपने एक कंसाइनमेंट बुक किया, सपोज करिए कि आपने स्पीड पोस्ट बुक कर दिया और आप चाहते हैं कि ये स्पीड पोस्ट यहाँ से दिल्ली चला जाए, कलकत्ता चला जाए, बेंगलोर चला, आपने बुक किया। बुक करने के बाद अगर आप ये कहेंगे कि ये आर्टिकल मुझे वापस चाहिए, हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि एक बार जब आपने कंसाइनमेंट बुक कर दिया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, उसे कंसर्न जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक ही शर्त पे वापस दे सकते हैं कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि मुझे ये पत्र वापस चाहिए, गलती से इसमें ये कंटेंट चला गया है या इस तरह की बात हो गई है, आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे तब हम उसे, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। और प्लस कहीं भी कोई भी आर्टिकल आपने बुक किया तो वो इतने पॉइंट्स पे स्कैन होता है, इतने पॉइंट्स पे उसकी एंट्री होती है कि उसके मिस होने का चांस है ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि जीरो एरर सिस्टम है हमारा, आप कोई भी कंसाइनमेंट बुक किए वो कंसर्न डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये जो काम करने का

0: तरीका है, इसने लोगों में एक अद्भुत विश्वास विभाग के प्रति पैदा किया है।
1: सुनील जी, आपने जिक्र किया कि एक जो डाकिया होता है या डाक विभाग का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो एक नई क्रांति को भी जन्म देता है। शिक्षा के लिए खासतौर से आपने जिक्र किया, आकाशवाणी का भी एक प्रयास होता है कि शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन के जरिए अपनी आम जनता जो कि आखिरी पायदान में खड़ा है वहां तक आकाशवाणी की आवाज पहुंचती है अपने गीतों के माध्यम से। अपने तमाम विभिन्न जो कार्यक्रम हम लोग तैयार करते हैं उसके माध्यम से आकाशवाणी सौभाग्य से 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है
0: जी।
1: और इस 90 वर्षों की यात्रा को, जाहिर सी बात आपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना है, आकाशवाणी में कई बार आप आए भी हैं और उसने निश्चित रूप से एक नई क्रांति को जन्म भी दिया है, इस 90 सालों के सफर को आप किस रूप में देखते हैं?
0: देखिए, आकाशवाणी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपने स्थापना के समय से। जैसा आपने बताया कि 90 वर्षों से आप जो भी सकारात्मक संदेश देते हैं यहाँ से, आपके यहाँ जो भी कलाकार आते हैं, जो भी विद्वान आते हैं, मैं अभी आपकी गैलरी से घुस रहा था तो मैंने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिराक गोरखपुरी, उसके बाद बेगम अख्तर, इस तरह की तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मैंने एक स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तस्वीरें सर इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि ये लोग कभी न कभी यहाँ आए हैं
1: जी,
0: और इन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए इन लोगों को पढ़ना, इन लोगों को समझना बड़ा आवश्यक है। और अगर वो यहाँ आकर के आपके माध्यम से संदेश उनका प्रसारित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में आकाशवाणी का जो प्रयास है, जो आकाशवाणी का योगदान है, वो सराहनीय है।
1: अच्छा, अगर हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट कहते हैं, डाक विभाग कहते हैं
0: जी,
1: तो एक पुराने दौर की एक तस्वीर दिमाग में रहती है
0: जी।
1: आज जमाना बदल गया, तकनीकी बदल गई है, तो डाक विभाग कैसे अपने आप को नई तकनीक के साथ जोड़ रहा है?
0: देखिए, डाक विभाग जोड़ नहीं रहा है, डाक विभाग ऑलरेडी जुड़ चुका है। ये जैसा आपने कहा कि एक पुरानी इमेज और वैसा उभरता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इस वर्तमान सरकार ने एक व्यवस्था शुरू की, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे सपोज करिए कि आज की डेट पे आपका कोई खाता है और चेन्नई में है, आपने चेन्नई में एक अकाउंट खोला, वो अकाउंट बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड है। अब आप ये चाहते हैं कि लखनऊ के किसी, सपोज करिए कि मलिहाबाद के किसी गांव में बैठ करके आप भुगतान लेना चाहते हैं, तो हमारा पोस्टमैन आपके डोर स्टेप पे जाएगा और आपका जो खाता है उसको कोई विड्रॉल फॉर्म नहीं चाहिए, आपका अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। वो पोस्टमैन आपके घर पे जाएगा और एक डिवाइस लेकर के वो आपके अंगूठे से आपके अकाउंट को बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट करेगा और आपके डोर स्टेप पे 10,000 रुपए आपको डिलीवर कर सकता है। तो ये छोटी मोटी सुविधा नहीं है। हम लोग शहरी जीवन में हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक कार्ड है, हम कहीं से भी एटीएम स्वाइप कर लिए, पीओएस मशीन पे पेमेंट कर दिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। आज की डेट पे कोई व्यक्ति घर पे बैठे हुए, घर पे बैठ करके आप आराम से सपोज करिए कि आर्टिकल बुक करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो फैसिलिटी भी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। और हमारा एक व्यक्ति जाएगा, उसको आपके प्रिमाइस से कलेक्ट कर लेगा। आप एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने जो पेंशनधारी हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट उनको बना करके और हर साल देना होता था पेंशन के लिए, उन्हें देना, ये बात प्रमाणित करनी होती थी कि मैं जीवित हूँ, और वो अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए कंसर्न विभाग को जाते थे। आज की डेट पे 70 रुपए मात्र दे करके आपके डोर स्टेप पे पोस्टमैन जाएगा और वो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करता है। वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाएगा, एक NIC को चला जाएगा और एक हमारे पास रहता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। 70 रुपए आज की डेट पे आप अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है एक बार आने जाने का किराया हो जाए। तो इससे मतलब बेहतरीन सेवा मुझे नहीं लगता कि आज की डेट पे कोई उपलब्ध है, और विभाग इसे अपने नागरिकों को प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग इसे बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूरे लखनऊ परिक्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से इससे जनता की न केवल सेवा हो रही है बल्कि उसको सुविधा भी प्राप्त हो रही है सही तरीके से। अच्छा, जब आप दिन भर की थकान से कार्यालय से वापस घर जाते हैं
0: जी,
1: तो जब आप अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो तब आप क्या करते हैं?
0: मैं आज भी पुराने गाने सुनना पसंद करता हूँ।
1: अच्छा,
0: जब भी मुझे मौका मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो मैं निश्चित रूप से मुझे किशोर कुमार, लता मंगेशकर,
1: अच्छा
0: आर डी बर्मन साहब, हाँ मतलब ये पुराने गाने मैं आज भी सुनता हूँ।
1: अच्छा कोई गीत बताएं जो हमारे सुनने वालों तक हम उनको पहुंचा सकें।
0: एक फिल्म आई थी आंधी, मुझे जो अभी ध्यान आ रहा है,
1: बहुत सुपरहिट रही है। जी जी,
0: तेरे बिना जिंदगी से कोई सिखवा तो नहीं,
1: क्या बात
0: है। ये गाना मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है।
1: तो आप

0: दोस्तों आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रद्धेय सुनील कुमार राय साहब, जो कि भारतीय डाक सेवा के लखनऊ परिक्षेत्र के PMG है, यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल हैं। सुनील जी, समाज में रह करके इंसान को तरह तरह के झंझावातों से भी जूझना है, क्योंकि पहले हम व्यक्ति हैं, उसके बाद फिर हमारा परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र प्रथम की बात है, राष्ट्र की सेवा पहले है, उसके बाद हमारा परिवार भी सुरक्षित रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आपको लगता है कि आज भी लोग इस डिजिटल युग में, इस व्हाट्सएप की दुनिया में, इस सोशल मीडिया के दौर में चिट्ठियां लिखते हैं, लोग चिट्ठियां लिखना भूल गए हैं, आपको लगता है कि आज भी उसकी खुशबू जिंदा है?
1: जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से जिंदा है। मैं आपके माध्यम से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो पर्सनल लेटर्स होते थे, जो व्यक्तिगत पत्र होते थे, जो आपको ध्यान होगा, हमें भी ध्यान है कि हम लोग जाते थे, अंतरदेशी लेकर के आते थे, पोस्ट कार्ड लेकर के आते थे, और जो पत्र आया होता था उसका रिप्लाई पैरावाइज बनता था।
0: जी, जी, जी।
1: और वो शुरू होता था, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते।
0: क्या बात, क्या बात।
1: उन पत्रों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसका एक नकारात्मक पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। ये पत्र जो बच्चे नहीं, ये नई पीढ़ी को सिखाना चाहिए, नई पीढ़ी को इन पत्रों को लिखवाना चाहिए। उसके फायदे क्या हैं? देखिए, वो पत्र जो थे ना, वो इमोशंस डिलीवर करते थे। वो पत्र जो है बच्चों की कैलीग्राफी इंप्रूव करते थे। वो पत्र बच्चों की अभिव्यक्ति मजबूत करते थे। वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन आप यदि इससे हट करके बिजनेस मेल देखें, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 करोड़ आर्टिकल पर मंथ इंडिया पोस्ट केवल स्पीड पोस्ट के बुक करता है। मैं केवल एक डाटा आपको बता रहा हूँ, स्पीड पोस्ट के। और उसमें से आज की डेट पे 90 से 95% आर्टिकल ट्रैकेबल है, पॉइंट टू पॉइंट। आपने लखनऊ से बुक किया, और सपोज करिए कि उसे औरंगाबाद में डिलीवर होना है, आपने लखनऊ से बुक किया, उसे नोएडा में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, तो वो पॉइंट टू पॉइंट आपको स्कैन होता है, आपको पता चलेगा। आज की डेट पे अब वो दौर नहीं रहा कि आपने चिट्ठी डाल दिया और करना, आज की डेट पे आपने पोस्ट किया है तो आपको पता चलेगा कि अब आपका आर्टिकल लखनऊ में रिसीव हो गया, अब आपका आर्टिकल नोएडा में पहुंच गया, आप डिलीवरी के लिए आउट हो गया, आप डिलीवर हो गया, और अब उसके बाद फिर आपको मैसेज आएगा कि आपका आर्टिकल डिलीवर कर दिया गया, डिलीवरी अपडेट होती है। तो काफी तकनीक के माध्यम से काफी सारे सुधार लाए गए हैं, और लगातार अभी हम लोगों का जो जोर है वो पार्सल पे, इंटरनेशनल मेल्स पे, कि इन सेवाएं, जो ये सेवाएं हैं, इन सेवाओं को भी और बेहतर और मजबूत तरीके से जनता के बीच में लेकर के हम लोग आए है ऑलरेडी, मतलब इनकी गुणवत्ता और बेहतरीन हो और सुधार हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके, ये विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।
0: सुनील जी, जिन बातों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो शहरी रियाज है वहाँ निश्चित रूप से सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष गाँव में बसता है, जहाँ थोड़ा सा अभी शिक्षा की कहीं ना कहीं थोड़ा कमी भी है, लोग समझ नहीं पाते हैं, टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ पाते हैं, सिस्टम में अब डिजिटल की दुनिया है, वो सारे संदेश नहीं पढ़े जा सकते हैं, तो गांव में आपका डाक विभाग किस तरह से सेवाएं दे रहा है?
1: गांव में जो हमारा पोस्ट ऑफिसेस 3 तरह के हैं, शाखा डाकघर, उप डाकघर और प्रधान डाकघर या GPO, तो गांव में जो डाकघर हैं वो शाखा डाकघर के नाम से जाने जाते हैं, और शाखा डाकघर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं वो हेड करते हैं, लेकिन ब्रांच पोस्ट मास्टर जो हमारा शाखा डाकघर है, वो आप ये समझिए कि गांव के हर व्यक्ति से उसका व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ आप ये कहेंगे कि गांव में क्या होता है कि आपकी कोई चिट्ठी आई तो वो होल्ड करके रखता है, आज की डेट पे तो सबके पास वो बता देगा कि भैया फलाना वहां से आपकी एक चिट्ठी आई है, मैं अभी होल्ड करके रखा हुआ हूं। अगर कोई नहीं भी है गांव में तो वो रोक करके रखेगा, और वो जब तक डिलीवर नहीं कर देगा तब तक होल्ड करके रखता,
0: तब तक होल्ड करके रखता जी,
1: इतना
0: जी।
1: ही नहीं करता वो बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अपने जेब से, जैसे कभी किसी ने बताया कि साहब हमारा मनी ऑर्डर चला है और अभी तक आया नहीं, तो कभी कभार अपने जेब से भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको 1,000-2,000 रुपए दे दिया, 5,000 रुपए दे दिया कि ठीक है भैया जब आपका मनी ऑर्डर आ जाएगा तो हमारा वापस कर दीजिएगा। तो वो इस तरीके से लोग

0: की शैक्षणिक और आर्थिक मदद करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो लगभग गांव के हर व्यक्ति से परिचित होता है, उसका जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो बेमिसाल है, और अपने विश्वास को बनाए रखते हुए वो विभाग को लगातार नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है।
1: सुनील जी, हमने कई बैंक्स में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखा कि आजकल संगीत का भी सहारा ले रहे हैं, हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, काम चलते जा रहा है
0: जी।
1: वहां पर भीड़ भी हो रही है तो लोगों को बुरा नहीं लगता है
0: जी।
1: तो क्या ऐसा कुछ डाक विभाग भी सोच रहा है कि अपने कार्यालय में कुछ मधुर सा संगीत लगाया जाए?
0: हम लोग करते हैं, पर मुख्य हमारा प्रयास रहता है कि कार्य त्वरित तरीके से हो। जैसे अभी मैं एक छोटा आपको उदाहरण बता रहा हूँ, अभी जीपीओ में हम लोगों ने सुपर आधार सेंटर लगभग 15-20 दिन पहले शुरू कराया। 8 काउंटर सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेट होते हैं। सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है काउंटर हमारा, और रात के 7-8 बजे तक, जब तक अंतिम व्यक्ति का आधार हम बना नहीं देते, अपडेट नहीं कर देते, तब तक लोग बैठे रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं किया हमने, संडे के दिन भी आधार बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ बैठे हैं, पूरे वीक डेज में आपको टाइम नहीं मिल पाया कि आप अपने बच्चे का आधार बनवा पाए, अपडेट करा पाए, तो हमने कुछ चुनिंदा डाकघरों में संडे को भी ये सेवा शुरू करा दी है पूरे लखनऊ रीजन में। और जीपीओ में 4 काउंटर सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम के 4 बजे तक संडे को भी काम हो रहा। तो हम लोगों का कुल फोकस ये है कि अधिक से अधिक काम हो, जनता की सेवा हो, संगीत तो हम लोग घर पे भी आके सुन लेंगे।
1: आज रविवार का दिन है
0: जी।
1: और हो सकता है आपकी इस बात को हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे सुनने वाले बाकायदे बड़े प्यार और शिद्दत के साथ में सुन भी रहे हैं
0: जी।
1: और मधुर संगीत की बात होती है तो कोई ऐसा गाना बताइए अगर वो लाइन पर लगे हो तो गाना सुन भी सके।
0: देखिए, लता जी का एक गाया हुआ बड़ा ही अच्छा गाना मुझे लगता है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग,
1: क्या बात,
0: एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं,
1: क्या बात।
0: तो ये गाना बड़ा मेरा पसंदीदा है, अगर इसे आप चाहें तो इसे भी सुनवा सकते हैं।
1: तो दोस्तों, सुनील जी की पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।

0: सुनील जी, जी तो नहीं चाहता कि बातचीत को यहीं रोका जाए, क्योंकि बहुत बेहतरीन और बड़ी सार्थक बात आप अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। मसला चिट्ठी का है, संदेश का है, मसला भावनाओं का है, और कला और संस्कृति का है, शिक्षा का है, सारी जिम्मेदारियां डाक विभाग निभा रहा है। आपके जीवन में कभी कोई मलाल अभी है क्या कि काश ऐसा होता तो?
1: नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड इनफ, जो भी है और जितना भी है ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ बहुत बेहतरीन है। जीवन ऐसे ही चलता रहे, गुजरता रहे, और हम लोग राष्ट्र की सेवा में लगे रहें, और हिंदुस्तान को एक ऐसे देश के रूप में हम विकसित कर पाएं जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात पे गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वज एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं जो जीने लायक है, खुली हवा में सांस लेने लायक है, एक यहाँ धार्मिक सहिष्णुता का माहौल है, सामाजिक सहिष्णुता का माहौल है, और ऐसा राष्ट्र बने जहाँ एक दूसरे के लिए परस्पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना हो, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो। तो एक उस तरह का राष्ट्र अगर हम बना पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मैंने देखा है कि लगभग हर कर्मचारी हमारा बड़ा ही अपने ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी निष्ठा से लोग अपना काम करते हैं। और आपके माध्यम से मैं देखिए नई पीढ़ी को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे APJ कलाम साहब थे, तो आज की जनरेशन, दो बातें मैं बताऊंगा आपको आज की जनरेशन के लिए, चूंकि आपने मुझे बुलाया है कि मैं कैसे रिकमेंडेशन हुआ और क्या हुआ। तो बच्चे आजकल थोड़ा सा डेविएटेड रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता उनके जो सलाह दे रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें लगता है सोशल मीडिया से जो हमें ज्ञान मिल जा रहा है या जो हम इधर उधर से चीजें सीख पा रहे हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में माता पिता की बड़ी भूमिका है। पिता और माता ये मात्र ऐसा संबंध है जो बच्चे का कल्याण ये चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर करे। इस रिश्ते के अलावा दुनिया में और कोई नहीं चाहता। जैसे आपने एक मूवी आई थी 3 Idiots, उसमें देखा होगा आमिर खान का एक डायलॉग है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो माता पिता किसी भी बच्चे का कभी अहित नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, APJ कलाम साहब ने कहा था कि देखिए सपने खुली आंखों से नहीं देखे जाते, सपने वो नहीं होते हैं जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, और सपने वो भी नहीं होते हैं जो आप मतलब नींद में आप सो रहे हैं, और वो सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो बच्चों को वैसे सपने देखने चाहिए कि उसको अचीव करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अनुशासित जीवन जिएं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ईमानदारी से एक निर्णय लें, उस निर्णय के प्रति निष्ठावान रहें और एकदम कंसिस्टेंट होकर के उसके लिए मेहनत करें, तभी उनका लक्ष्य उनको हासिल हो सकता है। क्योंकि जीवन में निर्णयों का बहुत महत्व होता है। आप मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, उन्होंने जीवन में एक निर्णय लिया, आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, जानकारी है नहीं, ही वॉज सिंपली एन अकाउंटेंट, एक क्लर्क की नौकरी करते थे वो कलकत्ता में, बट ही डिसाइडेड कि मुझे बॉलीवुड चलना है और क्या करना है, अभिनय करना है। आज की दुनिया में अभिनय के बेताज बादशाह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक निर्णय उन्होंने लिया 1915 में कि मुझे हिंदुस्तान चलना है और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़नी है। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो बहुत अच्छे वकील थे दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई लिखाई की थी, वो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे, वो बैरिस्टर थे, गुजरात के व्यापारियों का केस लड़ रहे थे, अच्छा खासा

0: पैसा अर्न कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो एक घटना घटी साउथ अफ्रीका में कि उन्हें ट्रेन से धक्का देकर के बाहर कर दिया गया और रात भर स्टेशन पे पड़े रहे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब चलना है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए। 45 वर्ष की उम्र में वो आए, जब वो लौटे थे तो उनकी उम्र 45 वर्ष की थी। आज की डेट पे उनका एक निर्णय, आज महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, उन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में निर्णय का बड़ा महत्व है। आप जो निर्णय लीजिए, बच्चे जो भी निर्णय लें, आज देखिए, अब वो करियर वो नहीं है कि आप दो केवल करियर आप करा गया कि इंजीनियरिंग कर लो डॉक्टरी कर लो, ऐसा नहीं है। आप अच्छा खेलते हो, आप अच्छा म्यूजिक बजाते हो, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा तैराकी करते हैं, आप अच्छा नाचते हैं, आप अच्छे धावक हैं, आप अच्छा भाला फेंकते हैं, गोला, व्हाटएवर, इतने सारे करियर्स हैं। आप जहां पे भी हैं एक्सेल करिए, जिस भी जगह हैं अपना बेहतरीन प्रयास करिए, और यदि आप बेहतरीन प्रयास करते हैं, आप शिखर पे पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी पहचान की कोई संकट नहीं है।
1: सुनील जी, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी यादगार

0: एक्सेल करिए, जिस भी जगह है अपना बेहतरीन प्रयास करिए, और यदि आप बेहतरीन प्रयास करते हैं, आप शिखर पे पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी पहचान की कोई संकट नहीं है।
1: सुनील जी, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी यादगार मुलाकात रही आज के इस प्रोग्राम में, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के सुनने वालों से बातचीत की, सुनने वालों से अपने निजी पलों को साझा किया, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही सुंदर सा संदेश भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे भारतीय डाक सेवा के लखनऊ परिक्षेत्र के PMG यानी पोस्ट मास्टर जनरल श्रद्धेय सुनील कुमार राय साहब। भारतीय डाक विभाग सेवा समर्पण और विश्वास का ऐसा संस्थान है जिसने समय के हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाई रखी है। ये विभाग केवल संदेश नहीं पहुंचा बल्कि दिलों को जोड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुरेंद्र राजेश्वरी को अनुमति दीजिए आज के मेहमान कार्यक्रम से, फिर मुलाकात होगी इसे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, पोस्ट मास्टर

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किड बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किड बैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
12: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनाव

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क

0: चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
1: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे

आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण

बनाया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था

0: संस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहमत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य

0: आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: खा के बातें करते हैं, अब जब बातें करते हैं निकलता रहता हूँ, कितना गंदा लगता है। और धीरे धीरे करते मुख में सिकुड़न आ जाती है, मुख खुल नहीं पाता, आप नॉर्मल खाना नहीं खा पाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर को हम ले लेते हैं। हेलो,
3: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, सवाल पूछिए।
3: संजय तिवारी बोल रहे हैं फ्रॉम लखनऊ।
1: जी जी संजय बताइए।
3: गुड
2: आफ्टरनून सर।
3: डॉक्टर, हमको ये आपसे पूछना है कि जैसे बहुत लोग मसाला खाते हैं, पान पराठ खाते हैं, कोई बहुत लोग सादा भी मसाला खाते हैं, तो क्या उससे भी कैंसर होने का कॉज होता है? और दूसरा है कि जैसे बहुत लोग

0: तंबाकू छोड़ी है तो भी हमें कीनली किस तरह से अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए, लक्षण क्या होते हैं?
1: लक्षण देखिए, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो सीओपीडी पैदा कर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पैदा करता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है, तो जो इन्फेक्शन को साफ करने वाली जो सिलिया होती है वो खत्म हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, तो इन्फेक्शन बार बार पैदा होता है, तो उससे आपको बार बार खांसी आएंगी, बलगम वाली खांसी आए, कभी कभार खून की खांसी भी आ सकती है। उसी तरह अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो मुंह खुलना बंद हो जाएगा, मुंह का जो प्लास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाएगा, मुंह खुलना कम हो जाएगा, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका लार बनना कम हो जाएगा, कुछ छाले पैदा हो सकते हैं, और पेट में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। टीबी अगर है आपको हल्का फुल्का तो स्मोकिंग से वो बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आप भूलने लगे, आपका रक्तचाप बढ़ने लगे, ये सारी लक्षण होते हैं कैंसर के।
0: जी डॉक्टर साहब, तंबाकू निषेध के दिन आज हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर आप तंबाकू के कंजम्पशन पर हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि 0522238845 2982377 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnau@gmail.com पर। लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी।
2: डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल @हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और 12:16:17 आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस। मैं हूं आपके साथ समरीन, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़िशानुद्दीन अहमद, जो कि बात कर रहे हैं तंबाकू से क्या कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में कनेक्ट होने के लिए 0522-22-38845-2982377 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। बहुत टाइम ऐसा आता है जब बहुत स्ट्रेस होता है, और कभी वो जॉब का स्ट्रेस होता है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। तो ऐसे में जो हमारे युवा हैं वो जो है स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोक की तरफ चले जाते हैं। क्या ये स्ट्रेस को कम करता है, और स्ट्रेस कम करता है अगर, तो उसके बदले में आपके स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव डालता है उस एज में जिसमें एड्रेनल रश खूब फायदे से होता है, आप बहुत जल्दी भावुक होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, किस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं?
4: मैम, टोबैको स्ट्रेस तो कम करता है, लेकिन वो एक टेम्पररी होता है, बहुत ही वक्ती तौर पे आपको स्ट्रेस कम होता है, कामनेस मिलती है। लॉन्ग टर्म में वो आपको स्ट्रेस पैदा करता ही है, वो आप पर डिपेंडेंस पैदा हो जाती है, आपके दोस्त आपके घर वाले आपसे दूर हो जाते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप योगा की तरफ जाएं,
3: मेडिटेशन
4: की तरफ जाएं,
3: जी
4: वो ज्यादा फायदा करेगा आपको।
3: स्ट्रेस हो रहा है तो आप डीप ब्रीदिंग करें, स्मोक करें, वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी समस्या का भी हल देगा।
4: जी
3: एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अक्सर घरों में एक या दो स्मोकर्स होते हैं जो इस चीज का ख्याल नहीं करते कि आसपास के जो लोग हैं उनको क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि पैसिव स्मोकिंग की मैं आपसे बात कर रही हूं। किस तरह से ये अन्य परिवार के सदस्यों में या फिर आपके आसपास के लोगों को परेशान करता है? एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर अब स्मोकिंग के ग्रुप्स बना दिए गए हैं, वहां जाके आप स्मोक कर सकते हैं। अगर आप वहां कभी एंटर हों या कभी देखें जाकर, तो वो चैम्बर
4: गैस चैम्बर लगता है।
3: वो कितना, एक तो आप स्मोक डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ एनवायरमेंट भी ऐसा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए?
4: मैम, स्मोकिंग से ऑलमोस्ट 1,000,000 मौतें होती हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से अराउंड 70,000 to 80,000 डेथ जो हो रही है पैसिव स्मोकिंग से हो रही है। जब हम लोग एक्टिवली स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट मुंह में लगाते हैं, तो हम कश लेते हैं पूरी गहराई से, वो स्मोक हमारे लंग्स में जाता है और उसको एक्टिवली हम निकाल देते हैं, तो वो कम वक्त के लिए हमारे लंग्स के अंदर रह रहा है। लेकिन जब हम पैसिव स्मोकिंग करते हैं, हम हल्के हल्के सांस लेते हैं, वो स्मोक काफी वक्त तक हमारे लंग्स के अंदर रहता है। जब उसको ज्यादा वक्त मिलता है तो वो बॉडी के अंदर जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, और उसी तरह हम धीरे धीरे उसको निकालते भी हैं, तो ये ज्यादा ही नुकसान करता है पैसिव स्मोकिंग।
3: ओके, बहुत सारे बच्चे आजकल ये भी कहते हैं कि एनवायरमेंट में ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, अगर हमने एक दो सिगरेट्स पी ली तो उसका क्या ही नुकसान है, इस पर क्या कहेंगे आप?
4: मैं ये कहूंगा कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म में आ रहे हैं आपके लंग्स के अंदर
3: जी,
4: और अगर सिगरेट पी रहे हैं वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपके शरीर के अंदर जा रहा है। तो मैं तो उसके एकदम खिलाफ हूँ कि आपको कभी भी ना एक कश, ना दो कश, ना एक सेट, ना कभी भी आपको उसका सेवन करना ही नहीं है,
3: उस पर डिपेंडेंट होना है।
4: डिपेंडेंट तो बात की बात है, आपको शुरू ही नहीं करनी है।
3: जी एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। हेलो
5: जी मैम,
3: नाम बताइए, कहाँ से हैं और अपना सवाल पूछिए आप।
5: मैम, मैं तो लखनऊ से बोल रही
3: हूँ। जी जी,
5: रेनू वर्मा नाम है।
3: जी रेनू जी, बताइए क्या सवाल है आपका।
5: मैम, जो ड्रिंक करते हैं

0: डॉक्टर साहब ड्रिंक के बारे में सवाल करेंगे।
1: देखिए मैंने शुरू में आपको क्या बताया कि कैंसर होता किस चीज है, क्रॉनिक इरिटेशन से। वही चीज शराब में भी होती है, वो भी इरिटेंट की तरह ही पैदा होती है।
0: अच्छा,
1: मुंह के अंदर जाएगी तो मुंह को जलाएगी, ईसोफेगस में जाएगी तो आहार नली में जाएगी वहां को जलाएगी, हर जहां जहां वो जाएगी और जहां जहां वो एब्जॉर्ब होगी उस पे अपने दुष्प्रभाव पैदा करेगी
0: जी।
1: तो इससे आपको ओरल कैंसर होगा, ईसोफेगस का कैंसर होगा, स्टमक का कैंसर होगा और रेक्टम का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो खराब चीजें मत पीजिए,
0: खराब चीजों को अवॉइड करें,
1: अवॉइड करें आप।
0: और इसमें पहला नाम तंबाकू का है। डॉक्टर साहब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम तंबाकू छोड़ते हैं किसी भी तरह के फॉर्म में तो क्या कुछ सकारात्मक बदलाव हमको देखने को मिलेंगे अपने शरीर में और कितना समय लगता है हमें प्रॉपर हील होने में, अगर मैं पूछूं तो?
1: अगर आप एक्टिवली स्मोकिंग कर रहे हैं और आपने छोड़ दिया, आपका बीपी मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर कम हो जाएगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपके कैंसर होने के चांसेस कुछ वक्त में, अगर 1 साल अगर हम लगातार छोड़ी तो ऑलमोस्ट 10 से 20% आपके चांस ऑफ कैंसर कम हो जाएंगे। अगर आपने लगातार 10 साल तक नहीं पिया तो ऑलमोस्ट आप नॉन स्मोकर जितने रिस्क पे आ जाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने
3: जाते हैं
4: जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
5: नमस्कार सर
4: जी। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
5: मेरा नाम बिमल सिंह है, ग्राम पंचायत तिलन पोस्ट रावत तहसील मलियाबाद जिला लखनऊ से बात कर रहा हूँ
4: जी। अपना सवाल पूछिए।
5: मैं पेट से बहुत ज्यादा दिक्कत, खाना खाता हूँ तब भी प्रेशर, नहीं खाता हूँ तब भी प्रेशर, लाइटिंग बहुत ज्यादा आती रहती है।
4: जी, पेट से जुड़ी समस्या है डॉक्टर साहब की।
3: सर अगर लैट्रिन आपको बहुत ज्यादा आ रही है तो हो सकता है कुछ खराब चीज खा रहे हो आप। कुछ खराब चीज खाने से कई बार क्या होता है, शरीर के अच्छे, पेट के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। थोड़ा आप दही का सेवन करें, दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कॉलीफॉर्म्स होते हैं, तो आपको थोड़ा फायदा मिलेगा
4: जी। डॉक्टर साहब चूंकि बातें हो रही हैं कि किस तरह से तंबाकू जैसे के जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचने के लिए हम इसे छोड़ें, आपने बताया कि बहुत अच्छा तरीका है कि आप ब्रीदिंग पे जाएं, जब आपको स्ट्रेस हो तो आप ब्रीद करें। और इसके अलावा एक और उपाय हम आपको बताते हैं, वो है म्यूजिक। जब स्ट्रेस हो, जब आपको लगे कि हाँ बहुत परेशान है और एंजाइटी सी फील हो रही है, कोई अच्छा सा गीत आप सुने और हम भी आपको सुनवाते हैं एक बेहतरीन सा गीत आपके रेडियो सेट पर। ये रहा

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:28 और 39 सेकेंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। और आज का हमारा मुद्दा है कि तंबाकू किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को जो है वो उसके दुष्प्रभाव को बढ़ाता है और हमारे लिए हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका?
3: नाम हमारा
2: श्रुति
3: है, हम लखनऊ से बोल रहे हैं।
2: श्रुति, अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैम, यही सवाल है कि जैसे तंबाकू मसाला लोग खाते हैं तो इसको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब इसे कैसे बचा जा सकता है?
4: श्रुति जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइड इफेक्ट बहुत ही सारे हैं, जिसमें मुंह का कैंसर और लंग्स का कैंसर, जीआई कैंसर, ये सारे दुष्प्रभाव ही हैं। और कैंसर तो बाद में होता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, भूलना हो जाता है और काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो यही इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इनसे हमें बचना है।
2: एक कॉलर हमारे साथ और हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो।
5: हेलो,
2: हाँ जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए।
5: जी मैम जी, नमस्कार डॉक्टर साहब को। नमस्कार।
2: नमस्कार।
5: मेरा नाम शिवम पोरवाल है, जिला बहराइच से बात करता हूँ।
2: जी शिवम, पूछिए सवाल। क्या
5: सवाल है? तंबाकू खाने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं और इसको छोड़ने के लिए दवाएं क्या हैं?
2: अच्छा,

0: समस्याएं तो जो होंगी वो डॉक्टर साहब ने बता दी, कि दवाएं क्या क्या हो सकती हैं?
1: दवाएं तो सबसे पहले है कि आप अपनी संगति बदल लिया ठीक है, जो दो दोस्त आपके साथ तंबाकू खा रहे हैं या तो उनको बदलिए या उनकी भी प्रवृत्ति बदले कि वो भी ना खाएं। दूसरी चीज है कि निकोटिन पैचेस आते हैं वो आप ले सकते हैं, निकोटिन की टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं आपको ले सकते हैं धीरे करके, जो जो आपकी आदत खत्म कर सकती हैं
0: जी,
1: और यही बेहतर होगा।
0: तो डॉक्टर साहब, निकोटिन का आपने जिक्र किया, निकोटिन के अपने क्या कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं?
1: निकोटिन के भी दुष्प्रभाव होते हैं, ये भी ये कैंसर नहीं पैदा करता निकोटिन। अच्छा। अल्टीमेट निकोटिन इज नॉट अ कार्सिनोजेनिक, लेकिन जो उसके साथ जो केमिकल्स होते हैं तो वो कैंसर पैदा करते हैं। निकोटिन से एक आपकी आदत बनाता है।
0: आपने निकोटिन का जिक्र किया, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त ई सिगरेट का चलन बहुत बढ़ गया है
1: जी।
0: और युवा कहते हैं कि हाँ ये उतना नुकसानदेह नहीं होता है क्योंकि इसमें आप धुआं नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप फ्लेवर्स ले रहे हैं या फिर निकोटिन आपकी बॉडी में जा रहा है, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट हैं?
1: मैम पहले तो हम समझें कि ई सिगरेट होती क्या चीज है
0: जी।
1: एक चेम्बर होता है, इसमें एक हीटिंग कॉइल होती है, एक बैटरी होती है और एक तंबाकू का एक डिपो होता है। बैटरी से बिजली आती है, वो हीट करती है और वही आपको स्मोक की तरह, स्मोक या नॉन स्मोक जैसा भी आपके शरीर में जा रही है, तो अल्टीमेटली टोबैको तो आपके शरीर में जा ही रहा है।
0: अच्छा
1: ठीक है, ये नहीं कि वो नॉन टोबैको वाली चीज है, तो ये भी उतनी खराब है। बस ये है कि ये थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है तो ये कम नुकसान करे, लेकिन नुकसान तो जरूर कर रही है
0: जी। डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है मुनीश कुमार राज का, लखीमपुर खीरी से लिखते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से अंग में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? खान पान की वजह से कितने कैंसर होते हैं और नशे की वजह से भी कितने कैंसर होते हैं, इस बारे में हमें बताइए। और एक सवाल उन्होंने और आगे लिखा है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग नशा नहीं करते फिर भी उन्हें कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई।
1: हमारे शरीर में हर अंग में कैंसर हो सकता है, कोई भी अंग अछूता नहीं है
0: जी।
1: जैसे जैसे आप जिस चीज का सेवन करें, खराब चीजों का सेवन करें, कार्सिनोजन का सेवन, उस तरह के कैंसर हो सकते हैं। और जैसे आपने बोला, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एकदम अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं, साफ सुथरा जीवन जीते हैं, ना उन तंबाकू लिया ना गुटखा खाया, तब भी उनको कैंसर होता है। तो ऐसे काफी सारे मरीज होते हैं, अराउंड 15-20% होते हैं जिनमें कभी भी खराब चीज का सेवन नहीं किया, उनका कैंसर हो जाता है। उसका कारण या तो म्यूटेशन होती है या अच्छा। तो जेनेटिक होता है या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो इनसे भी हो सकता है। और कई बार होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि क्यों हो गया है, कई बार हमारे पास भी रीजन नहीं होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, एक मेल और आया है सीमा गुप्ता का, लिखती हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही है और इससे मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है
1: जी। आप उसके आपको लत लग गई है, आप उस पर डिपेंडेंट हो गए कि आप जब तक आप टोबैको का सेवन नहीं करेंगे आप फ्रेश नहीं हो पाते। काफी सारे मेरे दोस्त भी हैं, जान पहचान वाले भी हैं, मरीज भी हैं, जो बोलते हैं जब तक मैं एक सिगरेट नहीं पी लूंगा मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा। यानी कि आप उस स्टेज पे पहुंच गए, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं।
0: तो ये फिजिकल डिपेंडेंसी है या मेंटल?
1: दोनों, फिजिकल एंड मेंटल दोनों डिपेंडेंसी है।
0: अच्छा,
1: तो यही है कि धीरे धीरे आप कम करें और इसे बचें।
0: एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए और क्या सवाल है आपका?
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, को किस
1: प्रश्न? नमस्ते
0: जी, जी आप जरा नेटवर्क में आके बात करिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए।
2: आवाज पहुंच रही है मैम?
0: आवाज पहुंच रही है लेकिन सवाल अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है।
2: मेरा सवाल है
0: जी,
2: जो गर्भवती,
0: आपने जब पूछा ना कि आपका सवाल है तब आवाज एकदम साफ आई, तो आपने जहां से ये सवाल पूछा है प्लीज उसी लोकेशन में आ जाइए, वहां नेटवर्क है, या पोजीशन फोन की आप ऐसे करके पूछिए कि क्लियर आपका सवाल आ पाए।
2: मैम आवाज आई?
0: हाँ जी, आवाज आ गई आपकी, बताइए क्या सवाल है?
2: मेरा सवाल है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं
0: जी,
2: गुटखा खाते मंजन होता है, फिर मंजन आता है मैम
0: जी जी जी,
2: वो करती हैं, तो क्या बच्चे पर भी असर कर सकता है
0: जी? डॉक्टर साहब शायद ये पूछना ये चाह रही हैं कि
1: जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जो गुलमंजन का इस्तेमाल करती हैं, देखिए बच्चा जब

0: संरचना होती है बच्चे की गर्भ में तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, तो सबसे खराब और सेंसिटिव एरिया टाइमिंग होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने। उस समय पे अगर आपने इन चीजों का सेवन किया तो इसमें भी कार्सिनोजेंस होते हैं, ये शरीर में जाएंगे आपके खून के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर भी जाएंगे, तो ये बच्चे की संरचना को खराब कर सकता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, दिमाग में असर पैदा कर सकता है, बच्चों में काफी सारे विकार आ सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। किसी तरह का गुलमंजन हो चाहे कुछ और गुल हो, आपको उसका सेवन नहीं करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी बताइए।
2: गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून मैम।
2: सर मेरा सवाल ये है कि जो ये आटा तंबाकू आती है इसको, जिससे सुबह सुबह खाली पेट खाने से क्या कैंसर हो सकता है?
1: खाली पेट खाने से क्या कैंसर होने के चांसेस हैं? इन्होंने कोई स्पेसिफिक तंबाकू के बारे में पूछा है डॉक्टर?
0: मैम खाली पेट लीजिए, भरे पेट लीजिए, किसी भी पेट लीजिए, नुकसान करेगा
1: जी।
0: ठीक है मैम, नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हम जब तंबाकू का सेवन लगातार लंबे अरसे से करते आ रहे हैं और उसके बाद उसे छोड़ते हैं, तो फिर जो समस्याएं आना शुरू होती हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है या इस प्रक्रिया को कैसे आसान किया जा सकता है?
0: जी मैम, जब जो भी व्यक्ति बहुत वक्त तक इसका सेवन करता है तो उसके पे डिपेंडेंट हो जाता है, और एकदम से अगर उसने छोड़ दिया तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो वो कभी नशे में जा सकता है, बेहोश हो सकता है।
1: अच्छा।
0: हाथ पैरों में झंझनी आ सकती है।
1: हाँ।
0: कपकपी आ सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना होता है और वो आपको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे, हो सकता है कभी आपको एडमिट भी करें और उसके आपको इलाज बताया जाए।
1: तो प्रॉपर आपको डॉक्टर की
0: देखरेख में ही
1: इलाज लेना है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद आज के मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 0522-223-8845 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnow@gmail.com। टोबैको को कहिए ना पर हमारी ये जो चर्चा है ये जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने
3: तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8845, 0522-223-8852 पर। और इसके अलावा आप हमें मेल भी भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे एक लिसनर ने ये सवाल पूछा है कि देहात में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तंबाकू खाने से मेरा पेट साफ रहता है और मेरे दांतों में पायरिया भी नहीं होता, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या कुछ नुकसान होते हैं, क्या इस तरह के जो मिथ हैं हमारे जहन में, ये सही हैं या गलत हैं?
4: ये एक पूरी तरह से मिथ्या है। और तंबाकू खाने से बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार तंबाकू मुंह में रखे रहते हैं, उससे ना टार्टर या स्केल्स जमा हो जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा ही रिप्रोडक्शन होता है, नंबर्स उसके बढ़ जाते हैं। नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर अराउंड 100 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन जिन लोग के अंदर टार्टर जम जाता है तो उनके अंदर ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ प्रति ग्राम टार्टर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो इतने इन्फेक्शन की वजह से आपको पायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मसूड़े आपके दांतों को छोड़ देते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, दांतों के बीच में जगह आने लगती है, सुराख हो जाता है बीच बीच में, तो वो नुकसान ही करता है
3: जी। तो सर, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
5: हेलो,
3: हाँ जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए आपका, क्या सवाल है?
5: ये जानना था कि तंबाकू से मेन क्या नुकसान होता है?
3: मेन क्या नुकसान होता है?
4: मेन नुकसान तो देखिए, सबसे पहले तो आपने मुंह में खाया, आपके मुंह में गंदगी आई, पेट खराब हुआ आपका, इन्फेक्शन हुआ, ज्यादा वक्त तक खाया तो मुंह खुलना कम हो जाता है, फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है, आप ढंग से बड़े निवाले नहीं खा सकते, हमेशा छोटे छोटे निवाले खाने पड़ेंगे आपको, अंत में कभी ना कभी कैंसर भी हो सकता है।
3: डॉक्टर साहब, ये तो हुई कि तंबाकू से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा अगर हम तंबाकू छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी आप हमें बताइए, और कितने दिनों में ये फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं?
4: मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आपने स्मोकिंग छोड़ी, मात्र 10 से 15 मिनट में अंदर आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, जो सीलिया होते हैं हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जो म्यूकस पैदा करते हैं और गंदगी को आगे बढ़ाते हैं, झाड़ू की तरह काम करते हैं
3: जी जी।
4: वो 1 महीने से 2 महीने के अंदर वापस से पैदा होने लगते हैं, जो मर जाते हैं टबैको की वजह से।
3: अच्छा,
4: तो आपकी जो गंदगी होती है जल्दी साफ होती है।
3: और मरते कितने दिनों में है डॉक्टर साहब? जैसे आपने कंज्यूम की टबैको तो कितने दिनों में आपका?
4: सर, ये जो सीलिया होते हैं मैम, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेलुलर लेवल पे काम करते हैं ये।
3: अच्छा,
4: तो कुछ मिनटों में कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं ये।
3: ओह, और पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है, आपका फेफड़ा पूरा क्लीन हो जाए अगर आप बहुत ज्यादा आपने स्मोकिंग की है तो? अगर फेफड़ा पूरा क्लीन हो सकता है तो कितने इतना वक्त लगता है
4: मैम? कुछ चीज ऐसे होती है जो कभी भी क्लीन नहीं हो पाएंगी।
3: अच्छा,
4: कभी भी क्लीन, जो टार जम गया है, जो हैवी मेटल्स जम गए हैं, वो कभी भी साफ नहीं हो पाते हैं।
3: सर्जरी से भी नहीं?
4: इतने सूक्ष्म होते हैं वो, कभी सर्जरी भी नहीं हो सकती है, वो अंदर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन काफी हद तक ये साफ हो सकता है, लेकिन उसमें लगता है कम से कम 10 साल
3: 10 से 15 साल
4: लगेंगे तब आप जाके उस रिस्क पे पहुंचेंगे जो एक नॉर्मल आदमी है जिसने कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट 10 साल लग जाते हैं आपको नॉर्मलाइज होने में। और नॉर्मलाइज का मतलब ये 100% नहीं होता है, 90-95% नॉर्मलाइज होते हैं, 100% आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
3: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और कनेक्ट हुए हैं, और शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मुंह के कैंसर ज्यादातर तंबाकू जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं स्मोक के अलावा, उनके मुंह के कैंसर के मामले जो हैं उनमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि अब आप उस घेरे में आ गए हैं जहां आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है?
4: सबसे पहले तो आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है।
3: अच्छा,
4: फिर एक सफेद तरह के चकत्ते मुंह में पैदा हो जाते हैं जो रगड़ने से भी निकलते नहीं, इसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। उसके बाद और खराब आता है एरिथ्रोप्लेकिया, जो लाल कलर के चकत्ते होते वो भी निकलते नहीं है. अल्टीमेटली फिर आपके कभी दांत गिर रहे हैं, दांत हिले पड़ जा रहे हैं, या एक अल्सर पैदा हो रहा है जो महीने भर तक भी हिल नहीं कर रहा है दवाओं के बावजूद, तो ये सिम्टम्स होते हैं.
3: डॉक्टर साहब, एक महेंद्र दीपन करके हमारे पास मैसेज आया है राजस्थान से, पूछते हैं कि मैं कुछ वर्षों से गुटके की लत से परेशान हूं. मैंने इसे छोड़ने की कई कोशिशें की लेकिन अब स्थिति यह है कि मैं 2 घंटे भी इसके बिना नहीं रह पा रहा हूं. मुझे कोई ऐसा व्यवहारिक उपाय बताएं जिससे मैं किसी तरह सिर्फ शुरुआती 72 घंटे यानी कि 3 दिन जो है वो निकाल सकूं. मेरा मानना है कि यदि मैं 72 घंटे पार कर लूंगा तो मैं अपनी इच्छा शक्ति को आगे की लड़ाई से जीत सकता हूँ. इच्छा शक्ति से आगे की लड़ाई जीत सकते हैं.
4: सर, सबसे अच्छी बात तो आपने बताई कि आप इच्छा शक्ति रखना चाहते हैं. जब तक आप मन से नहीं छोड़ना चाहेंगे तब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे. लेकिन जैसी आप स्थिति आप मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा. वो आपको कुछ दवाएं देंगे, हो सकता है कुछ 1-2 दिन के लिए एडमिट भी करें, उसी से आप बेहतर हो पाएंगे. फोन पे बताना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आज.
3: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं. हेलो. हाँ जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, सवाल पूछिए. हाँ जी, आपका सवाल साफ तौर पर नहीं आया, एक बार फिर से पूछिए.
6: जी, हम ये कहना चाहते हैं जैसे पहले हमारे भाई गुटखा और तम्बाकू सब चीज खा रहे थे, गुटखा तो छूट गया है, तम्बाकू नहीं छूट रही है, इसके लिए क्या किया जाए?
3: गुटखा तो छूट गया साहब, तम्बाकू

0: के लिए क्या
1: सर,
0: किया
1: दोनों
0: जाए?
1: ही भाई बहन है, गुटखा और तंबाकू, ठीक है, उसका भी आप छोड़ने का छुड़वाई उनसे है, बात करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे लोगों की संगति में जाइए, ठीक है, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बस यही बताऊंगा।
0: यही उपाय हैं जिसके जरिए आप इस तंबाकू के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और सब, एक मेल हमारे पास आया है चंद्रमोहन मिश्रा का, लिखते हैं, मैं चंद्रमोहन मिश्रा नौरंगपुर लखीमपुर से। सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, आज आपसे हमें एक ऐसा सवाल पूछना है जो हर तंबाकू खाने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तंबाकू खाने से मुंह का छोटा होना संभव है या सिर्फ गुटखे से होता है, और अगर छोटा होता है तो उसका इलाज क्या है? छोड़ना ही इलाज है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब
1: जी। अभी आप वो जो बता रहे हैं वो OSMF होता है जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है।
0: अच्छा।
1: बार बार जब इरिटेशन होता है तो हमारी जो मुंह की मसल्स होती हैं, टेंडन्स होती हैं, वो फाइब्रोस होने लगती हैं, तो
0: अच्छा।
1: जो उसकी प्लास्टिसिटी होती है, जो लचीलापन होता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे कि मुंह का खुलना बंद हो जाता है। और इसका इलाज या तो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग हर महीने महीने पे, छह महीने तक लगाते हैं, उससे कुछ फायदा मिल जाता है, कुछ दवाइयां भी देते हैं उससे फायदा नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता इन सारी उपायों से, उसके बाद एक छोटा ऑपरेशन किया जाता है जिससे कि आपका मुंह खुलना दोबारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने दोबारा खाया तो वापस से बंद हो जाएगा।
0: ओहो, एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। नाम बताइए अपना, जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मुनेश कुमार राज बोले, भानपुर हटोबा जिला लखीमपुर खीरी से। मैम
0: जी, सवाल क्या है आपका?
2: डॉक्टर साहब से सवाल हमारा ये है कि आज के दौर में गुरमंजन के काफी जो है महिलाएं भी बच्चे से लगाकर बूढ़े तक आज शिकार इसका होने लगे हैं, तो इसका आगे चल के दुष्प्रभाव भी हो सकता है, इसको छुड़ाने के लिए मतलब बचाव से कैसे इससे बचा जा सके बताने की कृपा करें।
1: मुनेश जी, टोबैको किसी भी फॉर्म में खराब होता है, चाहे वो गुलमंजन हो, चाहे गुटखा हो, चाहे सादा पान मसाला हो, चाहे पास पास हो, चाहे चुटकी हो, हर तरह से ही खराब है। बस इसका सेवन को ही आप रोकथाम करें और जितना अच्छा हो सके, जितनी जल्दी हो सके, उसे खत्म करें।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं और किशोरों पर तंबाकू का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत क्या अधिक गंभीर हो सकता है?
1: गंभीर तो मैम हर चीज, हर उम्र के लिए ही है
0: जी जी,
1: ठीक है, लेकिन यह है कि महिलाओं में, किशोरावस्था में लोग दूसरे को दिखाने के लिए काफी बार ये सब चीज का सेवन करते हैं कि देखो मैं कितना कूल लग रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो अच्छी चीज तो नहीं। अब मैं यही चाहूंगा, खराब चीज है बच्चे लोग, इसलिए आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई एक आदमी नहीं है जिससे इसका कोई फायदा मिला हो।
0: एग्जैक्टली, कूल लगना है तो आप फिटनेस पे काम करें,
1: पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें।
0: जी जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक लेंगे हम कॉमर्शियल ब्रेक और उसके बाद तंबाकू के दुष्प्रभाव पर चर्चा जारी रहेगी।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: 12:55 और 42 सेकंड। और जैसे कि हमने आज पूरे प्रोग्राम में चर्चा की कि तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हैं, जिसके जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने दी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया, उनके उपायों के बारे में बताया। जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर कष्ट आपकी सेहत का दुश्मन है
2: जी।
3: आपका आज का संकल्प आपके परिवार का कल सुरक्षित कर सकता है।
2: वाह, बहुत सुंदर बात। और इसी के साथ प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाजत। आज का लिया गया एक सही निर्णय आपके आने वाले जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। हेल्थ एंड फिटनेस के जरिए हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अगले अंक में नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, लेंगे आपसे सेहत से जुड़ी जानकारी। धन्यवाद।
4: डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ।
4: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इसे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा है कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिमी बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है। श्री मोदी ने कहा कि आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व प्रसिद्ध लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से स्थानीय लोगों में विशेष खुशी देखी गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान लोगों ने मन की बात को समाज में सकारात्मक सोच और जनभागीदारी बढ़ाने वाला प्रभावी माध्यम बताया। मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे वीडियो का खंडन किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट डाक सेवा गिफ्ट्स योजना के तहत उपहार या इनाम दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है। पीआईबी ने नागरिकों से अपील की कि वो किसी भी संदिग्ध लिंक या वेब पेज पर क्लिक न करें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, ओटीपी या आधार नंबर कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: 1:10 और 1 सेकंड और मैं हूँ आपके साथ। समरीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है होटो पे तेरी बात। इसमें आज हम बातें करेंगे।

होटो पे तेरी बात पे मैं समरीन आप सभी का स्वागत करती हूँ। 1:16:29 और आज हम बात करेंगे यादों की। वो यादें हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं, लेकिन कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पहली कमाई भी उन्हीं में से एक है, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, उस कमाई में अपने सपनों की खुशबू होती है, अपनी मेहनत का सुकून होता है और प्राउड होता है आत्मनिर्भर बनने का। आज हम बात करेंगे उस दिन की जब पहली बार आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो आपके हाथ में आई थी, उस एहसास की, उस खुशी की, उस याद की, जिसे याद करके आज भी दिल मुस्कुरा जाता है। जैसे मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, उस दिन पहले दिन ही 70% सैलरी मैंने ख़त्म कर दी थी लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने में। आपके हाथ में जब आपकी पहली सैलरी आई तो आपने क्या महसूस किया, या उस पहली सैलरी का आपने क्या किया, हमें बताइएगा ज़रूर। और ये बताने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnow@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: 1:24 और 21 सेकंड बात हो रही है होटो पे तेरी बात पे, पहली कमाई के बारे में। जब पहली बार आप अपने जो ढेर सारे सपने आपने सजो के रखे थे ना, उन 30-31 दिनों में कि सैलरी आएगी तो ये करेंगे, उसके बारे में आपको हमें मेल करना है fmakashwadilakhnow@gmail.com पर। बताना है हमें कि आपने पहली सैलरी ले जाकर इमोशनल होकर अपनी माँ के हाथ में रखी थी, या फिर उससे कुछ खरीदा था, या एक कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे लेना है वो किया था। चले कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं, उन्हें शामिल करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था। ओके, सुधाकर जी लिखते हैं होटो पे तेरी बात,

पहली सैलरी के बारे में, मैंने पहली बार महाराष्ट्र शासन के वित्त विभाग में उप कोषागार अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया था और मैंने अपनी पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो थी 12,000 रुपये। और पहली सैलरी अभी तक मेरे को याद है क्योंकि पहले मैं मजदूरी करता था और मजदूरी का हर दिन 7 रुपये मिलता था। और अब मैं जून 2023 में रिटायर हुआ हूँ। मैडम दीदी, पहली सैलरी में बहुत कुछ ख़रीदा था मैंने और अभी की शायरी में वेजेस कुछ अच्छा, अभी की सैलरी में जो है वो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता शायद इनको अब, लेकिन जो पहली सैलरी का जो फील था वो उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। विजयपाल यादव लिखते हैं, दीदी जी आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हमारे मतलब का नहीं है क्योंकि हमारी सैलरी साल में एक बार ही देखने को मिलती है जब गन्ना बिकता है। जब हमें गन्ने का पैसा मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है। साल भर में कोई की गई मेहनत और थकान सब भूल जाते हैं। विजय जी, बात हो रही है कि पहली बार सैलरी जरूरी नहीं है, जब पहली अर्निंग आपकी आई, जब आपने मान लीजिए पूरा साल खेती की और खेती को जब बेच कर पहली बार आपके हाथ में पैसा आया, याद है आपको वो वक्त? उस बारे में, उस मेमोरी को हमारे साथ शेयर करना है तो जल्दी से हमें बताइए कि क्या किया था आपने। रामराज लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया और मधु बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यारी प्यारी बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। और आपने जो सवाल पूछा है हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमारी गलती को माफ करना और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। देखिए रामराज जी, सवाल ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो उस दौरान कभी हम कोई व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं या फिर खेती करते हैं, जिस भी जरिए से हमारे हाथ में जब पहली अर्निंग हमारी आती है, हमारा पहला सैलरी कह लीजिए उसको, इनकम कह लीजिए, आय कह लीजिए आती है, तो जब आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ था तो आपने उसका क्या किया था, इस बारे में आज हम इस कार्यक्रम होटो पे तेरी बात पे चर्चा कर रहे हैं। मोनू सेठ लिखते हैं, सबसे पहली कमाई मैंने अपनी मम्मा जी को दी थी और उससे पहले दिन कमाई से मैंने भगवान का फोटो खरीदा था और कुछ आसपास के लोगों को लड्डू खिलाया था। वाह, तो पूरी तरह से आपने खुशी सब में बांटी थी अपनी। और इसके अलावा सुधाकर जादव जी का हमारे पास मेल आया है। सुधाकर जी ने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए हम इनका इस प्रोग्राम में ये मेल शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम ज़रूर हम बता दे रहे हैं, सुधाकर जी ने हमें मेल भेजा है। और अब सुनाते हैं और आपको एक बेहतरीन सा गाना विनोद राठौर की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर गिरा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: होटो पे तेरी बात चल रहा है प्रोग्राम और मैं हूँ आपके साथ समरीन और बात हो रही है कि जो पहली सैलरी आपके हाथ में आई उस दिन को याद करते हुए बताइए क्या किया उस दिन, मम्मी को दिया या फिर अपने शौक पूरे किए या फिर मोहल्ले में मिठाई बांटी। हर पहली अर्निंग के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी तो होती है, संघर्ष होता है, इंतजार होता है, मेहनत होती है और ये याद उम्र भर हमारे साथ रहती है। हमारे साथ कई मेल्स जो हैं वो आ चुके हैं, लिसनर्स लगातार हमें मेल्स कर रहे हैं, आइए शामिल करते हैं। पहला मेल रोशनी रावत जी का आया है, इस ब्रेक के बाद लिखती हैं, समरीन दीदी जी आप कैसी हैं, 12 बजे से जुड़े हैं आपके साथ, मैं बहुत खुश हूं आपके आने से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत, पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूं। मुझे याद नहीं अपनी पहली सैलरी का मैंने क्या किया था, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी होता है सब मम्मी को दे देती हूँ, देने के बाद फिर अपने लिए उनसे पैसे मांगती हूँ। हाउ स्वीट। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी लिखते हैं कि बहन जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मैं पहली बार, मुझे जब अपनी पहली सैलरी मिली थी बहुत खुशी हुई थी, अपने घर परिवार के साथ लेकर मैंने खरीदारी की थी, मिठाई की, खूब इंजॉय किया था अपनी सैलरी को। मेरे दोस्त हैं कुलदीप उधौली से और आकाश जी मुरारपुर से और मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से अगर आपकी भी कोई याद है, मेमोरी है, तो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। सुधाकर जी लिखते हैं कि होटो पे तेरी बात प्रोग्राम में मेरी जो आपने टॉपिक लिया है कि पहली सैलरी के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ के पास मैंने अपनी पहली सैलरी दी थी और माँ की आंखों में आंसू भी आ गया था, क्योंकि मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे और मैंने भी मजदूरी की है कुछ दिन, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। तालिबान सारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम समरीन मैम जी, आज भी अपने पापा को देता हूँ मैं पहली सैलरी। हाउ स्वीट। प्रवीण लिखते हैं, मेरी अभी तक अर्निंग नहीं हुई है लेकिन जब भी होगी तो मैं ATM से पूरी सैलरी निकाल कर घर ले आऊंगा। ज्यादातर लोग जो है वो अपने घर में सैलरी दे रहे हैं। वकील अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ आंधी और बारिश हो रही है, हम खुश हैं और हमारे जितने किसान भाई, वकील अहमद मंसूर कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एमन नवाब को ये इन्होंने नाम मैंशन किए हैं, इन सबके टॉपिक से रिलेटेड आप मेल भेजे, अदरवाइज मेल शामिल नहीं होगा, सिर्फ नाम शामिल होगा। सुधांशु लिखते हैं, राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ के से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे फ्लो में फोन पे बोलते हैं ना अपना एड्रेस पूरा, वो फ्लो हम लोग का आ गया है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, सैलरी तो नहीं परंतु जब मेरी स्कॉलरशिप आई थी तो मैंने अपने घर पर बताया और दोस्तों के साथ पार्टी किया क्योंकि मेरे दोस्तों की स्कॉलरशिप भी आई थी। ओके, जावेद अख्तर लिखते हैं, गुड आफ्टरनून समरीन बाजी, कार्यक्रम होटो पे तेरी बात में आपकी आवाज को सुनकर बहुत ही खुशी मिल रही है। जब हम छोटे थे तब बनारसी साड़ियों का हुनर सीख रहे थे, जब हम पूरी तरह से उसके कारीगर बन गए तो पहली बनारसी साड़ी को तैयार किया और मार्केट में उसे ले जाकर बेचकर जब मुझे पहली सैलरी मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मन ही मन सोच रहा था कि इन पैसों से कौन सी चीजें घर के लिए लेकर जाएं। तो हमने बच्चों के लिए खिलौने और बाजार से आम लिए और बचे हुए पैसे पापा को दे दिए। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर। तो आई एम श्योर आप सब कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेट कर रहे होंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

संघर्ष मूवी से सोनू निगम की ये आवाज़ में गीत था जो कि कभी मेरा बहुत पसंदीदा गाना हुआ करता था। और ये चंद ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हमें ये आज़ादी मिलती है कि हम अपने पसंद के गाने आपको सुनवा सकें और इस आज़ादी का मजा ले सकें। होटो पे तेरी बात प्रोग्राम चल रहा है, मैं हूँ आपके साथ समरीन और आपके मेल्स हमारे आज के टॉपिक पे भर भर के हमारे पास आ रहे हैं। बाबू अंसारी लिखते हैं, एक बार टॉपिक आपको बता देते हैं मेल्स पढ़ने से पहले, आपकी पहली सैलरी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या किया आपने, कितने ख्वाब बुने थे, कितने ख्वाब पूरे कर पाए और कितने अधूरे रह गए। बाबू अंसारी देवकली अहमद बाजार अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम समरीन मैम, कैसी हैं आप। टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अब्बू की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और मैं वहीं पर काम करता हूँ और सीख रहा हूँ। कभी कभी मुझे खर्च करने के लिए पैसे मिल जाते हैं, अब्बू दे देते हैं, लेकिन मैं अभी सैलरी जो है वो पूरी तरीके से वो मुझे नहीं मिल रही है। कभी कभार पैसे मिलते हैं और मैं उन्हें खर्च कर देता हूँ, कोई बात नहीं आगे मिलेगी।

सैलरी आपको। आनंद कुमार शुक्ला लिखते हैं महमूदाबाद श्यामदासपुर से, मैम नमस्ते, हमने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट टीचर ज्वाइन किया था, पहली सैलरी जब आई तो मैसेज आया, यकीन नहीं हो रहा था कि पैसे सच में आए हैं, फिर एटीएम से निकाला, हाथ में लिया और वो खुशी मैं बता नहीं सकता। फिर सैलरी से रामचरितमानस का पाठ किया था और पूरे गांव में लड्डू बांटे थे, है ना, बहुत ही अमेजिंग और नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब आपकी अर्निंग में पहला वो वक्त जब आप याद करते हैं जब आपने अपनी सैलरी से खुशियां बांटी थी सबके साथ। रोशनी रावत लिखती हैं दीदी गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं और स्पेशली मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, थैंक यू रोशनी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। रामेश्वर जी लिखते हैं होटो पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, बहन समरीन जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं, बहन समरीन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब बहन समरीन कार्यक्रम में आती हैं तो चार चांद लगा देती हैं, हमने पहली कमाई अपने बच्चों को कपड़ा खरीद कर दिए थे और अब तो मेरी कमाई खेती है, मैं खेती पर निर्भर करता हूं, मेरा सड़क हादसे में एक पैर खराब हो गया था। अच्छा खेती आप करते हैं तो आप हमें बताएं कि अभी आपकी जो भी फसल है वो तैयार है या अभी आपने बोई है और कैसी रही इस बार की फसल, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो बहुत अनसर्टेन हो गया है, कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश, आई एम श्योर आपकी इस उम्मीद के साथ कि आपकी फसल जो है वो बेहतरीन खेत में लहलाए और खूब अच्छा आप खेती में भी करें, खूब ज्यादा कमाएं। आगे लिखते हैं रामेश्वर कटेरिया, उमा कांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, पुत्र बद्धू निशा कटेरिया और प्रज्ञा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, बेद बाबू कटेरिया, इन सब के नाम ले लीजिएगा प्रोग्राम में। आनंद कुमार शुक्ला लिखते हैं महमूदाबाद श्यामदासपुर से, नमस्ते मैम, आपका मेल मैंने शामिल कर लिया है आनंद जी। महेंद्र देपान लिखते हैं सप्रेम नमस्ते, मैं महेंद्र देपान राजस्थान के जिला नागौर से आपका बेहद खास श्रोता हूं, आपका प्रोग्राम होटो पे तेरी बात सुनकर और आज का विषय पहली कमाई जानकर मेरी अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। और आगे लिखते हैं कि साल 2010 की बात है जब मैं 10वीं कक्षा पास करने के बाद पहली बार मुंबई गया था, वहां मेहनत की तो मेरी पहले महीने की कमाई 1500 रुपए आई थी, मैंने लगातार 8 महीने तक कड़ी मेहनत की और पैसे जोड़कर जब गांव लौटा तो मेरे पिताजी ने मुझे एक कीपैड वाला मोबाइल लेकर दिया था, आज भी वो मोबाइल मेरे घर पर रखा हुआ है, हालांकि अब वो खराब हो चुका है लेकिन वो फोन मेरे लिए सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि पापा के प्यार और मेरी पहली कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है, वो मोबाइल आज भी मुझे मेरे संघर्ष भरी शुरुआत की याद दिलाता है। अच्छा ये हमारी और आपकी कॉमन है, मैंने भी आपसे शेयर किया था कि जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैंने उस सैलरी से 70% पैसों से लोगों के लिए गिफ्ट लिया था और उसी में मैंने अपने लिए भी एक गिफ्ट लिया था, वो भी कीपैड वाला फोन था, तो ये मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ। और अब बारी है एक बेहतरीन से गीत की।

होटो पे तेरी बात सुन रहे हैं आप अपने दोस्त समरीन के साथ, और देखते ही देखते वक्त ख़त्म हो गया है और हमारे जो आज का टॉपिक था यानी कि आपकी पहली सैलरी का आपने क्या किया वो याद हमारे साथ साझा कीजिए। बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया है, उनके नाम मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हमारे साथ पहला मेल जो आया था इस प्रोग्राम की शुरुआत में वो आया था 1:09 पर सुधाकर जी का, फिर मोनू सेठ, रामराज, विजयपाल, रोशनी रावत, हिंदुस्तानी, ब्रह्मेश और तालिब अंसारी। इन्होंने टॉपिक से रिलेटेड तो बात नहीं की थी लेकिन मेल किया था। प्रवीण, विजयपाल, वकील अहमद, जावेद अख्तर, महेंद्र दीपान, आनंद कुमार शुक्ला, रामेश्वर, बाबू अंसारी, रोशनी रावत और गुलफशाह सिद्दीकी और शैलेश कुमार, मोहम्मद रिजवान का मेल आया है। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। लिखती हैं गुलफशाह सिद्दीकी, समरीन अप्पी, अस्सलाम वालेकुम। गुलफशाह सिद्दीकी संडीले से, मैंने नौकरी तो नहीं की लेकिन ना अब करती हूँ, लेकिन मैं जरी का काम करती थी। अब मुझे पहली बार पैसे मिले तो मैं बहुत खुश हुई। जब मुझे पहली बार पैसे मिले तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने शॉपिंग की और अपने घर के लिए ढेर सारा सामान लिया। शैलेश कुमार लिखते हैं, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, समरीन दी को मेरा नमस्कार। हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम सुनते सुनते हम सो गए थे, अभी उठे हैं। मैडम जी 2 बजे वाले कार्यक्रम में मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। जी। मोहम्मद रिजवान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं समरीन सिस्टर? मैं मोहम्मद रिजवान, प्रोग्राम सुपर से भी सुपर है। मेरी सैलरी आती है, घर भेज देता हूँ और मैं ऑनलाइन यूएई अबू धाबी से इस वक्त आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान। ना ही सिर्फ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बल्कि हमारे साथ कनेक्ट भी हुए हैं। उत्तम कुमार भागवत लिखते हैं, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बोड़ी गाछी, पश्चिम बंगाल।

गाल, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, इन सब के नाम इन्होंने लिए हैं इस प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और अब सुनाते हैं आपको ये गीत और होठो से तेरी बात से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, होंगे बेहतरीन बातें और खूबसूरत गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीला

0: हम मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

0: पुष्पांजलि, हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70

2:55 होटो पे तेरी बात प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अपनी दोस्त समरीन के साथ भेज रहे हैं मैं आप वो मेल्स जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, वो बातें जो पॉसिबल नहीं हो पाती और सारे प्रोग्राम्स में, क्योंकि वन वे प्रोग्राम्स ही होते हैं, हम ही बोल रहे होते हैं, हम ही आपके लिए गाने प्ले कर रहे होते हैं, हमारे पसंद के ही गाने होते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको यह आज़ादी मिलती है कि आप हमसे मेल्स के जरिए बातचीत भी कर सकते हैं। सुनील पाठक जी ने लिखा है कि प्रस्तुतकर्ता मैडम जी सादर प्रणाम, पंजाब से इन्होंने हमें मेल भेजा है और ये इस प्रोग्राम में नाम लेना चाहते हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का। मुकेश की आवाज़ में कोई भी गाना सुना दीजिए। होस्ट मैडम जी, हमने 2 बजे भी मैसेज किया था, गया नहीं शायद, अब दूसरा मैसेज भेज रहा हूँ, प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों के मेल्स जो हैं वो नज़रअंदाज ना हो। संजय ढींगिया लिखते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार जी, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शानदार गीत लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हमें मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहर अरोड़ा लिखते हैं पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मूवी आंधी तुम आ गए हो नूर आ गया है, मेरा भी पसंदीदा गीत है ये। गुरमीत लिखते हैं मीता साउथ एक्सटेंशन से, इन्होंने हमें ये मेल भेजा है, आगे भी कुछ लिख देते। वारिस अली जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने फ्रॉम द मूवी महल, देवरन एंड आशा पारिक, एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। मोहम्मद सादिक खत्री लिखते हैं आपको दिल से आदाब मोहतरमा जी, आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, जब मैं डूबने लगता हूं तो दरिया उछाल देता है, पसंद करता है वैष्णव कॉलोनी सनवाद से मोहम्मद सादिक खत्री, रहमान बाबा पान, हाजी कयूम प्रिंस, हाजी अयूब शेरी और इन्होंने आगे हमें मेल भेजा है अब्दुल गफ्फार ने, प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, आपकी अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। और नाचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। दीपेश वर्मा लिखते हैं ग्राम पीपर रोड सरगावा छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, फिल्म खुदा गवाह, न तू ना जा मेरे बादशाह, उन्होंने गाने की फरमाइश की है। संदीप मक्कर लिखते हैं फिल्म चांदनी सॉन्ग से तेरे मेरे होठों पे सुनवा दीजिए। ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल साहनी पिंगवा वाला चौक गुराया जालंधर से इन्होंने हमें मेल किया है। अब्दुल गफ्फार लिखते हैं प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए। ताज मोहम्मद लिखते हैं आदरणीय प्रसारक नमस्कार जी, आप हमारी फरमाइश के किसी भी गीत के साथ, आप हमारी फरमाइश को किसी भी गीत के साथ शामिल कर लीजिए, तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। दिलीप रामेश्वर, इन्होंने हमें मेल कहां से किया है, महाराष्ट्र से, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है जो हम अभी आपके साथ साझा भी करेंगे। सतीश अनेजा लिखते हैं नमस्कार सिस्टर जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहांसेस द प्रोग्राम, थैंक यू सतीश जी। जय लिखते हैं हमारा नंबर कब आएगा, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, आपका नंबर आ चुका है। पी एस नावकर लिखते हैं आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार, फिल्म लाट साहब से स्वर आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, और आगे ये सुनवाना चाह रहे हैं पी एस नवांकर को, निर्मला नवांकर को, विशाल नवांकर और सुपान ताइडे को। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये बेहतरीन सा ट्रैक, जिसकी शुरुआत में ही जो मैंने मेल पढ़ा था उन्होंने इसकी फरमाइश की है।

और हॉटमेल में मैं समरीन आपका एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। आपके जो मेल्स हैं वो लगातार मेरे पास आ रहे हैं और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हर मेल को इस प्रोग्राम में शामिल करें। पहला मेल ज्यादा वक्त ना लेते हुए डीके जी का आया है, न्यू दिल्ली से। कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, फिल्म सत्या का सॉन्ग सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। एम के राज लिखते हैं, शायरी दो लाइन, रेडियो की धुन में बसी है आपकी।

आवाज भानपुर से लखनऊ तक गूंजे हर रोज। आज जी को शुभ दोपहरिया। कार्यक्रम है रेनबो हॉटमेल। मुनेश कुमार राज लिखते हैं, ग्राम भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी, शुभ दोपहरिया। आप कैसी हैं? आपकी आवाज और कार्यक्रम की प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब रहती है। मैं हर घंटे हर रोज लाइव प्रोग्राम सुनता रहता हूं। 1990 के दशक की यादगार फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर हम आपके हैं कौन, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है और करण अर्जुन, सच्ची मोहब्बत और रिश्तों का जमाना, पर्दे पे दिखता था अपना ही अफसाना। ये जो इन्होंने फिल्म दी है शायद इससे ही कोई गीत सुनना चाह रहे हैं। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा लिखते हैं, हॉट मेल आदरणीय प्रसारक जी सप्रेम नमस्कार, किसी भी गीत में जो है मेरा ये मेल शामिल कर लीजिएगा। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, इन्होंने हमें मेल भेजा है। डीके राज रेडियो से, प्रिय आरजे नमस्कार, फिल्म सागर का गीत चेहरा है या चांद किला, और राजकोट से जैमिन जैन, हेतल और कृष्ण जैन को ये सुनवाना चाहते हैं। मोहम्मद रिजवान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर मिनप्पी, मोहम्मद रिजवान संडीला हरदोई से ऑनलाइन ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। यूएई से भी सुनता हूँ, आपके प्यार में हम सवरने लगे गाना सुनवा दीजिए। तेजवान लिखते हैं, हेलो मैम जी, गुड आफ्टरनून, आलापुर कुंडा प्रतापगढ़ से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मैम जी कोई प्यारा सा सॉन्ग सुनवा दीजिए, मैं रेडियो बहुत दिन से सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है। शुक्रिया तेजबान जी। और आगे लालगिरी जी लिखते हैं, नमस्कार दीदी जी, आज आपकी आवाज़ बहुत सुंदर लग रही है, प्रस्तुति बहुत पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, कोई भी सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए, आपके साथ हम लाइव बने हुए हैं। क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास तो हम आपको सुनवाते हैं, इतनी देर से जो लगातार दो तीन लोगों ने गाने की फरमाइश की है उसे आप तक पहुँचाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और देखते ही देखते हमारा हॉटमेल प्रोग्राम भी इख्तिताम पर आ चुका है। अब हम आपसे इस प्रोग्राम से लेंगे विदा, लेकिन जाते जाते एक मेल जो मैं शामिल करना चाहूंगी रोजी दी कैस्ट्रो का, लिखते हैं होज दी वी ऑल्सो लिसनिंग योर प्रोग्राम विद फैमिली सो प्लीज रीड माई मेल ऑल्सो। जानकीपुरम सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, इन्होंने हमें मेल भेजा है और गाने की फरमाइश की है जो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे। लेकिन जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और बहुत माजरत जो मेल प्रोग्राम में वक्त की कमी के चलते और ढेर सारे मेल्स की वजह से रह गए हों। और 3 बजे के बाद आपके साथ मैं होंगी सतरंगी दुनिया में। आज कुछ इंटरेस्टिंग और बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर सतरंगी दुनिया में आपसे फिर मिलूंगी। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद आपसे फिर मुलाकात।

102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। FM रेनबो कानपुर के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आरजे महिमा, लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिक आर। और आज का ये खास म्यूजिकल सफर समर्पित है वर्ल्ड नो टोबैको डे को, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है जिंदगी की असली खुशबू सिगरेट या गुटके में नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान में है। तो अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे सेहत की, जिंदगी की और एंजॉय करेंगे प्लेबैक सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत के गाए कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स और देंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनको ट्रिब्यूट। सो लेट्स एंजॉय द फर्स्ट सॉन्ग।

जी हाँ, वो लम्हे मूवी का सॉन्ग था ये, प्लेबैक सिंगर केके की आवाज में। दोस्तों, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर साल लाखों लोग टोबैको की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। टोबैको सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे जिंदगी को कमजोर करने वाली लत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर नई सुबह एक नई शुरुआत लाती है, इसलिए याद ये रखना है कि एक सिगरेट कम नहीं, एक जिंदगी ज्यादा है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे सहेज कर सुरक्षित रखना भी हमारा ही फर्ज है। इसलिए अगर आप स्मोक नहीं करते तो स्मोक से दूर रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्मोकिंग से कैंसर, हार्ट डिजीजेज और लंग्स की प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक होती है। और दोस्तों, जब आपके लिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ कि अगर आपको किसी अपने को टोबैको छोड़ने के लिए मोटिवेट करना हो तो आप क्या कहेंगे? लिख भेजिए हमें अपना जवाब, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए और जल्दी से

लिख भेजिए हमारा अपना जवाब, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तब तक मैं आरजे महिमा आपके आंसर का कर रही हूँ इंतजार, तब तक आप इंजॉय कीजिए प्रोग्राम म्यूजिक आर का ये नेक्स्ट सॉन्ग।

जी हाँ, जन्नत मूवी का ये वर्सेटाइल ट्रैक एंजॉय किया आपने। और गाइज, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर खुद से एक प्रॉमिस करिए कि नो टोबैको मोर लाइफ, क्योंकि एक स्मोकर अकेला सफ़र नहीं करता, उसके साथ उसकी फैमिली, उसके बच्चे, साथ ही उसके अपने भी उस तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड नो टोबैको डे का मकसद सिर्फ अवेयरनेस नहीं बल्कि एक्शन भी है। WHO और भी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दुनिया भर में लोगों को टोबैको फ्री लाइफ के लिए इंस्पायर करती हैं। तो आज से ही क्यों ना छोटी छोटी शुरुआत की जाए, जैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में अवेयरनेस फैलाइए, पब्लिक प्लेसेस पर नो स्मोकिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्विट करने की हिम्मत।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरी यानी आरजे महिमा के साथ। दोस्तों प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो कानपुर पर 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। हम अभी हाजिर होते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। और आज का ये प्रोग्राम बेस्ड है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और सेहत उसकी सबसे बड़ी दौलत। आज के दिन एक छोटा सा रिजोल्यूशन लीजिए कि मैं टोबैको को ना खाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करूंगा। याद रखिए दोस्तों, स्टाइल तो टेम्परेरी है लेकिन हेल्थ आपकी परमानेंट है। इसलिए धुएं में उड़ती जिंदगी को रोक लीजिए, अपने कल के लिए आज सोच लीजिए। हर सांस अनमोल है दोस्तों, इसलिए धूम्रपान छोड़िए और जिंदगी को चुन लीजिए।

102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। और आज का ये प्रोग्राम बेस्ड है दोस्तों वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। तो मैंने प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि अगर आपको किसी अपने को टोबैको छोड़ने के लिए मोटिवेट करना हो तो आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में एक ईमेल आया है बख्शी तालाब से रजत जी का, और ये लिखते हैं कि मैं उनसे यही कहूंगा कि टोबैको सिर्फ एक आदत नहीं, धीरे धीरे सेहत को खत्म करने वाली चीज है। आज छोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन कल की बेहतर जिंदगी के लिए ये सबसे अच्छा फैसला होगा, क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। बहुत अच्छी बात कही रजत जी आपने। तो भाई जिंदगी को चुनिए, टोबैको को नहीं। और रजत जी आपने बहुत इंस्पिरेशनल बात कही, जिससे और जो टोबैको का सेवन कर रहे हैं उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इन बातों से। और दोस्तों एक लाइन ज़रूर याद रखिए कि एडिक्शन से स्ट्रांग आपका विल पावर होता है, तो अपने विल पावर को मजबूत बनाइए और टोबैको की आदत छोड़िए और इन्जॉय कीजिए प्रोग्राम का ये नेक्स्ट सॉन्ग।

बहुत अलग अलग बातें हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि स्मार्ट बनिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए कि टोबैको छोड़िए और ज़िंदगी से नाता जोड़िए, तभी आप और आप अपनी फैमिली की लाइफ को खूबसूरत बना पाएंगे।

जी हाँ, तुम मिले मूवी से ये ट्रैक एंजॉय किया आपने। दोस्तों, हर बार जब आप टोबैको को नो बोलते हैं, तब आप अपनी फैमिली को एक हेल्दी फ्यूचर गिफ्ट करते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन को ये समझना होगा कि कूल बनना और निकोटिन लेना ये

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
7: सारेगा पदा निदा पगरेगा मगरेगा सागा।
8: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। और आज का ये प्रोग्राम बेस्ड है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। दोस्तों, टोबैको सिर्फ स्मोकिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पान मसाला, वेपिंग और फ्लेवर्ड निकोटीन प्रोडक्ट्स भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है।

जी हाँ, जिंदगी का ये सफरनामा अगर हेल्दी और पॉजिटिविटी से बीते तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी एक बुरी आदत आपके बच्चों को भी वही सीखने पर मजबूर कर दे तो क्या होगा? क्योंकि चिल्ड्रन ऑफन कॉपी एल्डर्स, मतलब बच्चे क्या होते हैं, अक्सर बड़ों की ही कॉपी करते हैं। इसलिए आज का डिसीजन सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का भी फ्यूचर बदल सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि भाई समझदारी दिखाइए और टोबैको की अगर आपको लत है तो वो छोड़िए।

गाइज, मैं तो यही कहूंगी कि म्यूजिक की तरह अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाइए, ना कि स्मोकिंग करके धुएं में उड़ा दीजिए जिंदगी। क्योंकि हर सांस में उम्मीद बसती है, हर धड़कन में एक कहानी है। इसलिए तंबाकू छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी में समझदारी है।

0: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा म्यूज़िक आर्ट प्रोग्राम का, जिसमें म्यूज़िक भी, मैसेज भी और एक हेल्दी लाइफ को इंस्पिरेशन भी मिली। अब वक्त है खुद से एक कमिटमेंट का कि नो स्मोकिंग, नो टेबेको एंड यस टू लाइफ। और अब मैं आरजे महिमा करती हूँ प्रोग्राम म्यूज़िक आर को वाइंड अप और लेती हूँ आपसे अलविदा और बोलती हूँ आपको टाटा बाय बाय। बट यू स्टे ट्यून्ड ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है हेलो कानपुर, जो कि हम लेके हाजिर होते हैं बस कुछ ही देर में।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: 102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। लीजिए सुनिए प्रोग्राम हेलो कानपुर।

0: नमस्कार कानपुर, शहर की भागदौड़ के बीच थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी दिल की बातें लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके बीच। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना इंटरेक्टिव शो हेलो कानपुर, जहाँ कोई दिल की बातें कहेगा, कोई दोस्त को डेडिकेट करेगा अपना पसंदीदा गाना, और कोई बस यूं ही कहेगा अपने दिलों का कोई किस्सा। तो देर किस बात की, फोन मिलाइए और बन जाइए आज की इस महफिल का सबसे खास हिस्सा। मैं हूं आपका हम सफर आरजे सौरभ, और अगले कुछ पलों तक संगीत, बातें और मुस्कुराहटें बस आपके नाम। हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री मोहम्मद अहमद रायनी बोल रहे हैं। सौरभ त्रिपाठी जी नमस्कार।
0: क्या बात है अहमद साहब, आप आवाज कितने झट से पहचान जाते हैं। वाकई आपकी दाद देनी पड़ेगी।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
0: और बताएं, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। सबसे पहले अपने हाल चाल बताइए, कैसे हैं आप?
1: हमारे हाल तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, आप अपने हाल बता दीजिए।
0: बस आप लोगों से जब बात होती है, इतनी गर्मजोशी से आप बात करते हैं, स्वागत करते हैं सभी का, तो दिल अपने आप में खुश हो जाता है अहमद साहब।
1: बेशक बेशक बेशक।
0: घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, आपकी दुआ है
0: और
1: फजल है।
0: काम काज कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: 11 मई 2025 से कबाड़ की तैयारी कर रहे हैं।
0: इस समय मौसम जब इतना गर्म है, लोग घरों से अपने बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में काम पे क्या कोई असर

0: पड़ता है आपके?
1: ना ना, कोई असर नहीं है।
0: दिन में जब आप बाहर निकलते होंगे तो आपको तो जरूर इतनी ज्यादा धूप का सामना करना पड़ता होगा।
1: हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन जहाँ पे छाया मिल जाती है
0: जी,
1: तो फिर वहाँ आधा घंटा पौन घंटा बैठ के आराम करते हैं। पानी की बोतल साथ में रहती है
0: जी,
1: उसमें ग्लूकोज भी होता है।
0: क्या बात है।
1: और नींबू भी रखे रहते हैं, जो मन हुआ उसको यूज किया
0: जी,
1: और फिर चल दिए, फिर कहीं छाया मिली फिर बैठ गए।
0: बिल्कुल इसी तरह से हम सभी को इस गर्मी का सामना करना है कि अपने शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है, और जैसा कि आपने बताया कि ग्लूकोज या फिर नींबू पानी का यूज करना है
1: जी।
0: तो काम भी अच्छा चल रहा है और आप भी अच्छे हैं। इन दिनों एफएम रेनबो के प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं?
1: कानपुर केंद्र के कार्यक्रमों के बारे में हम कहा बताएं
0: जी,
1: बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम।
0: क्या बात है,
1: माशाल्लाह, जब से ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं
0: जी,
1: हम इनकी तारीफ जितनी करें उतनी ही कम है। कार्यक्रमों के थोड़े से नाम ले लें।
0: बिल्कुल,
1: गुड मॉर्निंग कानपुर, सुरों की पुरानी महफिल, रस बहार, हम नवा, म्यूजिक आवर, और वो पसंद वाला जो कार्यक्रम आता है, कार्यक्रम पसंद आपकी
0: जी,
1: आए है। सुन के दिमाग खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यानी दिल और दिमाग खुश हो जाता है
0: जी। तो अहमद साहब, रेनबो पर आप जो हमारे प्रोग्राम्स आपने नाम लिए अभी, सारे कार्यक्रम आप इसका मतलब बकायदा रोज सुन रहे हैं, तो कार्यक्रम हम नवा जिसमें अलग अलग विषयों पर हम अलग अलग दिनों पर बातचीत करते रहते हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम हमारा ये आपको?
1: बहुत उमदा। आप अनाउंसर की आवाजें जो होती हैं
0: जी,
1: वो प्रोग्राम को इतना अच्छा प्रेजेंट करती हैं कि हम सुन के जो है तो मतलब बहुत खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं।
0: चलिए,
1: और हम नवा प्रोग्राम तो हम मिस करते ही नहीं ना।
0: बिल्कुल, हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि बातचीत के माध्यम से अलग अलग विषयों को आप तक पहुंचाएं, ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जो शायद हम डेली के अपनी लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में उन विषयों से मुखातिब नहीं हो पाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
1: बेशक।
0: और रही बात एंटरटेनमेंट की, तो जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है।
1: जी जी जी जी जी।
0: तो आपके फरमाइशी पत्र तो अक्सर हम पढ़ा करते हैं।
1: जी जी जी जी जी।
0: और बताएं, कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई और बदलाव चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों में आप?
1: बदलाव तो हम चाहते हैं
0: जी,
1: लेकिन वो बदलाव जो है तो हम लिख के भेजेंगे।
0: बिल्कुल,
1: मेल मिलाप कार्यक्रम में
0: जी, ये नया
1: ना, इसमें अगर हम आपसे जो है तो मतलब बात करेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हम ये बात
0: बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्र का। और घर परिवार, आपने बताया सब लोग अच्छे से हैं, खैरियत से हैं, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे गर्मी के दिन हैं, आप स्वास्थ्य का अपना पूरा ख्याल रखते हुए आगे काम भी करेंगे। फिलहाल आज आपने हेलो कानपुर प्रोग्राम में हमें फोन किया है, जल्दी से अपनी पसंद बता दें हमें, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल
0: जी।
1: आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार, गीतकार गोविंद मुनीस, संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरेलाल, और गाने के बोल हैं, जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे और कभी बेगाना।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने पसंद किया है।
1: मेरी पत्नी शकीला बेगम रानी, आपको, आपके पूरे परिवार को, एफएम रेनबो के पूरे परिवार को ये गीत हम खास करके डेडिकेट करना चाहते हैं आपके माध्यम से।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना आपके रेडियो सेट्स पर।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हेलो कानपुर।
7: हेलो कानपुर।
6: हेलो, नाम बताएं अपना।
7: नितेश त्रिपाठी बोल रहे हैं।
6: नितेश जी सनिहापुर से।
7: जी जी
6: जी। नितेश जी कैसे हैं आप?
7: सर ठीक ठाक।

0: है।
1: बिल्कुल ठीक रहना भी चाहिए। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। क्या करते हैं नितेश आप?
0: जी सर, खेती किसानी का काम है।
1: खेती किसानी का काम है, लेकिन बाहर का जो मौसम है ये मेरे ख्याल से इजाजत नहीं देता कि इस वक्त खेतों पर जाया जाए।
0: जी सर,
1: जी, सुबह होते ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि मानो दिन के 12-1 बजे के बीच का समय हो, ऐसा महसूस होता है। तो इतनी गर्मी जो पड़ रही है, ऐसे में खेतों में इस समय क्या लगा रखा है आपने?
0: खेतों में सर इस समय मूंग और उड़द की फसल लगी हुई।
1: खेतों पर क्या रोज कुछ काम होता है?
0: जी सर, खेतों पर तो जाना पड़ता है सुबह या शाम को जाकर।
1: तो करते क्या हैं इस समय खेतों पर आप?
0: इस समय खेतों में कुछ नहीं सर, उस फसल असल देखनी पड़ती है।
1: जी,
0: अब ये कटाई वाला समय आ रहा है सर।
1: तो जैसे खेतों पर जाते हैं, फसलों को देख लेते हैं कि कहीं कुछ जरूरत ना हो फसल को, या फिर पानी वगैरह भी लगाना पड़ता है क्या इस समय?
0: जी सर, पानी लगाना पड़ता है, पानी लग गया है खेतों का, बस कटाई का टाइम है। हफ्ते खाड़ में
1: जी,
0: फलियां जो मूंग और उड़द की है वो पक गई। जी
1: तो फसल कैसी हुई है?
0: सर, फसल तो बहुत अच्छी है,
1: जी,
0: अब वो कटने के बाद ही मालूम पड़ेगी।
1: तो इतनी जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसका क्या कोई असर पड़ता है?
0: जी सर, हाँ पड़ता तो है, पानी यानी टाइम से देना पड़ता है फसलों को,
1: जी,
0: जिससे वो मुरझाए ना, फूल वूल मूंग या उड़द के ना झड़ जाए।
1: तो जो आपने बताया सुबह के समय और शाम के समय आप खेतों पर जाते हैं, तो पानी भी इसी वक्त लगाते होंगे?
0: जी, पानी सुबह या शाम को लगता है सर। नहीं,
1: तो रोज पानी लगाना पड़ता है खेतों पर?
0: पानी रोज नहीं लगाना पड़ता, पानी इसमें सिर्फ दो ही पानी देने पड़ते हैं सर।
1: जी। और जब ये फसलों की कटाई हो जाएगी, इसके बाद खेतों पर क्या लगाएंगे?
0: इसके बाद सर धान लगाइए।
1: धान। तो जो ये गर्मी पड़ रही है, दिन में खेतों पर जाना भी नहीं होता, ऐसे में खाली वक्त कैसे गुजारते हैं अपना?
0: जी सर, विविध भारती सुन लेते हैं।
1: विविध भारती। जी बिल्कुल, विविध भारती एक ऐसा साथी जो हर एक मौके पर हर एक समय में साथ निभाता है। कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
0: कार्यक्रम आपके यहाँ से सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे आते हैं।
1: ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये सभी आप लोगों की पसंद पर ही बेस्ड होते हैं, और आप लोग जिस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, कोशिश हमारी वही रहती है कि आपको उस तरह के कार्यक्रम ही आप तक पहुंचा सकें। कौन सा हमारा ये कोई खास कार्यक्रम ऐसा होगा जो आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा?
0: जी सर, हमनवा बहुत अच्छा लगता है।
1: हमनवा प्रोग्राम सभी को पसंद आता है। क्या खास बात लगती है इस प्रोग्राम में आपको?
0: सर जो किसी इश्यू इश्यू पे बात की जाती है वो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, यानी जो विषय हम उनमें लेते हैं, जिन टॉपिक्स पर बात करते हैं, वो विषय वो टॉपिक्स कई बार ऐसा होता है कि उन विषयों पर हम कुछ नहीं जानते, ऐसी जानकारियां हमको मिलती हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोगी होती हैं। तो यही हमारी भी कोशिश रहती है कि आप तक उन सभी विषयों को आप तक पहुंचाएं जिनकी कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, और उन विषयों से हम अनजान रहते हैं। तो चलिए, आपने हमारे कार्यक्रम ध्यान से सुने और उन पर अपना फीडबैक भी दिया, बड़ा ही अच्छा लगा। और आज
0: आप
1: आपने
0: लोगों की आवाज सुन के भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, धन्यवाद। आप भी काफ़ी जब बोलते हैं, या फिर आपके जो पत्र आते हैं, या फिर आपसे जब हेलो कानपुर प्रोग्राम में इस तरह से सीधे रूबरू होना का मौका मिलता है, तो वाकई में बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और बताएं, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: घर परिवार में सभी लोग सब ठीक है।
1: आज हेलो कानपुर प्रोग्राम में आपका फोन कॉल शामिल हुआ है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
0: सर, अनजाना अनजानी का गीत सुनना है, तुझे भुला दिया।
1: तो नितेश जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही पसंद पर ये गाना।
0: थैंक यू।

0: हेलो कानपुर।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं उड़ीसा से रेडियो लवर नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट गंजाम उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
0: नारायण जी, उड़ीसा से आप बात कर रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो उड़ीसा से आप बात कर रहे हैं मोबाइल ऐप के जरिए, आकाशवाणी कानपुर से आप जुड़े हुए हैं?
1: जी सर, मैं यूपी का कानपुर सुन रहा हूँ। यूपी बरेली, रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज सभी टेस्ट में सुन रहा हूँ न्यूज ऑन ऐप पर।
0: तो इतने सारे स्टेशनों से आप जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्यक्रम आप सुनते हैं, तो समय कैसे निकाल लेते हैं इन सभी कार्यक्रमों को सुनने का आप?
1: रामपुर और बरेली का जुबान कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, और अयोध्या का फोन इन कार्यक्रम लाइव फोन रात्रि 9:30 को हुआ से वो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे को हिंदी के टूटा मोटा या ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं ज्यादा टेस्ट में जोड़ रहा हूँ।
0: यानी हिंदी ज्यादा अच्छी से नहीं आती है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन समझ लेते हैं और कार्यक्रमों को एंजॉय कर रहे हैं।
1: जी सर,
0: बढ़िया है। आज हेलो कानपुर प्रोग्राम में आपने हमें फोन किया है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है समाधि, गाना है जब तक रहे तन में जिया वादा रहा।

0: हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए।
1: क्या बात है, आपने अपनी गायन क्षमता का भी एक नमूना हमें पेश कर दिया, सुना दिया। वाकई में आपने काफी मधुर गाया है इस गीत को। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना आपके रेडियो सेट्स पर।
0: थैंक यू सर, नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: जब तक रहे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हेलो कानपुर।
7: हेलो।
6: हेलो, नाम बताएं अपना।
7: प्रवीण कमल, विलेज एंड पोस्ट मोरिया, डिस्ट्रिक्ट कानपुर।
6: प्रवीण जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप?
7: हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हो?
6: जी हम भी अच्छे हैं। और बताएं सबसे पहले करते क्या हैं आप?
7: सर हम तो पढ़ाई करते हैं, BTC कर रहे हैं। की बात
6: BTC कर रहे हैं?
7: जी,
6: यानी
7: शिक्षक बनने का इरादा है।
6: बिल्कुल, बनने का इरादा है क्या? आपने उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं और BTC करने के बाद जहाँ तक है आप

0: शिक्षक बन ही जाएंगे।
1: जी
0: जी
1: जी सर, आपसे बात हो चुकी है हमको लग रहा है।
0: जी बिल्कुल, नाम हमें भी कुछ याद आ रहा है कि आपसे पहले हमारी बात हुई है, पर काफी दिनों बाद इधर सभी से बात हो रही है तो जहन में सभी के नाम तो हैं, लेकिन दोबारा बात करके वो पुरानी यादें वापस
1: ये
0: आ रही हैं। तो प्रवीण, आपने बताया BTC कर रहे हैं।
1: जी सर।
0: और आज जिस तरह से आपको पता है कि संडे है 31 तारीख,
1: जी जी सर,
0: और आज पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे।
1: जी सर।
0: तो तंबाकू का सेवन तो नहीं करते आप?
1: जी नहीं करते हैं सर, इससे तो वो है क्या कि नशा करने से आंखों पर रोशनी मतलब असर कुछ ज्यादा होता है।
0: जी बिल्कुल, तंबाकू ना ही केवल स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही है, साथ ही साथ ये हर तरह से घातक है।
1: जी जी सर।
0: तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो हम मना रहे हैं, और ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि धूम्रपान केवल हमारे फेफड़ों के लिए या फिर कैंसरस होता है, ऐसा नहीं है।
1: जी सर।
0: अलग अलग तरह के विकार तंबाकू से हो सकते हैं।
1: जी सर।
0: तो हम सभी को चाहिए कि आज इस तरह का प्रण लें कि नई जनरेशन तो खास तौर पर उसको चाहिए कि तंबाकू से दूरी बनाए रखे,
1: बनाए रखे।
0: और घरों में भी अगर पुरानी पीढ़ी से कोई इस तरह का सेवन करता हो तो उसके दुष्प्रभाव के बारे में हमें बताना चाहिए।
1: हाँ, उसको मना करें।
0: बिल्कुल। और बताइए घर में कौन कौन है?
1: घर में मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, बाबा हैं, दीदी हैं, भैया हैं, सभी लोग हैं।
0: और रेनबो से जुड़ाव कब से है, कब से सुनते आ रहे हैं?
1: सर ये लगभग हमको 8-9 साल हो गए।
0: तो कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको हमारे?
1: हमको बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे ज्यादा तो यही हेलो कानपुर और हेलो फरमाइश जो पहले आता था, तो आपकी फरमाइश आता है रात में।
0: जी, रात 9 बजे हमारे प्रोग्राम आता है आपकी फरमाइश।
1: जी बहुत सुनते हैं।
0: तो चलिए, फोन इन कार्यक्रमों से ज्यादा जुड़ाव है आपका, इसलिए आपने हमें आज फोन कॉल किया है। क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी सर, गाना सुनना है हमको, वो गाना सुनवा दीजिए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में।
0: तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो कानपुर।
1: यस सर।
0: हेलो, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम शशांक मिश्रा है।
0: शशांक मिश्रा।
1: यस।
0: तो शशांक कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सर मैं नेहरू नगर से बात कर रहा हूँ।
0: नेहरू नगर कानपुर से बात कर रहे हैं आप?
1: यस सर। और मैं एक सॉन्ग सुनना चाह रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे, पहले थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज काफी धीमी आ रही है। करते क्या है शशांक आप?
1: सर मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ।
0: क्लास 5th के स्टूडेंट हैं आप?
1: यस।
0: पढ़ाई करते हैं, काफी छोटे हैं आप?
1: यस सर। और मैं आपके मतलब कि ये सारे आपके रेडियो में सारे चीजें जो सब आपकी हेलो फरमाई ये सब सुनते ही रहते हैं पाते पाते।
0: यानी प्रोग्राम्स आप सुनते हैं हमारे?
1: हाँ। और आपकी आवाज हमको बड़ी मीठी लगी है
0: जी। आपकी आवाज हमसे भी ज्यादा मीठी है।
1: और आपको सर आपको गंगा दशहरा की और आज जो एकादशी उसकी हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शशांक।
1: अब मैं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, बताऊं?
0: जी शशांक, गाना हम जरूर सुनवाएंगे, पहले आपसे कुछ बात कर लें।
1: यस सर।
0: तो क्लास 5th में आप पढ़ते हैं, पढ़ना कैसा लगता है आपको?
1: ठीक लगता
0: है। ठीक लगता है? ज्यादा मजा नहीं आता क्या पढ़ने में?
1: मजा आता, अच्छा लगता।
0: अच्छा लगता है। कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं?
1: मैथ।
0: मैथ्स अच्छी लगती है?
1: हाँ।
0: और किस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता?
1: जीके।
0: जीके, तो ऐसा क्यों है? जीके तो ऐसा विषय है कि रोज कुछ ना कुछ नया हम चाहे अनचाहे सीखते ही रहते हैं, और वही सारी चीजें। जी
1: थोड़ा लर्न करने में दिक्कत
0: है। लर्न करने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए शशांक हमें चाहिए कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। समाचार पत्र अगर हम पढ़ते हैं तो अपने आप से हमें ऐसी ऐसी
1: जानकारी
0: जी तो ऐसी जानकारियां हमेशा हमको मिल जाती हैं खबरों के माध्यम से, कि वही सारी चीजें जीके में होती हैं जनरल नॉलेज में। तो न्यूज देखने की, न्यूज पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज सुनने की आदत डालिए, अपने आप से रुचि होने लगेगी इस सब्जेक्ट में। वैसे तो आप बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन क्या आपने अभी सोच रखा है कि भविष्य में बड़े होकर क्या बनेंगे आप?
1: अभी तो नहीं सर बता सकते कुछ।
0: चलिए कोई बात नहीं, उम्र काफी छोटी है, 5th क्लास में पढ़ते हैं आप, लेकिन मन में बड़े होते होते पढ़ते पढ़ते ये जरूर विचार करिएगा कि बड़े होकर आपको क्या बनना है, उसी दिशा में उसी तरह की तैयारी करिएगा जिससे कि आप जीवन में सफल हो सकें।
1: और हम कुछ नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, बोले?
0: जी बिल्कुल, आपने फरमाइश क्या बताई अपनी, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: माई फादर नेम इज प्रवीण कुमार मिश्रा एंड माई मदर नेम इज अंजू मिश्रा, और आज हम गाना सुनेंगे श्री गणेशा देवा।
0: तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद पर ये गाना, एंजॉय कीजिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो कानपुर,
2: त्रिपाठी जी नमस्कार।
1: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
2: संदीप कुशवाहा बोल रहे हैं सर जी।
1: संदीप जी, स्वागत है आपका भैरमपुर से।
2: जी सर जी, बिल्कुल
1: जी। कैसे हैं आप?
2: सर जी बहुत ही अच्छे हैं।
1: अच्छे हैं और अच्छा होना भी चाहिए। और आपसे दोबारा इतने दिनों बाद बात करके काफी अच्छा अनुभव कर रहे हैं हम भी।
2: जी सर
1: जी, आपने अपना परिचय दे दिया। कर क्या रहे हैं इन दिनों आप?
2: सर जी हमारी दुकान है तो दुकान पर ही बैठे थे।
1: तो किस चीज की दुकान है एक बार फिर से बता दें।
2: हमारे पास जी खाद और बीज की दुकान है।
1: खाद और बीज की दुकान है आपकी जी। तो कैसी चल रही है दुकान? तो
2: इस समय सर जी थोड़ा अभी डाउन चल रही है
1: जी।
2: अभी आगे जब सीजन आएगा तो अच्छी चलेगी।
1: बिल्कुल, गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है तो कैसे गर्मी का सामना कर रहे हैं आप?
2: गर्मी का सामना सर जी ऐसे कर रहे हैं कि ज्यादातर इतना हो सकता उतना धूप में नहीं चलते हैं, धूप बचाते हैं। सारी दोपहर कहीं नहीं निकलते, सिर्फ अपनी दुकान के अंदर ही बैठे रहते हैं।
1: बहुत ही
2: ज्यादातर ठंडा पानी पीते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ आम भी उपलब्ध है, तो हम लोग पन्ना भी आम का बना के पीते हैं
1: जी।
2: इसी तरह से अपनी गर्मी
1: दूर
2: कर रहे हैं
1: जी। बिल्कुल, तो ऐसा ही करना चाहिए। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है
2: जी।
1: और स्वास्थ्य को सचेत लेने की जब बात हो रही है तो संदीप, हम आपके माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज 31 मई को दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। और जैसा कि नाम से जान पड़ रहा है कि मनाने का मुख्य इस दिवस को उद्देश्य है कि तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों और बीमारियों से लोगों को अवगत कराना। तो तंबाकू का उपयोग तो नहीं करते आप?
2: सर हम तंबाकू और गुटखे किसी भी चीज का उपयोग करने करते हैं
1: जी। बिल्कुल भी इसका उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हम सभी जानते हैं। पर कहीं ना कहीं पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक इस चीज को जाने अनजाने अपना लेती है और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानते हुए भी हम इसकी आदत डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो ये हानिकारक होती ही है, तो इन चीजों से बचना ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है।
2: जी सर, सर जी मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक एक बात और पहुंचाना चाहता हूं
1: जी,
2: कि जितनी भी हो सके उतनी इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखें, जिससे हमारा इन चीजों से हमारा खाने से हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है, हमारा धन भी बर्बाद होता है।
1: बिल्कुल,
2: और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, गंदगी होती है।
1: बिल्कुल, तंबाकू के उपयोग से ना ही केवल, जैसे कि हम सोचते हैं कि केवल मुंह के कैंसर या फिर अन्य कैंसरस बीमारियां ही नहीं, केवल साथ ही साथ लंग्स की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, हृदय रोग हो जाते हैं और स्ट्रोक्स जैसी गंभीर समस्याओं से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो ये तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें और ना ही किसी भी अन्य तरीकों से तंबाकू का उपयोग करने के लिए अपने को बचा कर रखना ही हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जी सर, बिल्कुल जिम्मेदारी।
1: और बताइए, प्रोग्राम्स आप सुन रहे हैं इन दिनों हमारे?
2: जी सर बिल्कुल सुन रहे हैं सर जी। और भी जानकर बहुत हर्ष हुआ कि ये कार्यक्रम दोबारा चालू किया गया है, किन्हीं कारणों से अभी तक बंद था
1: जी।
2: लेकिन अब बहुत खुशी हुई कि ये कार्यक्रम दोबारा चालू हो सका।
1: कई नए कार्यक्रम भी शुरू हुए हैं रेनबो पर, आपने देखा होगा कि कितने अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम आप सभी की पसंद के अनुसार ही लेकर आ रहे हैं।
2: जी सर, मैं काफी पुराना श्रोता हूँ।
1: हम बिल्कुल जानते हैं कि आप काफी पुराने हमारे श्रोता हैं। अच्छा ये बताइए, रेनबो सुनते हैं आप, FM रेनबो?
2: जी सर।
1: तो कार्यक्रम कैसे लगते हैं?

0: आपको हमारे
1: अच्छे लगते हैं।
0: कुछ?
1: अभी कल सर जी हमने हमनवा प्रोग्राम सुना था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: जी चलिए, और बताइए, कामकाज आपका अच्छा चल रहा है? आप रेडियो से जुड़े हुए हमारे काफी पुराने श्रोता हैं, आज हेलो कानपुर प्रोग्राम में आपने हमें फोन किया है। क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: अनाड़ी का फिल्म का सुना दीजिएगा,
0: कौन सा गाना?
1: कोई भी जी सुना दीजिए।
0: तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना और एंजॉय कीजिए।
1: ओके सर।
2: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी,

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हेलो, नाम बताएं अपना।
1: सर जी, मेरा नाम हरिशन गौतम है, कल्याणपुर कानपुर से बोल रहा हूँ।
0: हरिशन जी, स्वागत है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। कैसे हैं आप?
1: सर जी, आप क्या सौरभ जी बोल रहे हैं?
0: जी बिल्कुल सही पहचाना आपने।
1: मैं आपका काफी पुराना श्रोता हूँ, कल्याणपुर में मेरी शॉप थी पहले।

0: जी
1: रेडियो टीवी ट्रांसफर कूलर पंखे की
0: जी
1: आपसे हमारी आगे भी बात हो चुकी है।
0: बिल्कुल याद है हमें, तो रिपेयर भी करते हैं कि नए बेचते?
1: जी नहीं, केवल रिपेयरिंग करता हूं।
0: रिपेयरिंग का काम है तो काम कैसा चल रहा है इन दिनों? तो रेडियो सेट्स कम होते जा रहे हैं, मोबाइल
1: आपका कहना सही है सर जी, लेकिन रेडियो सेट अभी हमारे पास पुराने लोग जड़ीले लोग हैं, क्योंकि मैं जड़ीला हूँ, 74 साल की एज है
0: जी,
1: और पुराना सामान मेरे पास है तो मैं रिपेयर कर देता हूँ लोगों का।
0: तो लोग आप तक आते हैं अपने रेडियो सेट्स लेकर?
1: आपके इस भारती के द्वारा कानपुर के ये जो हम लोग सुनते हैं लोग कानपुर
0: जी,
1: हमारे उन्नाव तक के श्रोता मेरे पास आते हैं। एक दिन एक सज्जन आए लेके बोले भैया कहीं बना नहीं, आपका नाम सुना था कानपुर पे
0: जी,
1: तो आया हूँ, तो वाइफ हस्बैंड दोनों आए।

0: पुराना सामान मेरे पास है, मैं रिपेयर कर देता हूँ लोगों का।
1: तो लोग आप तक आते हैं अपने रेडियो सेट्स लेकर?
0: आपके इस भारती के द्वारा कानपुर के ये जो हम लोग सुनते हैं लोग कानपुर
1: जी,
0: हमारे उन्नाव तक के श्रोता मेरे पास आते हैं। एक दिन एक सज्जन आए लेके बोले भैया कहीं बना नहीं, आपका नाम सुना था कानपुर पे
1: जी,
0: तो आया हूँ। तो वाइफ हस्बैंड दोनों आए।
1: तो इतने आप पुराने श्रोता हैं हमारे, इतने वर्षों से आप जुड़े रहे हैं आकाशवाणी के साथ, 90 वर्ष का ये जो आकाशवाणी का सफर रहा है
0: जी सर,
1: इसमें इतने बदलाव आपने भी सुने होंगे देखे होंगे, तो ये बदलाव ये कार्यक्रम कैसे लगे आपको?
0: सर जी प्रोग्राम के बदलाव तो सुझाव भी मिलते हैं अच्छे अच्छे उसपे, और बदलाव भी अच्छे लगते हैं क्योंकि नई नई चीजें आप लोग हमें बताते हैं
1: जी,
0: कुछ हमको सीख भी मिलती है
1: जी बिल्कुल,
0: और कुछ हाँ कुछ कुछ नहीं बहुत काफी सीख मिलती है आपके प्रोग्राम।
1: तो चलिए आप इतनी उम्र में भी काम में लगे हुए हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, और ना ही केवल रेडियो सेट्स और टेलीविजन रिपेयर कर रहे हैं, पूरी सहभागिता भी है इन कार्यक्रमों को सुनने में आपकी।
0: जी सर जी, एक FM मेरा 24 आवर्स क्या समझिए 11 बजे रात तक चलता ही रहता है, स्लो आवाज में काम करता रहता हूँ
1: जी। तो चलिए बात करके आपसे काफी अच्छा लगा, पुरानी यादें भी ताजा हो गई, और आज हेलो कानपुर प्रोग्राम में आपने हमें फोन किया है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जो आपकी मर्जी वो बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराने गाने का शौकीन हूँ।
1: तो हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा।
0: अच्छा जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।

तो ये था आज का हेलो कानपुर प्रोग्राम, और अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में तो हर बुधवार और गुरुवार को इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है सुबह 10 से 11 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2541818, कानपुर का स्टडी कोड है 0512। आज के इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग दिया अन्नपूर्णा और प्रवीण जी ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे अजय प्रताप कटियार। अब दीजिए अपने दोस्त सौरभ को इजाजत इसी वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: 102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक तरफ जहां पौराणिक मनोरमा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं कुछ युवाओं ने इसे बचाने का बीड़ा उठाया। प्लास्टिक, जलकुंभी और गंदगी से पट चुकी इस नदी को साफ करने के लिए छात्र आकाश गुप्ता और उनकी टीम पिछले दो महीनों से लगातार मेहनत कर रही है। युवाओं की इस मुहिम ने अब पूरे इलाके में पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल कायम कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बच्चों का जिक्र किया और उनको पत्र भेजा है। आगरा में लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर जगह जगह लोक माता अहिल्याबाई को याद कर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने ताजगंज क्षेत्र के पुराना मंडी चौराहा स्थित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जो जाति वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज मध्य निषेध विभाग द्वारा लखनऊ में तंबाकू और गुटखा जनित नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं दुष्परिणामों के प्रति जन जागरूकता के लिए एक रैली व पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस तंबाकू निषेध रैली व पदयात्रा को राज्य मध्य निषेध अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा दो पालियों में संपन्न हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 6 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार होंगे सुशील चंद्र तिवारी।
1: विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे, जैसे मैंने कहा COVID-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हमेशा भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑयल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फ्यूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेकर जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें AI का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि AI से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट है इंडिया का, और करीब

0: 10% के आसपास का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के, आपने एआई की बात की, पढ़ाई को लेकर के, ये क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आपकी, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं, काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं, कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है, और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
0: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है, खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जोड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है, और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमई को लेके कि कोलैटरल लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार की भी हैं, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
1: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और

0: सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: शाम के 5:13 और ठीक 15 सेकेंड्स। ये वो वक्त है जबकि हम आपके लिए लेकर आते हैं FM टॉप 10। लेकिन आज का टॉप 10 है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज मैं आप तक उस आवाज के गाने पहुंचाने वाली हूं जो सिर्फ कानों से सुनी नहीं गई बल्कि सीधे दिल में उतर गई। जी हाँ दोस्तों, कुछ गायक ऐसे होते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आज है 31 मई साल 2022 में आज ही के दिन संगीत की दुनिया का वो पाकीज़ा सच्चा सितारा हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया था, जिसे बड़ी मोहब्बत से हमने नाम दिया था KK। हालांकि असली नाम था उनका कृष्ण कुमार कुन्नाथ, लेकिन KK के आगे हमने कभी जानने की, सोचने की या उन्हें पुकारने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये वो नाम था जो हमारे दिल से उनके दिल तक पहुंचता था। आज की ये खास शाम, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उसी आवाज को जिसने हमारी हर भावना को एक नया सुर दिया। यस फ्रेंड्स, आप तक पहुंचाने वाली हूं आज FM टॉप 10 में सिंगर KK के टॉप 10 सॉन्ग्स। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उनके उस आइकॉनिक एल्बम के टाइटल ट्रैक से जो हमारी यादों का परमानेंट हिस्सा बन गया। इस गाने को कंपोज करने वाले लेस्ली लुइस ने उस दौर के रीमिक्स कल्चर के बीच पहली बार एक लाइव बैंड के साथ इसे रिकॉर्ड किया था, जो कि बड़ा रेयर हो गया था उस जमाने में। तो चलिए मैं, आप, हम सब मिलकर याद करते हैं KK को। मेरा नाम ज्योति और आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 में आज गायक KK के टॉप 10 सॉन्ग्स।

कभी सोचा भी नहीं था कि जब केके ने कहा छोटी सी है जिंदगी तो वो अपनी ही बात कर रहे थे। हाँ केके, बहुत याद आते हैं आप। दोस्तों, बॉलीवुड में कदम रखने से पहले केके ने लगभग 3500 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग जिंगल्स गाए थे। कोल्ड ड्रिंक से लेकर टूथपेस्ट के विज्ञापनों तक हर घर में उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये आवाज है किसकी, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई काम तो काम होता है, सुना जाना एक गायक के लिए बहुत जरूरी होता है। और वो कुछ यूं सुने गए कि आज भी हम उन्हें लगातार सुनते ही जा रहे हैं। साल 1999 की बात थी। एक जानी मानी म्यूजिक कंपनी को जरूरत थी एक फ्रेश आवाज की, और ऐसे में उन्होंने चुना केके को, और रिलीज हुआ एल्बम पल। इसी एल्बम का एक और गाना आज भी हर स्कूल और कॉलेज फेयरवेल की जान है। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप का एंथम। केके के बेटे नकुल कृष्ण ने इसी गाने से इंस्पायर होकर बाद में केके के दूसरे एल्बम हम सफर के एक गाने मस्ती में अपने पिताजी के साथ रैप भी किया था। ये वो तराना है जिसने दोस्ती को तो अमर किया ही, रातों रात केके को भी बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया। और इसके बाद उन्हें वापस

अगर मैं आपसे कहूँ कि केके ने कभी भी कोई भी फॉर्मल क्लासिकल या फिर प्रोफेशनल वोकल ट्रेनिंग नहीं ली थी तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं जानती हूँ आपके लिए भी यकीन करना उतना ही मुश्किल होगा जितना मुझे आज भी इस पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट लगता है। कहते ना कि कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, उन्होंने संगीत सीखा था उन आर्टिस्ट को सुनकर जिन्हें वो एडमायर करते थे, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और स्टिंग, बिली जोएल जैसे, मतलब इंडिया के बाहर के आर्टिस्ट सबको सुन करके उन्होंने संगीत खुद से सीखा था। तभी तो ये बोला जाता था कि संगीत सिर्फ उनके गले में नहीं था, संगीत था उनके दिल में भी। ऐसे में जब उन्हें ऑफर हुआ तड़प तड़प के गाना फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम, तो उन्होंने एक झटके में कह दिया कि भाई

ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इस्माइल दरबार से उन्होंने फ्लैटली कहा कि ये गाना बहुत हैवी है, ये मेरे स्टाइल का है ही नहीं, और इसमें आप किसी ऐसे सिंगर को लीजिए जो कि क्लासिकली ट्रेंड हो, मेरे से ये गाना होने ही वाला नहीं है। लेकिन इस्माइल दरबार, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये गाना तो तुम ही गाओगे। रिकॉर्डिंग के दिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। केके को लगा कि अब तो गाना रिकॉर्ड ही नहीं होगा। पूरी टीम रात भर स्टूडियोज में फंसी रही। सुबह के करीब 4 बजे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हर तरफ सन्नाटा था, दुनिया सो रही थी। ऐसे में इस्माइल दरबार जो कि म्यूजिक कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे इस फिल्म के, इन्होंने जगाया केके को और कहा अब गाओ। और मुंबई की उस खामोश सुबह में बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के केके ने जो सुर लगाए कि स्टूडियो में मौजूद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आंखों में तो आंसू आए ही। आप सुन करके देखे, शायद आपकी भी आंखें थोड़ी सी नम हो जाए। बेजान दिल, एक अजीब सा दर्द। लगता ही नहीं ये गाना गाया गया है, लगता है इसे महसूस किया गया है। शायद तभी तो ये कानों तक नहीं ठहरता, सीधे दिल में उतरता है। 5:29 और ठीक 10 सेकंड्स आप हैं ज्योति के साथ और सुन रहे हैं आज FM टॉप 10 में KKK टॉप 10 सॉन्ग्स, क्योंकि आज ही का दिन वो दिन है जब हमने उन्हें खो दिया था।

ये गाना केके का पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक था, जिसने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिलाया। इस गाने को आप सुनते हैं तो आपको लगता है कितना दर्द है, लेकिन अगर आप इनके बाकी के गाने सुनते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड, ये केके नहीं गाए हैं। इसी को तो कहते हैं वर्सटैलिटी। वो जितने बेहतरीन दर्द के नगमे गाते थे, उतने ही कमाल के रोमांटिक और यूथफुल सॉन्ग्स भी। 2001 में एक मूवी आई थी रहना है तेरे दिल में, याद है ना, RHTDM। इस फिल्म के गानों ने इस दौर के हर आशिक के दिल को छुआ। हैरिस जयराज के संगीत में केके की आवाज ने जो जादू बिखेरा वो आज भी उतना ही ताजा है। तो चलिए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल लव सॉन्ग केके की आवाज में। 5:34 आप सुन रहे हैं आज FM टॉप 10 में केके स्पेशल, क्योंकि आज ही का दिन वो दिन है जब हमसे केके को छीन लिया गया था सन 2022 में। तो चलिए मिलकर याद करें उन्हें सुनते हुए उनके टॉप 10 नंबर। स्टे ट्यून्ड विद ज्योति।

के मूल रूप से केरल त्रिशूर के रहने वाले मलयाली परिवार से थे, लेकिन दिल्ली में पले बड़े होने की वजह से उनका हिंदी डिक्शन इतना क्लियर था कि कोई भांप ही नहीं सकता था कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो गैर हिंदी भाषी है। आमतौर पर हम सब ने केके को उनकी हाई पिच ऊंचे सुरों के लिए सराहा है, लेकिन ये गाना जो अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ, इसे सुनकर आप कहेंगे भाई वाह, लोअर रजिस्टर यानी धीमी और गहरी आवाज में भी वो उतने ही बड़े उस्ताद थे। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गुलजार साहब के शब्दों और अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ ये गाना फिल्म अक्स से। तो चलिए सुनते हैं केके का ये चुलबुला और बिंदास अंदाज 2001 की फिल्म अक्स से।

क्या बात है भाई, क्या बात है। इस गाने में रॉक और गोल म्यूजिक का जो फ्यूजन था, और जब केके ने एलिटरेशन को अपने परफेक्ट तरीके से निभाया तो गाना हो गया जबरदस्त। और आज भी अगर आप मेरी बात करें तो इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। दोस्तों 2006 के बाद इंडियन सिनेमा में एक नया सा दौर आ गया। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और

एके की जोड़ी ने बैक टू बैक चार्टबस्टर्स की जड़ी लगा दी। फिल्म गैंगस्टर का वो वाला गाना याद है आपको, इतनी मेरी शब है। तो चलिए प्रीतम और केके की इस अमर जुगलबंदी के जादू में डूब जाते हैं। इस गाने के बाद ही केके बन गए थे इमरान हाशमी की ऑफिशियल आवाज, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन दर्शकों को बहुत पसंद आता था।

भाई इमरान हाशमी ही क्यों? 2007 में जब शाहरुख खान स्क्रीन पर बाहें फैलाकर खड़े हुए और बैकग्राउंड में आवाज गूंजी के की, तो उसने रोमांस का एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिख दिया। यस, मैं बात कर रही हूँ ओम शांति ओम के सॉन्ग आंखों में तेरी, अजब सी अदाएं हैं सॉन्ग की। विशाल शेखर का संगीत, के की मखमली आवाज। वैसे आपको बता दूं कि इस गाने को फिल्म में काफी बाद में जोड़ा गया था। जब शाहरुख ने केके की आवाज में इसका रफ ट्रैक सुना तो उन्होंने फराह खान से कहा कि भाई इस गाने के लिए तो स्पेशल सीक्वेंस बनता है। हैरानी की बात है कि जिस गायक ने एक पूरी पीढ़ी को प्यार करना सिखाया वो हमेशा अवार्ड्स की दौड़ से दूर रहे। वो मुस्कुराकर कहते थे कि मुझे शायद इसलिए अवार्ड्स नहीं मिले क्योंकि मैंने उनकी चाहत ही नहीं की थी, और मेरे लिए दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा।

तो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी अवार्ड्स और केके की। अब आप तक पहुंच रहा है वो गाना जिसके लिए उन्हें भी अवार्ड मिला। यस, स्क्रीन अवार्ड मिला उन्हें 2008 में बचना ए हसीनों के इस सॉन्ग के लिए। इस गाने में केके ने बिना किसी वोकल स्ट्रेन के इतनी आसानी से ऊंचे सुर छुए थे कि आज भी लोग कहते हैं कि बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऐसा गाना चमत्कार से कम नहीं।

5:52 और ठीक 29 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ 100.7 FM रेनबो पर, और इस वक्त आप तक ज्योति पहुंचा रही है के टॉप 10

सॉन्ग्स इन द प्रोग्राम एफएम टॉप 10, क्योंकि आज ही का दिन वो दिन है जब के हम सबसे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। अभी आप तक आ रहा है 2008 में आई फिल्म जन्नत का सॉन्ग, प्रीतम का संगीत, सई कादरी के गीत और के की आवाज। वैसे इस गाने की मुखड़े और अंतरे के बीच जो वोकल कूज आप सुन रहे हैं ना, इन्हें के ने जोड़ा था ऑन द स्पॉट।

बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए 10 टॉप सॉन्ग चुनना के। और मेरी कोशिश कैसी रही ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन हाँ चलते चलते बस आपको थोड़ी सी बातें और जरूर बताऊंगी। केके ने अपने 25 साल के करियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में ढेरों हिट दिए, लेकिन अपनी जो उनकी गृह राज्य था केरल, उसकी भाषा मलयालम में वो सिर्फ एक ही गीत गा पाए। 31 मई का दिन था, यानी आज ही का दिन, 2022, कोलकाता का नजरुल मंच। केके स्टेज पर थे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, पूरे दिल से गाते हुए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम रहे ना रहे कल याद आएंगे ये पल, गाते हुए वो सचमुच सिर्फ हमारी यादों में ही रह जाएंगे। आज आपकी पुण्यतिथि है केके, लेकिन हम पूरी जिद से आपसे कह रहे हैं कि हम आपको अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपको जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके गानों के जरिए, और ये दोस्ती हम हमेशा निभाते रहेंगे, कभी अलविदा कह नहीं पाएंगे।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर, हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार शासन ने जनहित में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया है। राजीव कृष्ण वर्तमान में निदेशक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के पद पर कार्यरत होने के साथ साथ कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे। इस नियुक्ति के बाद पुलिस महकमे और शासन स्तर पर कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉ हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉ रमेश मिश्रा, सोनभद्र, डॉ रंजन गौतम बाराबंकी और डॉ अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का सीएमओ बनाया गया है। इसी प्रकार डॉ पंकज कुमार मऊ, डॉ मुकेश कुमार को वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर जीपी गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक बनाया गया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 7 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा, हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: Tumhare shehar ka mausam, tumhare shehar ka mausam bada suhana lage. Main ek sham chura lu, agar bura na lage. 6:05 और ठीक 30 सेकेंड्स, आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम शामे अवध। बातें आपके शहर की, खबरें आपके काम की और म्यूजिक जो आपके मन को भाए।

में मैं तो ऑलरेडी आ चुकी हूँ। मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त ज्योति आपके अपने फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है 100.7 FM रेनबो और ये वक्त है शामी अवध का। तो शामी अवध का मतलब आपको अपडेट करने का टाइम। अब सभी जानते हैं कि आज है 31 मई यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बार बार कहा जाता है कि हर कश के साथ ये जो धुआं उठता है ना, ये आपकी सिगरेट का नहीं होता बल्कि जिंदगी के बेशकीमती पलों का होता है। तो खुद से मोहब्बत करिए, अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखिए और खुद से वादा करिए एक स्वस्थ और स्मोक फ्री लाइफ को जीने का। ये थोड़ी ना कहा जाता है कि जिंदगी को हाँ कहना है हमें, आपको, हम सबको, और ना कहना है टोबैको को। और जब धुआं छटेगा तभी तो वो प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर खिलेगी, जिसके लिए आज ही के दिन हम वर्ल्ड स्माइल डे भी मनाते हैं। ये दो दो दिन आज यानी 31 मई को ऑब्जर्व किए जाते हैं। आज का ये खूबसूरत दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का ना सिर्फ दिन बल्कि उसकी जिंदगी भी कभी कभी बदल सकती है। मुस्कुराहट वो इकलौती चीज है जो मुफ्त में मिलती है लेकिन इसकी कीमत अनमोल है। तो देर किस बात की, अपनी इस खूबसूरत स्माइल को जरा चेहरे पर सजाइए, गमों को चाचा बाई बाई कहिए और दुनिया में खुशियाँ फैलाइए। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वो प्रोग्राम जिसे ज्योति सजा कर लाई है आज खास तौर पर आपके लिए। यस, मैं बात कर रही हूँ शामे अवध की।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: संडे की इवनिंग है, मौसम ने भी आपका साथ दे ही दिया है, तो ऐसे में बस यही कहूंगी कि टेंशन्स को करिए दूर और करिए मस्ती भरपूर, कहते हुए जस्ट चिल।

6:22 और ठीक 26 सेकेंड्स. आप है ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम शामी अवध. बातें आपके शहर की, खबरें आपके काम की और म्यूजिक बस वही जो आपके मन को भाए.

और भाई अब आपको थोड़ी काम की बातें भी बता दी जाए, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT लखनऊ ने MBA डिजिटल बिजनेस 2026 कोर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू की डेट रिलीज कर दी है। इंटरव्यू होने वाला है 5 जून को सुबह 10 बजे से। तो एप्लीकेंट्स को करना क्या होगा, एप्लीकेंट्स को 3 जून तक गूगल फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का यानी एप्लीकेंट्स का CUET 2026 में जो मिनिमम स्कोर जरूरी है उतना होना प्रीरिक्विजिट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो फिर आप वेबसाइट पर, जो संस्थान की वेबसाइट है IIITL.ac.in, इस पर आप जाकर के देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, IIITL.ac.in। तो भाई अगर IIIT से MBA करना है तो सोच क्या रहे हैं, मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। 6:27:42 आपके साथ है ज्योति इन द प्रोग्राम शाम अवध, और ज्योति की किटी में, पिटारे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

ऐसे विदेशों की तर्ज पर हमारी यहाँ भी चलने वाली है पॉड टैक्सियाँ। अब आप पूछेंगे कि पॉड टैक्सी क्या होता है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार होती है जो कि ड्राइवर लेस होती है, मतलब बिना ड्राइवर की चलती है। ट्रेडिशनल बसेस या मेट्रो की तरह भारी भरकम नहीं होती, बहुत सारी जगह नहीं घेरती, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स के सफर के लिए डिजाइन की जाती है। इसमें बस एक छोटा सा कोच होता है। अब अगला सवाल आपका ये होने वाला है कि भाई ज्योति फिर तो बड़ी महंगी होती होगी। ना ना ना ना, अभी जो अनुमान किया जा रहा है उस हिसाब से 8 रुपए पर किलोमीटर इसका किराया होने वाला है। शुरुआत में इन्हें चलाने की तैयारी हो रही है नोएडा एंड मुंबई में, और नोएडा में कहा जा रहा है कि 2028 के मिड तक ये शुरू हो जाएगी। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेक्टर 21 में बन रही फिल्म सिटी और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए पॉड टैक्सी शुरू की जाने वाली है। एक बार ये सफल हो गई, सक्सेसफुल हो गई, फिर तो बस कहने क्या, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे बाकी के शहरों में भी इसको पहुंचाया जाएगा। तो है ना पार्टी करने वाली बात। भाई मुझे तो लगता है कि अगर ट्रैफिक से आपको थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी राहत अगर मिल सकती है तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड न्यूज। Let's party.

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

में से अब वो खुल कर आने वाले हैं जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। यस, मैं बात कर रही हूँ दशहरी आम की। 1 जून से सजने वाली है दशहरी आम की मंडी। यस फ्रेंड्स, मलिहाबाद आम मंडी में आम निर्यात की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई है। हालांकि इस बार मौसम की मार की वजह से फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष की तुलना में आम के निर्यात में 20% की कमी आने की आशंका है। लेकिन उसके बाद भी बागवानों का ये सोचना है कि स्थानीय मंडी में कम खर्चे पर आम की बेहतर और अच्छी कीमत मिलने वाली है। तो भाई, मंडी शुरू होने वाली है, 1 जून से सजने वाली है दशहरी आम की मंडी। तो आप क्या सोच रहे हैं? है ना अच्छी खबर? वैसे एक और अच्छी खबर इंतजार कर रही है आपका आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

और अब एक ऐसी खबर जो आपको जानना जरूरी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने LLB एंड BTech कोर्सेज में पहली बार NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कोटे के तहत एडमिशन्स देने के लिए हामी भर दी है। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। तो अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो कि इस कोटे के तहत एडमिशन लेना चाहता है LLB में या फिर BTech में, तो इस लिंक पर, जिस लिंक को मैं अभी बता रही हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकता है। https://lurn.lkouniv.ac.in। तो जल्द से जल्द आप आवेदन करें और ये ध्यान रखें कि तकरीबन 38 सीटें BTech में और LLB में 30 seats are vacant.

6:55 मिनट हो गए हैं और घड़ी मुझसे बार बार कह रही है कि भाई अब शामे अवध को यहीं पर विराम दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो कि बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 7 बजने का। और क्यों ना करें, 7 to 8 सिर्फ उनका टाइम जो होता है। यस गाइस, अब से बस थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलने वाली हूँ लेकर हेलो FM, मतलब आपकी बातें, आपकी पसंद के गाने, इन अदर वर्ड्स बस आप ही आप इन द प्रोग्राम हेलो FM। तो फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से तो मुझे टाटा बाय बाय कहना होगा, लेकिन थोड़ी देर में बस हेलो FM में कहूंगी फिर से हाय हाय।

नमस्कार, अब सुनिए टॉप 10 समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाव और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी डीजीपी बना दिया गया है। श्री कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। आगरा में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने ताजगंज क्षेत्र के पुराना मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज मद्य निषेध विभाग द्वारा लखनऊ में जन जागरूकता रैली व पदयात्रा का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 7:20 पर। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
2: लोन ऑफर फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: सात बजकर पांच मिनट, ये लीजिए 7:06 हो गए। और मैं जानती हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि धड़कन लखनऊ की, तो आपका भी दिल थक थक थक थक थक थक ऐसे होता है, स्पेशली इस पूरे घंटे 7 से 8 बजे के बीच। क्योंकि जितना इंतजार हम करते हैं आपसे मिलने का, उतना ही इंतजार आप भी करते हैं ऑन एयर आने का। वेलकम फ्रेंड्स, ये पूरा घंटा है बस आपके नाम। 7 to 8 हेलो FM प्रोग्राम में होंगी आपसे बातें और साथ ही साथ सुनाए जाएंगे बस आपकी ही पसंद के सॉन्ग्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस सी कि इस वक्त पहले कॉलर कौन है हमारे। हेलो।
8: हाँ बहन जी, श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव
7: जी। तिवारी जी नमस्कार। सो पहले कॉलर है, कैसा फील हो रहा है आपको?
8: हाँ बहन जी, हम हमेशा करते हैं मगर नहीं पाता, आज मिला है।
7: क्या बात है, तो मेरी खुशकिस्मती कि आज के दिन आपका फोन मिल गया और आपसे बातचीत हो गई। तिवारी जी क्या करते हैं आप?
8: हम बहन जी खेती बाड़ी का काम करते हैं।
7: तो खेती बाड़ी के लिए ये वाला जो मौसम है जो आज हो गया, ये अच्छा है या फिर बुरा?
8: अच्छा है बहन जी।
7: अच्छा, मतलब बारिश होनी जरूरी थी?
8: हाँ बारिश जरूरी थी।
7: क्या बात है,
8: पत्थर ना गिरे भाई।
7: नहीं तो ओले पत्थर नहीं गिरेंगे, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हम ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि फसल बड़ी अच्छी होनी चाहिए भाई, है ना?
8: बहन जी डेडिकेट करना चाहते हैं।
7: प्लीज करिए डेडिकेट, लेकिन गाना भी तो बता दीजिए, कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं?
8: हाँ, बुद्धा मिल गया का है, रात कली ख्वाब में आई और गले का हार बनी।
7: क्या बात है, तो डेडिकेशन किसको है?
8: आपको सबसे पहले, आपकी टीम को, बाबू अंसारी भाई हैं, परवीन अंसारी हैं, नवनीत भाई हैं, संदीप हैं, ओंकार हैं और रिंकी पिंकी और संतोष।
7: तो ये सारे तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं, तो क्या इनसे आपकी बातचीत होती रहती है?
8: हाँ बहन जी, हमेशा हमारे नाम करती हैं तिवारी। और बाबू अंसारी भाई श्री प्रकाश तिवारी कहते हैं।
7: कितनी अच्छी बात है, आज के वक्त में जब लोग अपनों के नहीं होते तो ऐसे में रेडियो पर नाम सुन करके आपने
8: एक दूसरे से बहन जी जुड़े हैं।
7: एग्जैक्टली, ये कितनी अच्छी बात है। और आज के टाइम मुझे लगता है ना कि आपके जैसे लोग ही दुनिया को इतना खूबसूरत बनाए हुए हैं, क्योंकि वाकई जब आप अपनों से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, ऐसे में आप सब एक दूसरे को देखे बिना, मिले बिना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और
8: क्या नहीं, पर मिलता नहीं है तो ये कहते हैं कि मतलब मिल जाए जल्दी से तो सबको हम वो कर दें।
7: तो जी मिल गया।

गया और अब गाना भी चल गया चल गया चल गया, चला रहे आपका गाना। ओके जी, वेलकम है जी, और थैंक यू टू यू कि आपने अपना कीमती वक्त

0: 7:10:55 और हमारे साथ इस वक्त है आज की दूसरी कॉलर। हेलो,
1: हेलो भारत,
0: नमस्ते, कौन बोल रही है?
1: जी मैम, रोहिणी बोल रही हूँ, रामपुरा
0: से। रोहिणी, आपका नाम बहुत सुना सा नहीं लग रहा है, इसका मतलब बहुत रेगुलरली आप कॉल नहीं करती है ना?
1: नहीं मैम, पहली बार कॉल लगी है हमारी।
0: क्या बात है, तो कॉल किया ही नहीं पहले की लगी नहीं?
1: जी मैम, एक महीने से कॉल कर रहे थे, पहली बार लगी है।
0: तो आज मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम कॉलर्स हैं उनका, या फिर कहना चाहिए कि मेरा अच्छा दिन है।
1: बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने
0: जी शुक्रिया। तो एक्चुअली मुझे आपको करना चाहिए, आपका वक्त इतना कीमती है और आप अपना वक्त हमें देते हैं, हमें कॉल लगाते हैं, हमसे अपनी बातें करते हैं, शेयर करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं ना। तो रोहिणी क्या करती है आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: कौन सी क्लास में है?
1: 10th में 11th में आ गए हैं।
0: अच्छा, कभी कभी ये नहीं लगता कि क्या पढ़ाई करनी पड़ रही है, मतलब सुबह शाम सुनते रहो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी लगा ऐसा?
1: पढ़ाई भी करते,
0: तो पढ़ाई करना पसंद है, कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि अरे छोड़ो कहाँ पढ़ाई, सुबह शाम दोपहर रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी नहीं लगा? रोहिणी जी, रोहिणी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल किया और इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की। अपना गाना किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी क्या?
1: मैम मेरी बहन है मोहिनी,
0: तो आपकी बहन को और आपके सारे दोस्तों को और आपको डेडिकेटेड ये ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म बाजीगर से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय।

अगर आप भी इनकी तरह इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो सोच के रहे, हमारा फोन नंबर जल्दी से नोट करिए, 223-8852 एंड 223-8845। ये दोनों हमारे स्टूडियोज के नंबर्स हैं। एंड यस, क्योंकि ये लैंडलाइन है तो आपको, अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं, तो इन नंबर्स के पहले

0522 जरूर ऐड करना होगा। 7:13 और 55 सेकंड हो गए हैं। मैं हूँ ज्योति और आप मुझसे बातें कर रहे हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम में हेलो एफएम में, ओनली ऑन एफएम रेनबो।

अब से थोड़ी देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे वो प्रोग्राम जो आपके दिल के बहुत करीब है, यानी हेलो एफएम।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आश के जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो।
4: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
5: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
4: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
5: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
4: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
5: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
4: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक

0: बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
0: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का सीएमओ बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर जीपी गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
4: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा दो पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्ते दीदी।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम।
2: कौन बोल रहे हैं?
1: नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, फुलवारी बाजार, मेरा 12वीं से बात कर रहे हैं।
2: एक मेरा कहना मानेंगे दोस्त?
1: जी बताइए।
2: प्लीज जरा रेडियो सेट से दूर थोड़ा सा।
1: हाँ ठीक है।
2: हाँ
1: बताइए दीदी।
2: आपकी आवाज में इतनी खुशी झलक रही है और फिर मुझे ये बड़ा खराब सा लगता है कि इतना खुश होकर के आप फोन करते, इतने एफर्ट्स डालते और फिर आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़े, तब तो बड़ी तकलीफ की बात है ना?
1: जी दीदी।
2: आपके यहाँ कैसा मौसम है?
1: जी दीदी, हमारे गांव का मौसम तो बड़ा ही खुशनुमा है और आज आंधी थोड़ी आई थी हल्की, उसके बाद मौसम फिर उसी तरह हो गया, घाम निकलने लगा और मौसम लेकिन काफी खुशनुमा था आज।
2: तो जब अच्छा सा मौसम होता है तो फिर क्या करते हैं, पकौड़े शकोड़े खाते हैं या फिर घूमने निकल जाते हैं?
1: जैसे मौसम होता है तो मान के चलो जैसे पकौड़ी है, चाय है, तो ये चल जाता है। जी जी जी जी।
2: आपके आसपास बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है, कहाँ हैं आप?

0: दीदी हम अपनी शॉप पे बैठे हैं।
1: और शॉप
0: पास है ना,
1: तो शॉप पर अपने आप कस्टमर्स को छोड़ करके फोन पर बात कर रहे हैं।
0: जी जी,
1: इसीलिए शायद आपने रेडियो बंद नहीं किया हुआ है अभी भी, ताकि सब लोग सुने कि आज तो आप हो गए सुपरस्टार। मुबारक हो।
0: नहीं,
1: बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब जल्दी से बता दीजिए कि गाना कौन सा सुनना है।
0: ये गाना तो सुनना चाहेंगे।
1: कौन सा?
0: मुझे कुछ नहीं भाता जब प्रेम रोग लग जाता।
1: ये कौन सी फिल्म का है?
0: ये फिल्म का नाम तो दीदी नहीं पसंद है, लेकिन गाने के बोले कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं जब बाता जब प्यार लग जाता, ये वाला सॉन्ग है।
1: अच्छा जी, ठीक है, तो इसे आप किसे सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले मोहम्मद सद्दाम भाई और सईद भाई है। मेरे पिताजी का नाम है मुबारक अली।
1: ओके,
0: अमजद भाई मेरे छोटे भाई।
1: तो पिताजी को आप प्रेम रोग वाला गाना सुनाना चाहते हैं?
0: जी मैं नहीं दिखे, मैं नाम ले लिया।
1: अच्छा किया नाम ले लिया।
0: जी जी,
1: पिताजी से भी बहुत खुलकर बात करनी चाहिए, वैसे भी माहौल बहुत बदल गया है। अच्छा, पिताजी से डर लगता है कभी आपको?
0: जी जी, वो हमारे सामने ही बैठे हैं, जैसे आपकी बात सुन रहे हैं, वो बहुत।
1: अच्छा, क्या बात है। तो पिताजी से डर लगता है कि आपको बस एकदम स्मूथ टाइप का आपका रिलेशनशिप है?
0: जी डर तो लगता है, लेकिन वो नहीं मना करते, क्योंकि एफएम से मतलब मेरा जुड़ाव रहता है, तो वो जानते हैं, तो वो मना नहीं करते हैं, कहते हैं अपना जैसे।
1: एफएम के अलावा, एफएम के अलावा कभी डांट पड़ती है?
0: जी जी नहीं दीदी, अब तो नहीं, पहले जब छोटे थे तो डांट पड़ती थी।
1: तो जब डांट पड़ती थी तब यही लगता होगा ना कि बड़े हो जाएंगे तो डांटनी पड़ेगी, अब बड़े हो गए तो डांट पड़नी बंद हो गई?
0: जी जी,
1: पक्का एकदम बंद हो गई?
0: जी जी, बाकी जैसे मतलब जैसे कभी कदर कोई बात हो जाए तो मतलब बच देते हैं, बाकी ज्यादा नहीं बचते हैं।
1: वही तो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है बच्चों की, ये सोचना कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें डांट पड़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि माता पिता का पूरा हक है हमको डांटना, हमें समझाना, ये सही है ये गलत है ना?
0: सही बात है दीदी।
1: तो इसी बात पर आपकी पसंद का गाना, आपने फिल्म का नाम नहीं बताया लेकिन मैंने ढूंढ लिया दोस्त, प्रेम रोग। तो लीजिए भाई, एंजॉय करिए अपनी पसंद का गाना।

0: 7:42 आप है ज्योति के साथ और सुन रहे हैं वो वाला प्रोग्राम जो कि दरअसल आप ही का है। यस, आपका है, क्योंकि इसमें आप ही की आवाज तो दूर दूर तक गूंजती है। आपकी पसंद के सॉन्ग्स प्ले होते हैं एंड आपकी दिल की बात हम सब जानते हैं। सो लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं आलम साहब अहमद अमराई गांव से बोल रहा हूँ।
0: दोस्त, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आज के प्रोग्राम में, जितने भी कॉलर्स आए हैं उनका पहली या दूसरी बार ही फोन लगा है। आपका मतलब कितनी बार लग चुका है फोन? तकरीबन
1: मेरे ख्याल से करीब 3 महीने बाद फोन मिला होगा।
0: तब से बाद मिला है
1: जी,
0: तो बहुत अच्छी बात है। अपना नाम तो आपने बताया, मुझे बताइए करते क्या है।
1: मैं खेती किसानी से जुड़ा हूँ और मैं कृषि सेवा केंद्र चलाता हूँ।
0: तो कृषि सेवा केंद्र में क्या आप किसानों को गाइड करते हैं कि कैसे करके उन्हें?
1: हाँ, ये सही आपने पूछा
0: जी।
1: हम लोगों ने ये किसानों को डील करते हैं, फर्टिलाइजर डीलर हैं और इससे जो है सीएचएमपीसी साइड का काम करते हैं।
0: हाँ।
1: और जो भी खेत के लोग हैं उनको जो है खेती संबंधित रॉ मटेरियल जो होता देते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं।
0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सलाह दी कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे कर लो और जो आपके किसान भाई हैं उन्होंने कहा आप हमें मत बताइए, हमें बहुत पता है, ऐसा कभी हुआ है
1: जी?
0: ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि जिंदगी में जब आप किसी को सलाह देने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला उतने ही स्पॉटिंग वे में, इतने ही खुश होकर के आपकी सलाह को ले। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सलाह दी कि आप ऐसे ऐसे करके अपनी फसल की देखभाल करिए और दूसरे ने कहा ना हमें मत बताइए हमें क्या करना है, ऐसा हुआ है कभी?
1: नहीं, ये आप बहुत अच्छी, पहले तो मैं भी पैसे से किसानी करता हूँ और मैं अपने में बहुत अच्छी से सब्जी उगाता हूँ और अच्छा जब प्रदर्शन होता है तो लोग देख के तो ये लोगों में कहना होता है कि देखो इन्होंने अपने सीड बढ़िया लगा लिया।
0: ओके, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप पहले खुद करके दिखाते हैं उसके बाद में लोगों को कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कागजी या फिर हवाई बातें नहीं करते हैं, इसलिए आपकी बात का बहुत असर होता है। बड़ी अच्छी आपने बात कही दोस्त। और गाना जरा बता दीजिए कौन सा सुनाने वाले हैं हम सबको आप?
1: मैम रफी साहब का गीत है और फिल्म है अर्पण। और मैम एक आपसे गुजारिश करूंगा।
0: जी जी बिल्कुल, हुक्म करिए।
1: हाँ, प्रोग्राम हेड अगर जो सुन रहे हो हमारी बात तो जो आपके उच्च अधिकारी महोदय जी है उनसे कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम हेलो एफएम है इसमें कुछ दिनों का जैसे लोग रोज कॉल करते हैं इसमें ये एक लिमिट होनी चाहिए कि 15 दिन एक महीना का अंतराल का वनवास होना चाहिए।
0: ओके, प्रतिबंध लगा देना चाहिए
1: लोगों को मौका मिलना चाहिए।
0: आपकी बात से मैं टोटली इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई बैन या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो एक चीज और भी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? तो अगर हमारा फोन आज लग गया है या हमारा ईमेल आज पढ़ लिया गया है तो हम खुद भी हमारे दोस्तों को मौका दे सकते हैं।
1: पहले एफएम ये रेनबो डिजिटल नहीं था, अब ये पूरा ऑल इंडिया दुनिया में जाता है तो इसको लोग सब लोग पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं।
0: तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ वही वही लोग बार बार रिपीटेडली कॉल करते थे, ये कहने का मतलब है आपका, है ना? लेकिन देखिए आज का जो प्रोग्राम है वो एक एक्सेप्शन है। आपने भी बोला अरसे बाद फोन लगा, आपके पहले के भी कॉलर्स ने कहा जी हमारा पहली पहली बार फोन लगा है ना? तो हम एक काम करते हैं बजाय इसके कि हम कोई बैन लगाएं, क्यों ना हम सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करें, अपने आप से समझे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ना? हम कर सकते हैं
1: बिल्कुल, इसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे किसी दिन खेती किसानी के बारे में और भी जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है, घर में थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेती हूँ।
1: नहीं, अगर आप किचन गार्डन से संबंधित कोई भी पूछना चाहते हैं तो मैं आपके यहाँ प्रोग्राम में भी आ सकता हूँ और वहाँ से भी कर सकता हूँ या भी फोन आप बात कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बाय बाय। फिल्म अर्पण का ये सॉन्ग आप तक पहुंच रहा है और मुझे पसंद जरूर है लेकिन ये मेरी पसंद से आप तक नहीं आ रहा है क्योंकि इस प्रोग्राम में एक भी गाना मैं अपनी पसंद का बिल्कुल नहीं प्ले कर रही। तो अगर आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है, साथ ही साथ दूर दूर तक अपनी बात पहुंचानी है, तो सोच कह रहे जल्दी से हमें फोन मिलाइए, अभी भी हमारे पास अच्छा खासा वक्त बचा है। 7:47 और 16 सेकंड्स, मैं ज्योति आपके साथ आपकी कॉल्स का वेट करते हुए। चैनल का नाम है FM रेनबो, प्रोग्राम का नाम हेलो FM, एंड ये सबसे थोड़ी देर में अनवारुल है बिल्कुल तैयार लेकर ढेर सारे प्रोग्राम्स की बौछार। तो बाहर की बौछार के साथ साथ इनके म्यूजिक की बौछार में भी भीगने को हो जाइए बिल्कुल तैयार।

0: 1983 की फिल्म अर्पण का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया हुआ था अनवर का, आप तक पहुंचा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। बड़ा शोर है आपके आसपास?
1: जी
0: ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं ना?
1: जी बच्चे हैं।
0: तो ये कौन है आपके जो छोटू छोटू बच्चे हैं?
1: जी मेरे भांजे हैं, भांजी हैं।
0: तो सिस्टर आई हुई है छुट्टियों में घर, नानी, नानी हाउस है ना, नानी के घर। कैसा लगता है जब घर में बहनें आती हैं छुट्टी के टाइम पर और भांजे भांजियों से पूरा पूरा घर एकदम गुलजार हो जाता है, कैसा महसूस होता है?
1: जी दीदी बहुत अच्छा लगता है।
0: इनमें से कौन सा भांजा या भांजी आपको सबसे ज्यादा तंग करता है?
1: वो छोटा वाला।
0: क्या नाम है उसका?
1: उसका नाम हम्माद।
0: और वो क्या करता है जिससे कि आप तंग हो जाते हैं?
1: जी वो कहता मामू देर देर वो ले दो वो ले दो वो ले दो
0: कुछ ना कुछ मांगता ही रहता पूरे टाइम।
1: जी
0: ऐसा होता है। और मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताऊं, किसी से बताएंगे तो नहीं?
1: जी बताइए।
0: बताइएगा नहीं? पक्का पहले पिंकी प्रॉमिस करिए, बिल्कुल नहीं बताएंगे ना?
1: जी नहीं।
0: मेरा सारा बचपन ना, सारी छुट्टियां नानी हाउस ही बीती है। सर्दी की छुट्टी नानी हाउस, गर्मी की छुट्टी नानी हाउस। और मजे की बात है कि यहाँ लोकल मेरी नानी का घर नहीं था, अच्छी खासी दूर था, तो मैं अपने घर से ज्यादा तो अपनी नानी के हाउस में पाई जाती थी। इसीलिए शायद अपने मामा मामी की बड़ी दुलारी थी हूँ, आज भी हूँ हूँ। तो जहाँ कभी भी ये बात होती है कि बहनें आई हुई हैं तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, भांजे भांजे आए हुए हैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। यकीन जानिए वो आज से सामान नहीं मांग रहे, वो मेमोरीज बना रहे हैं, यादें बना रहे हैं। तो खूब एंजॉय करिए और मुझे बता दीजिए कि गाना आपने कौन सा सुनना चाहा है।
1: जी गाना सुनना चाहेंगे, अगर इस दुनिया में जाने मिलते हैं।
0: अच्छा जब आपके भांजे भांजी आपको परेशान करने लगते हैं तो आप कैसे

0: डील करते हैं? डांटते हैं
1: जी,
0: डांट देते हैं और पिटाई
1: जी, नहीं, नहीं,
0: पिटाई
1: डांट देते हैं
0: पिटाई तो नहीं करते
1: जी।
0: पिटाई करते हैं कि नहीं करते?
1: पिटाई कम करते
0: लेकिन कर लेते हैं
1: जी।
0: वैसे आप करते क्या है, पढ़ाई करते हैं कि काम करना शुरू कर दिया है?
1: जी पढ़ाई कर चुके हैं, काम कर रहे हैं।
0: क्या काम करते हैं दोस्त आप?
1: हेलो
0: जी, क्या काम करते हैं दोस्त?
1: जी मेरी परचून की दुकान है।
0: तो भाई बढ़िया से अपनी दुकान से अच्छी अच्छी चिज्जी खिलाते रहिए अपने भांजे भांजी को, उनके चाइल्डहुड को, उनके बचपन को मेमोरेबल यादगार बनाते रहिए।

0: जी पढ़ाई कर चुके हैं, काम कर रहे हो?
1: क्या काम करते हैं दोस्त आप?
0: हेलो
1: जी, क्या काम करते हैं दोस्त?
0: जी मेरी परचून की दुकान है।
1: तो भाई बढ़िया से अपनी दुकान से अच्छी अच्छी चिज्जी खिलाते रहिए अपने भांजे भांजी को, उनके चाइल्डहुड को, उनके बचपन को मेमोरेबल यादगार बनाते रहिए और अपनी पसंद का गाना रेनबो के संग गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय।
0: थैंक यू।
1: बातें अभी पूरी नहीं हुई है, ढेर सारी बातें आपसे करनी थी, कुछ आपकी सुननी थी, कुछ अपनी कहनी थी, लेकिन ये जो घड़ी है ना, कहते ना कि वक्त कभी किसी का नहीं हुआ, लेकिन ये जो वक्त आपके साथ बीता ना, वो बीता बड़ा खूबसूरत, बड़ा मीठा मीठा। 7:55 हो गए हैं, तो अब ज्योति चाहेगी आपसे इजाजत। अगर आज आपका फोन नहीं मिल पाया, नेवर माइंड, कल ट्राई कर लीजिएगा, ये प्रोग्राम तो हर दिन आता है ना। सो ऑन दिस नोट मैं चली, बहुत जल्द फिर मुलाकात करूंगी आपसे लेट नाइट शोज में। और हाँ, वादे के मुताबिक अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार तैयार सदाबहार है अनवारुल हसन। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा आफ्टर दिस सॉन्ग।
2: तारीफ कर रही हूँ आगे पीछे, क्योंकि आपने वो जो चिज्जी वाला वर्ड बोल दिया ना, तो हमने कहा जिज्जी चिज्जी हमको भी खिला दो।
1: चलिए ये जिज्जी अपने बस्ते में जो चिज्जी लेकर आई अभी आपको खिलाती है। तो भाई एंजॉय करते रहिए आप सब, और ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला यही जारी रहने वाला है अनवारुल के साथ से।

0: नमस्कार। रात के 8 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार शासन ने जनहित में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया है। राजीव कृष्ण वर्तमान में निदेशक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के पद पर कार्यरत होने के साथ साथ कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे। इस नियुक्ति के बाद पुलिस महकमे और शासन स्तर पर कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। रामपुर में रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय द्वारा कबीर जयंती के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पुस्तकालय के निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनी में संत कबीर के जीवन, दर्शन, काव्य, लोक चेतना और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में उनके अमूल्य योगदान से संबंधित दुर्लभ सामग्री का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य संत कबीर के विचारों को जन सामान्य, शोधार्थियों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी

किसी की राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। मुस्कुराते हुए वक्त के शफाक दामन में लिपटी खुशबू की सौगात लेकर दिल के

दरवाजे पर ना जाने कौन आया था जो मेरे एहसास की जंजीर हिलाकर चला गया। हवा में अभी तक उसकी आहट है और इसीलिए आज हवाओं में थोड़ी सी ठंडक भी आपको महसूस हो रही है। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर आबशार में आज मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ। कीजिए हमारा आदाब।

तड़े मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं दरिया हूं, मुझे मंजिल पता है, समंदर में उतर जाना है मुझको, अब इतना काम कर जाना है मुझको, मैं खुशबू हूं, बिखर जाना है मुझको। और किसी को याद करते हुए देर तक जागना और आंखों में कुछ छुपा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी खूबसूरत आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्यों ना इन खूबसूरत से मोतियों को जो कभी कभी तुम्हारे नैनों में छलक आते हैं रोक लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में मोती पलते हैं। समंदर की तलहटी में पलते हुए मोतियों की सौगात तो कभी खुशबू की मानिंद बिखरते इंसानी जज्बात। 8:19:28 प्रोग्राम आबशार, आप सुन रहे हैं जी हाँ, अनवारुल हसन के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

क्या लगता है, तुम बता नहीं रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जज्बात का इजहार करने में अक्सर अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी जब कोई फसाना जुबान पर लाया ना जा सके तो भी माथे की शिकन, होठों की मुस्कुराहट या सपाट चेहरे पर बनते बिगड़ते जो नक्शे हैं, वो दिल का हाल आया कर देते हैं। इसके बाद भी कोई अनजान बना रहे तो फिर इसमें खता किसकी, आप खुद तय कर लीजिए। अनजान तुम बने रहे ये और बात है, ऐसा तो क्या कि तुमको हमारी खबर ना हो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आज 8:32 हो चुके हैं, जब रात की हवा चुपके चुपके से बातें करेगी, जब शहर के चिराग थोड़े धीमे धीमे रोशनी में ढल जाएंगे, मैं वापस लौट आऊंगा। वो वादे जो हमने अंधेरों में किए थे, उनका हिसाब लेकर लौटूंगा। इसलिए घबराना मत, बस इंतजार करना। हर कदम जो मैंने यहां छोड़े थे, उनके निशान भी, उन्हें निशान को मैं रास्ता बनाकर लौट आऊंगा। बस तुम खिड़कियों पर खड़े होकर इंतजार करना, और अगर हो सके तो दरवाजों को बंद मत करना, वो दरवाजे जिनसे वापसी हो सकती है।

खिड़कियों से महक आती रहेगी तुम्हारी सांसों की तरह, और रास्ता तकती रहेंगी तो अदद सूनी आंखें। अगर तुम सो जाओ तो ख्वाबों में मिल लेना, और अगर जागती रहो तो रोशन एक रात जो और रोशन हो जाएगी। तब मैं लौट आऊंगा। आज बजकर 40 मिनट और 41 सेकेंड, मैं सचमुच लौट आऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे। 9 बजे लौटेंगे पॉप टाइम के साथ, और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक एक खुशबू महसूस करेंगे रजनीगंधा की। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, अपने दोस्त अनवारुल हसन को, बहुत जल्द लौटते हैं। तो बस अभी सवाल मत कीजिएगा कि कब लौटेंगे, लौटेंगे यकीन रखिए। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से

0: पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinderveer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing

बस हम जरूर ये कामना करते हैं। अगला मेल पढ़ देते हैं। पूजा पाल ने हमें ये मेल किया है। मैं मिर्जापुर संधना सीतापुर से हूँ, लेकिन इस टाइम भिठौली लखनऊ से सुन रही हूँ। भिठौली हमें मालूम है, ऊपर से वो ओवरब्रिज बनाया वहाँ पे। मेरे साथ और भी लोग सुन रहे हैं, नाम ले लीजिएगा। बिल्कुल ले लेंगे। आपने लिखा है शशि किरण, और इस टाइम हम लोग ड्यूटी पर हैं। कौन सी ड्यूटी कर रही हैं आप? ड्यूटी पर तो हम भी हैं, आप भी तो गाने नहीं बजा रही वहाँ कहीं। अच्छा, हम बजाने वाला काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे आप सुनने वाला। चलिए, ये अच्छी बात है। अगर आप ना सुनते तो भी सुनता कौन? तो फिर अच्छी है आपकी ड्यूटी भी कि आप हमें सुन रहे हैं। अशोक कुमार जी, आपका मेल भी पढ़ देते हैं। अशोक राज ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और आपने अपना पता लिख दिया है, रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से प्रोग्राम सुन रहे हैं। सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए, अच्छे लग रहे हैं तो हम एक सॉन्ग और बजा देते हैं, आप तक पहुँचा देते हैं। ये रेशम करुमाल लीजिए ना, अकबर ये तो पूछ लीजिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी 9:19 हो चुका है हमारी स्टूडियो की घड़ी में, 52 सेकंड भी साथ में, और मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ। इस वक्त 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम, और आपके बहुत सारे मेल हैं जो हमारे साथ हमारा साथ निभा रहे हैं और हमारा संबल भी हैं, हमें इससे पता चलता रहता है कि आप लगातार सुन रहे हैं। और अभी हमें लालपुर से, सीतापुर में लालपुर है, और वहाँ से अयोध्या प्रसाद जी ने मेल किया और बताया कि ठंडक वाकई बहुत बढ़ गई और चदरा ओढ़े बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है स्विमिंग पूल वूल में ना नहाइए, बल्कि थोड़ा सा कुछ हॉट हॉट पूल बना दिए। तो अरे हॉट हॉट पूल कोई नहीं, ये गाने बड़े हॉट हॉट हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए ना, तो फिर आपको गर्मी चढ़ जाएगी थोड़ी सी, मतलब मौसम ठीक हो जाएगा, है ना। ये एयर कंडीशन की तरह काम करते हैं, मतलब अगर गर्मी बहुत लगती है तो थोड़ा सा ठंडक पहुँचा देते हैं, और अगर आपको ठंडक लग रही है तो फिर थोड़ी सी आपके अंदर गर्मी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और साथ में आपके हरिशंकर जी भी सुन रहे हो, जब तक कह रहे मैं सुनता तब तक सुनते हैं, क्योंकि ये पड़ोसी हैं इनके, तो ये दोनों लोग मिल के जो है रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त तो, और आनंद ले रहे हैं। और हमसे ये भी कह रहे हैं कि आप गाने कम बजाइए, बोलिए ज़्यादा, कह रहे हैं आप बोलते हैं तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है। अब लीजिए फिर आपके मेल कैसे फिर पढ़ पाएंगे अगर हम बोलते रहेंगे तो, फिर है ना। तो गाना और सब दोनों चीज़ें चलने दीजिए। श्री गणेशाय नमो, पॉप टाइम, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहली हमारे तरफ से अनवारुल हसन जी को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। भाई वाह वाह, इसकी बड़ी ज़रूरत है मेरे लिए मुझे। और आप जो गाना सुना रहे हैं वो सुपर हिट है, भाई वाह, हम गाने ऐसे ही बनाते हैं। और देखिए एक फरमाइश इन्होंने लिख दी है, फरमाइश वाले प्रोग्राम देखिए, नहीं है गाना अच्छा है वैसे, ऐसे मौसम में चटनी और फुलौरी खाई जाती है, लेकिन अब तो खाने का टाइम आ रहा है भाई, और कुछ लोग तो खा भी चुके होंगे। चलिए वो गाना किसी और दिन, हम ऐसे समय पे आए ना जिस टाइम थोड़ा सा नाश्ते वाश्ते का टाइम हो, तो हम ये गाना ज़रूर बजाएंगे और इसी से शुरू करेंगे, और ऐसे ही सब खाने पीने वाले फुलौरी बिना चटनी और चना जोर गरम और ये सारे गाने ढूंढ के ले आएंगे, ठीक है। और वो क्या है, वो चाय पे बुलाया है वाला गाना ही बजा देंगे, शायद मेरी शादी का ख्याल, तो सारे खाने पीने पे गाने बजेंगे उस दिन। सबसे पहले आप द्वारा जो भी प्रोग्राम प्रेजेंट किया जाता है तो वो अच्छा लगता है। ये ब्रिजलाल जी लिख रहे हैं, भाई मुझे कितनी खुशी हो रही सुन के, ये समझ हम भी रहे थे कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर अब आपने कह दिया ना तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। आप आबशार में जो चार चांद लगा देते हैं, शायद ऐसे अन्य भैया, ये हम भाई नहीं कह सकते कोई और नहीं लगा पाता, हाँ हम जरा सा थोड़ी सी चमक ज़्यादा ले आते हैं, हमारे पास जो पॉलिश है ना वो बड़ी अच्छी कंपनी की है, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो आपने मुझे एक खिताब भी दे दिया है। अब देखिए अब आप लोग जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं ना तो हमें लगता है हम अकेले बेकार बैठे हैं, कोई और हमारे साथ बैठा हो तो अभी हम उसको इशारा कर देते, देखो हमारी तारीफ़ आ गई, ज़रा पढ़ डालो पूरा। अब हम खुद अपने आप पढ़ें तो अच्छा नहीं लगेगा, आपने आरजे नंबर वन कर दिया, देखिए हमने पढ़ भी दिया। आपका रजनीगंधा की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ऑल लिसनर टू यू, और आपका फ़ैन, कूलर, एसी, सब कुछ। अरे वाह क्या बात, और आपने बढ़िया सा एक इमोजी बनाया जिसमें हेडफोन लगा हुआ और सुन रहे हैं। रजनीश पासवान जी ने ये मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, दिल से दिल के तार ऐसे ही बस जो

छोड़ कर रखिएगा, मोहब्बत की बहुत कमी है संसार में धीरे धीरे, लेकिन इस कमी को कभी कमी मत रहने दीजिए, कम मत रहने दीजिएगा, इसको बढ़ाते रहिए, इससे सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। किसान पथ तिवारीगंज स्प्रिंग गार्डन लखनऊ से आपने हमें ये मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगला मेरे पास देते, ये पीछे वाली आवाज़ जो कम कर देते हैं ना, ये वाली तो अच्छा ही लगता है, कम से कम लगता है कोई और बैठे है तो इसे डर नहीं लगता। मैं बताता हूँ, मैं इसीलिए बजाता हूँ पीछे, ये बजता रहता है तो लगता है कि अकेले नहीं बैठे हैं, कोई और भी है पीछे, सारे साजिंदे और सब बैठे बजा रहे हैं। तेज बजा भाई, ठीक जी। राजकुमार राजकमल यादव जी, आपका भी मेल आ चुका है। राजकमल यादव ग्राम मैंने अभी अच्छा आपका नहीं पढ़ा था, ग्राम बरैया सूरतगंज बाराबंकी से आपने लिखा, प्यारे सर जी प्रणाम, कैसे हैं? अरे हम भी बहुत अच्छे और आप भी बहुत अच्छे, और अच्छे लग भी रहे, आपकी शक्ल मुझे दिख रही है, वाह वाह क्या बाल है आपके, कंघी करके नहा धो के बिल्कुल लगता बैठे अभी आप। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है सर जी और आप बहुत अच्छे हैं। अब देखिए अब इसमें हम क्या कहें। और इसने लिखा है कि मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ, मेरा लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया, ये कह रहे हैं कि जो हम ड्रिंक करके या शराब पीकर वाहन चलाते हैं वो ना चलाएं, और ये कह रहे हैं कि अगर पीना भी है तो अपने घर पर थे तो बस वहीं फिर रहें फिर पीने के बाद, चलिए ये बात हम मान लेते हैं। और लिखते हैं कि मेरी वाइफ संगीता यादव और मेरी बेटी है शालिनी यादव, आपको नमस्ते बोले, नमस्कार, और कह रहे हैं कि सर आकर भुट्टे खा लीजिए। उफो, चलिए आपने पता देखिए नहीं बताया है, सूरतगंज बाराबंकी में हम ढूंढते रहेंगे कि भुट्टे वाले राजकमल यादव जी कहाँ रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमको, भुट्टे तो बहुत पसंद हैं, काफ़ी पहले एक जगह हमने खाए थे उनके यहाँ पर, खेत में थे, खेत से तोड़ के, वैसे भुट्टे आज तक मिले नहीं हैं वैसे हमको, क्योंकि मार्केट में जो भुट्टे बिकते हैं बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता कि कब कितने बासी हो गए, ऐसे भुट्टे भी हैं, पाइनएप्पल भी है जिसे अनानास हम कहते हैं, और बहुत सारे लोग अनानास इसीलिए नहीं खाते, उन्हें लगता है इसको छीलें कैसे, तो जिसको जिसको दिक्कत हो अनानास छीलने में तो वो हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे आसानी से कैसे छीलता है, घर में हमारे हमें को दिया जाता है, तो ऐसे काम जो थोड़े मुश्किल वाले होते हैं वो हम ही करते हैं, है ना, तो फिर हम आपको ही बता देंगे कैसे छीलेगा। शिवराज जी आपका मेल भी पढ़ देता हूँ, मेरा नाम शिवराज है, बबूरिया जैनाबाद जिला बाराबंकी से है, और सर जी कोई भी गाना सुना दो, और आपने बीच में कुछ और भी लिखा है हम उसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी फरमाइश हो जा रही, देखिए फरमाइश वाला प्रोग्राम नहीं है, मजबूर ना करिए हमको, हम गाना बजा दे रहे हैं अब, ठीक ये वाला बजा दें, कोई झगड़ा झगड़ा हो रहा, कान बंद कर लीजिए, गाना जब शुरू हो तब सुनिएगा।

अरविंद दुबे जी ने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें लिख भेजा है ये मेल। और हेलो, आपने लिखा है हमें, नमस्कार अनवारुल सर, वैसे तो मेरा मेल हमेशा शामिल हो जाता है, फिर भी विशेष आग्रह है कि मेल शामिल करें। और जो गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने लिखा है कि अपनेपन वाले सारे गाने हैं जो बवाल मचा रहे हैं, और हम सभी पूरे परिवार के साथ रेनबो के कार्यक्रम सुनते हैं। गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी भी मिलकर सुन रही हैं, और अरविंद दुबे जी ने हमें ये मेल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। ओहो, इतनी देर में ये सौदा जहाँ तक हो रहा था ना, तो ये इतने मेल हमारे पास आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए भाई। अब तो होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छू के गुजर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। आए है क्या बात है, आपने तो रजनीगंधा वाला माहौल बना दिया। आनंद तिवारी जी ने हमें यह दारू कोया मल्लावा हरदोई से मेल किया, और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल कोयल जैसी, कोयल जैसी, वाह वाह वाह वाह, कौवे जैसी होनी चाहिए, देखिए वैसे हमारी आवाज़ तो। निर्मल गुप्ता जी, आपका भी मेल आ चुका है। प्रिय आरजे अनवारुल हसन जी, नमस्कार, पॉप टाइम सुनते सुनते मन में एक सवाल आया, इसलिए सोचा कि आपको भेज दूं। लिखा है कि अगर आपके पास 15 आम हो और मैं 5 आम, अब पढ़ने लिखने से तो हम भाग के यहाँ आ जाते हैं, और आपने अब यहाँ भी हमको जो है पढ़ाई लिखाई वाला देखिए काम दे दिया, हम बताए तक कुछ नहीं, अब पढ़ दे रहे हैं पहले से, अब मुझे पता नहीं आगे क्या पूछ लें भाई, मुश्किल सवाल है। अगर तुम्हारे पास 15 आम हो और मैं 5 आम और मांग लूँ तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अच्छा, आप जवाब दे दिया है, तो छात्र ने कहा कि 15 आम, तो उनका वो कैसे, क्योंकि मैं आपको आम दूंगा ही नहीं। अच्छा, ये उस तरीके हैं, मतलब टीचर से डरते वरते नहीं है। और एक शेर लिखा है कि हंसी बांटने का हुनर सबके पास नहीं होता, दिल जीत लेने का असर सबके पास नहीं होता, ये तो मिल जाते हैं दुनिया में बहुत लोग, मगर पॉप टाइम जैसा सफ़र सबके पास नहीं होता। आपकी शानदार मेज़बानी यूं ही जारी रहे, आपका श्रोता निर्मल गुप्ता, ग्राम भेटिया, ज़िला लखीमपुर खीरी। चलिए, आपके जो मन के उद्गार हैं हम स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सुशील कुमार यादव जी ने मेल किया है हमें करनलगंज गोंडा से, और लिखते हैं कि भारत में जब भी बारिश होती है तो आलू प्याज की ये जिम्मेदारी होती है कि बेसन की चादर ओढ़ कर गर्म तेल में कूद जाएं। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, और यही तो हम कह रहे थे कि अगर टाइम वाला होता ना थोड़ा सा नाश्ते वाला, तो फिर बन जाती चटनी अटनी फुलवारी के साथ। कौन पढ़ता है यूं बेवजह शायरियों को, कोई इनमें अपना दर्द तो कोई मोहब्बत ढूंढता है। तो रहिएगा हमारे साथ, देखिए हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा दर्द भी देंगे और थोड़ी सी खूबसूरत खूबसूरत मोहब्बत ही बांटेंगे। गुलशा सिद्दीकी ने हमें मेल कर दिया है, आपका मेल आ चुका है। सलाम अलैकुम अनवारुल भाई, मैं गुलशा सिद्दीकी, संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे यहाँ आंधी आई थी, बारिश हुई थी। भाई वाह, बड़ी देर में खबर दी आपने, मौसम बहुत सुहाना है। साथ में साहिबा जो हैं साबिया अंसारी हैं, साजी अंसारी हैं, शमा परवीन हैं, महक अंसारी हैं, ममता गौतम, निशा अंसारी, रोशनी रावत, और हम सब लोग सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं। सराहनीय प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रोग्राम एकदम खरा खरा। और ये भैया मोनू सेठ ने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं और आपने हमें मेल किया। अगला मेल एमन नवाब, आपका भी आ चुका है। हाय सर, साथ में कोई लेकर आया करिए, जिससे लिख रहे हैं कि साथ में कोई और लेकर आया करिए जिससे आपकी तारीफ वो पढ़ दे। हम आपकी तारीफ करें और वो पढ़ दे। अगर पीछे से कोई कहे हाय अरमानो सर कैसे हैं आप, तो मैं भूत हूं, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? नहीं, हम तो अब इतनी बातें ना करिए, ये शब्द ना लिखिए, कोई शब्द कहते रात में ना कहो ना। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, रजनीगंधा का इंतज़ार है। चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई, डरिए मत, हम हैं जब तक रेडियो सेट पे, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। राशि, आपका भी मेल आ गया है, पॉप टाइम लिखा है, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर जी, आप कैसे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी दोस्त रूठ गई हैं हमसे, सर जी आप बोल दीजिए उनसे, हम माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी सॉरी, वो सुन रही हैं प्रोग्राम पक्का, सर जी बोल दीजिए।
तो भाई राशि ने ये कह दिया है और खुद सॉरी बोल दिया, और कोई अगर ऐसे कह दे, सिर्फ सॉरी नहीं बोला है, सॉरी तो लोग रस्मों की तरह से बोल देते, लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल कर दिया ना कि हम माफ़ी मांग रहे हैं उनसे, तो ये वाकई थोड़ा सा मन के उद्गार हैं आपके और मन से आपको लग रहा है। तो जो भी भाई राशि आपकी सहेली हैं और सुन रही हैं, तो अब सब मामला रफा दफा कर दीजिए और सब ठीक कर लीजिए, ठीक है। और ये सब होता रहता है दोस्ती में, इस सब को ज़रा सा दिल से मत लगाइए। और राजेश कुमार जी ने कहा कि सर आपको प्रणाम, अभी हम खाने में खीर बनाने जा रहे हैं। हमने पहले कई बार कहा कि देखिए इस तरह की बातें ना किया करिए, खासतौर से इस टाइम, क्योंकि ये खाने वाला टाइम होता है, खाना हमको मिलता है बहुत देर में रात में जब हम यहाँ आते हैं, तो है ना, तो थोड़ा सा आप समझिए। तो लिखा है कि आपको अगर पसंद आए तो आ जाइए मेरे गाँव कुर्सठ हरदोई। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको सर अंडे छीलने अच्छे से आते होंगे। जी हाँ मुझे आते हैं, आप एक डंडा लीजिए और अंडे पे मारिए, छिल जाता है ना। तो अब किसी दिन करके भी दिखाएंगे आपको। आगे एक मेल और पढ़ देते हैं, उसके बाद चलिए। आपने अच्छी बात है, हमने पूछा भी था, कहा भी था, बहुत से काम हमको आते, मौसम में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अरे ये कौन हो गया बेचैन इतना भाई मौसम से। अच्छा, मन तो बहुत ही बेचैन हो जाता है दिन भर जब इतना ताप रहता है, और रहने के बाद भी जो है सफलता पूरा कोई काम नहीं होता। वैसे तो मेरा पेमेंट ATM में फंस गया है, 5 दिन से अभी रिटर्न नहीं हुआ है, बैंक वाले को बता दीजिएगा। अब बैंक वाला कौन है ये हमें कैसे पता। वैसे बैंक वाले हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई बैंक वाले हमारे अच्छे दोस्त हैं, और एक बैंक वाले तो अभी हमें सुन भी रहे हैं, हमें पर्सनल संदेश आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो अब आप, अब हम क्या बताएं उनको, तो उन्होंने सुन लिया होगा, भाई बताइए कि ATM में पेमेंट फंस गया है तो कैसे मिलेगा। देखिए अगर आपने, मैं आपको ये बता दूं, कभी कभी आप ATM से पैसा निकालते हैं, ATM से पैसा नहीं निकल पाता और मैसेज आ जाता है, वो पैसा आपका कहीं नहीं जाता अगर नहीं निकला है तो। वो अगर मैसेज आ भी गया है निकलने का और पैसा बाहर नहीं आया, थोड़ी देर वेट ज़रूर कर लीजिए, देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं नीचे आकर फंस गया है वहाँ पर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका एक समय अवधि है, उसके अंदर आपका पैसा वो वापस आपके अकाउंट में शो करेगा। और ये मेल किसने किया है, हमें शत्रुघ्न मौर्या जी ने किया है, विलेज मंसूर नगर बस्ती से हमें ये मेल किया है। तो धीरज रखिए आप, और आपके साथ बुरा ना हो, हम सब यही कामना करते हैं। गाना बजा देते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: जी 9:41 हो चुके हैं, पॉप टाइम। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ, और आपके बहुत सारे मेल हमारा दे रहे हैं साथ इस वक्त, और कुछ पॉप सॉन्ग हैं जो बहुत पॉपुलर हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जी मेल पढ़ देता हूं मैं, काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे होंगे कि आपको थोड़ा सा समय हो गया। 19 मिनट पहले आपने मेल किया है। राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहरा थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से आपने मेल किया है। कल हम गुजरे थे बख्शी के तालाब से, काफ़ी आगे तक गए थे। ज़िला लखनऊ से कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। अनवारुल सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, और कोई गाना बजा दीजिए, आपने एक फरमाइश की है। देखिए उस फरमाइश पर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम ही नहीं है। कार्यक्रम जो है रेनबो कैफ़े को पूरे सप्ताह शुरू किया जाए। जी रेनबो कैफ़े मैंने पहले ही बताया कि मंगलवार और शनिवार अब केवल 2 दिन आप तक पहुंचता है, और बाकी दिन पॉप टाइम है इस वक्त 9 से 10 के बीच में। हाँ, आप कार्यक्रम संबंधी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो जाहिर है आपको हमारे अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा, या आप बुधवार को जो प्रोग्राम सुनते हैं संदेश आपके गीत हमारे, तो अगर उसमें हमारे अधिकारी मौजूद हैं तो फिर आप ज़रूर अपनी बात वहाँ कहिए और उन तक पहुँचेगी, तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। हिमांशु, सुधांशु, सुमन, मम्मी, रामावतार और सारे परिवार मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रपाल मिश्रा जी का भी संदेश आ चुका है, और इन्होंने कहा है कि तंबाकू निषेध दिवस की बात आप कर रहे हैं मिश्रा इंद्रपाल जी, और सुख समृद्धि हो देश में, रहें सभी खुशहाल, बीड़ी तंबाकू और शराब कर देते जिंदगी खराब। आपने एक संदेश भेज दिया है, ये संदेश हमने ऑनियर भी कर दिया है। संदेश वाकई बहुत अच्छा है, थोड़े में आपने काफ़ी अच्छी बात कह दी, और पहले भी कहते थे कि चिट्ठी को तार समझना, थोड़े को बहुत समझना, ये कुछ उसी तरह से है। विनीत कुमार जी आपका तो मेल हम पढ़ चुके थे कि

आपका एक और मेल देखिए आ चुका है। आप कह रहे हैं कि एक बात रह गई थी खाने को, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको भी या हमारे दोस्तों को भी ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे दिखता है कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे भूख लगती। अरे समझ नहीं, कोई कोई कॉमा और फुल फुल स्टॉप नहीं लगाते ना बीच में, तो कभी कभी समझ में नहीं आ पाती मुझे बात। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि क्या आपको भी यो हमारे दोस्तों को ऐसा होता है कि जब सोता हूँ तो मुझे दिखता है, अच्छा सोते में दिखते हैं और खाना खाने के बाद भूख लगती है। जी हाँ, मुझे सोते में बिल्कुल दिखता है, सपने दिखते हैं मुझे सोते में, और कभी कभी जागते में भी कोने में बैठ के हम देख लेते हैं। जब लंबा गाना होता है तो हम सपने में सोच लेते हैं बहुत सारी बातें, अब आपको ये नहीं बताएंगे हम क्या सोचते हैं, इसीलिए हम हंसते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आपने अपनी बात कह दी। अजय सिंह जी, आपका भी मेल प्रकट हुआ। अजय कुमार ने सीतापुर से हमें लिखा है कि गुड इवनिंग प्रिय आदरणीय। अरे वो इतना सम्मान दे दिया, अजीज भी लिख दिया, आदरणीय भी कर दिया। आर्य अनवर सर जी, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। सर मौसम बहुत अच्छा और आप गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, अभी और अच्छे बजेंगे, थोड़ा सा और हमारे साथ रहिए, जितनी देर तक आप रहेंगे उतनी देर आपको देखिए मज़ा आता चला जाएगा। सर जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, रजनीगंधा स्पेशलिस्ट आप मुझे कह रहे हैं, सर बहुत मज़ा आने वाला है आज। चलिए उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको ही मज़ा आएगा और हमको भी डर नहीं लगेगा किले में। डियर आर्यन वारुल जी नमस्कार, कृष्णकांत जी ने हमें ये मेल कर दिया है। भीगी भीगी सुहानी रविवार की शाम है और रेनबो पर एक बार फिर से हाजिर हैं आप पॉप टाइम प्रोग्राम लेकर, जो हम सभी श्रोताओं का मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है। तो क्यों ना इसी खुशी में हमारे कैसरगंज की मशहूर मिठाई काला खुरमा खाकर मुंह मीठा किया जाए। काला तो इतना नहीं होता है, थोड़ा सा हाँ डार्क जरूर होता है भाई, और हम ही ने आपको बताया कि हम जब वहां से निकलते हैं तो ये मिठाई हम जरूर वहां से लेते हैं, है ना। और पॉप टाइम प्रोग्राम में प्ले होने वाले धमाकेदार म्यूजिक को एंजॉय कीजिए, किया जाए कुछ मुंह मीठा करके, आपने लिखा है। बिल्कुल, अगर खाना वाना खा चुके हैं थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, कृष्णकांत जी ने कैसरगंज बहराई से हमें लिखा है। और गिटार और सितार और ये पपीरी पीरी जो पीपी पीपी बजती हैं सब बना के भेजी हैं, है ना। तो हमने आसान भाषा में बता दिया क्या क्या बनाया आपने, और मुझे लगता है अच्छा 45 हो गया है, मेल तो और भी आ गए हैं भाई, तो पढ़ दे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे लीजिए हमारा मेल ही नहीं पढ़ा था, हमारा रह गया था, तो भाई रह ना जाए आपका। गुलाब कश्यप जी, आपका मेल एक पढ़ देते हैं, उसके बाद एक गाना हम प्ले करेंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग, मैं गुलाब कश्यप फ्रॉम रामपुर राय पोस्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हो, गाने लाजवाब हैं, आपकी प्रिय वाणी मन को मोह लेती है। आय हाय हाय, क्या प्रिय वाणी है। चलिए बस देखिए, ये आप लोगों को जो मोहब्बत है ना, आपका जो प्यार छलकता है, तो बस मन से कुछ भी कीजिए, मन से कीजिए, है ना, तो वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आप जब बात करते हैं आप अपनेपन से, यही चीज़ें रह जाती हैं। हर इंसान के पास एक लिमिटेड समय है, आपके पास भी हमारे पास भी, और कहाँ वक्त है किसी के पास कि कोई किसी को क्यों सुने। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेडियो बजाकर लगातार सुनते रहना तो एक कारण होना चाहिए, और हर आरजे को भी पता होना चाहिए कि कोई हमें क्यों सुने। अगर ये नहीं पता है तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस यही कोशिश करते हैं और आप ही लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं कि आप हमें क्यों सुन रहे हैं। गाना हम एक प्ले कर देते हैं फिर आते हैं। कुछ हो गया है, देखिए इनके यहाँ आज लाइट चली गई है, लगता है इनके यहाँ आंधी के बाद।

चलिए, अगर आज नींद उड़ी है तो फिर आप रजनीगंधा में हमारे साथ रहिएगा। जब 12 बजे जाएंगे तो फिर आपको इतना मजा आ जाएगा कि आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी, तो आप आराम से सो जाइएगा। 9:51 हो चुके हैं फिलहाल, और जल्दी से वो मेल जो आपके और बाद में हम तक पहुंचे हैं पढ़ देते हैं। एम के राज जी ने मेल किया है हमें जिला लखीमपुर खीरी से, गाँव भानपुर हरौवा से। आरजे जी को नमस्ते, और हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते सुनते हो गए कई साल हैं। और आपने लिखा है कि सुनते सुनते, अब देखिए हमें पढ़ना पड़ता है, जब आप कोई जोक या कोई ऐसी बात भेज देते हैं ना, तो एक बार मैं जब हूँ हम करते हैं ना, तो फिर ये मत समझिए ये हूँ करके हम पढ़ रहे होते हैं इसमें कि क्या लिखा है, वाकई पढ़ा जा सकता है क्या इसको। तो इनकी बेगम जो है वो कहती हैं, रेडियो सुनते सुनते कि रेनबो की आवाज़ सुनकर तुम खाना भी भूल जाते हो। तो मैंने कहा भूलूं कैसे, मैम का कार्यक्रम और खाने का टाइम। ये मैम हम, अच्छा ये हर बार हमको मैम बताते हैं, तो चलिए कोई अच्छी बात है, हम डबल हैं। एमन, अच्छा आपका तो मैंने पढ़ दिया था सर, सॉरी सेकंड ईमेल के लिए, जिसके साथ नेकी करती हूँ वही मुझे अच्छा इन्हीं को दरिया में डाल देता है। चलिए आप नहा लीजिएगा, मौसम वैसे भी थोड़ा सा बढ़िया है। सविता देवी जी ने लिखा है, सर जी आप बताइए, होते हम लोग मिलाते आपसे। सर जी आप बताइए, अच्छा ये मिलने के लिए कह रही हैं। अब आप इस टाइम क्या कहें, आप कभी दोपहर में मैं प्रोग्राम करूं या मॉर्निंग में करूं, तो फिर आप आइएगा, बिल्कुल मुलाकात की जाएगी। और तेज बहादुर यादव जी ने लिख दिया है कि हसन जी को मेरा प्रणाम, भला और कैसे हैं, सभी प्रोग्राम बहुत गजब चल रहे हैं, और आज तो सब सुनने वाले शायद शायर हो गए।

होंगे। गीत तो आपके जैसे मीठे मीठे लग रहे हैं, आपके बोल ही मीठे हैं, और आप कह रहे हैं कि रजनीगंधा में भी आपकी सुरीली आवाज सुनने को आतुर हैं। सुबह के कार्यक्रम में आप कब आएंगे? लेकिन उन्होंने लिख दिया, अब जब भी हमें भेजा जाएगा देखिए हम आ जाएंगे। तेज बहादुर यादव, ममता यादव साथ में है, और रायबरेली से हमारे पास ग्राम व मऊ शर्की से आपने हमको ये मेल किया, और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी जी ने मेल कर दिया है जाते जाते, और अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन सर, आज मेल थोड़ा देर से कर पा रहा हूँ, काम में व्यस्त था। चलिए कोई बात नहीं, और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा, और साथ में आपने जो ये बच्चा भेजा जो डांस कर रहा है, हम ये अकेले देख पा रहे हैं इसको, लेकिन ये बढ़िया है। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, अनवाल सर कैसे हैं? ज्योति दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम करके गई हैं। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ज्योति दीदी बड़ी अच्छा प्रोग्राम करती है, और हमें चिज्जी भी देके गई हैं। अनवाल सर जी, आपके लिए दो लाइन अर्ज करती हूँ। जिनकी याद में हम दीवाने हो गए, वो हमसे ही अनजाने हो गए, उसे तलाश है नए साथी की, क्योंकि उसकी नज़र में हम पुराने हो गए। स्नेहा सोनी रोशनी बबीता सारा पीहू मनु वंदना जी को मेरा नमस्कार बोल दिएगा। चलिए भाई, जिनको भी आपने कहा है सबको नमस्कार। और जावेद अख्तर साहब, आपका भी मेल मैं जल्दी से पढ़ दूं। लिखा है कि पॉप टाइम कार्यक्रम में आपका हंसमुख अंदाज कार्यक्रम की लज्जत बढ़ा देता है, और आपका लहजा इतना हसीन है कि बिल्कुल हम खो जाते हैं, बस तारीफ के लिए लफ्ज ढूंढ रहे हैं बरेली की झुमके की तरह। हाय हाय क्या बात है, क्या अंदाज है आपका भी। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशु कमर राही बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन, आपने ही हमको मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बत यहीं बनी रहे। एक मेल और पढ़ देते हैं भाई, अब आप लिखना बंद कर दीजिएगा क्योंकि अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे पढ़ पाएं। ग्राम तारा शिव से जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से मेला है हमारे पास। सर जी मेरा नमस्कार, ये कह रहे हैं कि आप कौन हो मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी एफएम रेनबो ट्यून किया है, और मैं अभी बदायूं के रेलवे स्टेशन से आपको ईमेल कर रहा हूं, और मैं रहने वाला हूं छत्तीसगढ़ से। वैसे मुझे लग रहा है कि आप अनवारुल भैया हैं, प्रोग्राम बहुत में बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे साथ है रमेश पटेल दिलीप विश्वकर्मा, और मैं आपका साथ पूरा 12 बजे तक दूंगा, ट्रेन में है ये। चलिए मनोज विश्वकर्मा जी, आपको पता चली गया है या नहीं पता चला है तो पता चल ही जाएगा, बस आपको ठीक लगती रहें चीज़ें। देखिए आकाश जी का मेल अभी भी आ गया, तो जल्दी से पढ़ देते हैं। इन्होंने मलियाबाद से रहते इतनी पास से वो मेल इतनी देर में कर रहे हैं, एक पंजाबी सॉन्ग सुना दीजिए तो मज़ा आ जाए। अब देखिए एक गाना हम पंजाबी बजा चुके हैं वैसे, है ना, और वैसे भी ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, और अब

चलिए मनोज विश्वकर्मा जी, आपको पता चली गया है या नहीं पता चला है तो पता चल ही जाएगा, बस आपको ठीक लगती रहें चीज़ें। देखिए आकाश जी का मेल अभी भी आ गया तो जल्दी से पढ़ देते हैं। इन्होंने मलियाबाद से, रहते इतनी पास से वो मेल इतनी देर में कर रहे हैं, एक पंजाबी सॉन्ग सुना दीजिए तो मज़ा आ जाए। अब देखिए एक गाना हम पंजाबी बजा चुके हैं वैसे, है ना, और वैसे भी ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, और अब प्लीज़ आप इस सिलसिले को यहीं रोक दीजिए मेल करने का जो सिलसिला है आपका, क्योंकि अब वक्त बस ख़त्म हो रहा है हमारा। तो बस एक गाना आप तक पहुँचा जाता हूँ। मुझे भी गाना जी बहुत ज़्यादा पसंद है और सोनू निगम जी की आवाज़ में ये गाना है। तो फिलहाल अनवारुल को इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर में लौटते हैं, खूबसूरत सी खुशबू महकने वाली है आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।

नगर की एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार के उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया। इस मौके पर एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह सहित एनटीपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधिमंडल को एनटीपीसी की विकास यात्रा म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली पहलों के बारे में जानकारी दी गई। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्व होने पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष ओमकार द्विवेदी ने प्रेस क्लब में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की महत्वपूर्ण मांग रखी, जिसे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पत्रकारिता के विकास की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। लखनऊ में चौक के लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारा में आज मेगा फ्री मेडिकल कैंप में 233 मरीजों को उपचार मिला। इसमें मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रही। शिविर में केजीएमयू के रेस्पिरेटरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत लोहिया, संस्थान के पेन मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर अनुराग सहित अन्य विधाओं के चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया। केंद्र के संरक्षक हरिजीवन रस्तोगी ने बताया कि मरीजों को उपचार के साथ निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने आज गौतम बुद्ध

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बनके पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM।

अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। रोशन हो रहे हैं आसमान के खुले दरीचे, ऐसा लगता है कि बहुत बेचैन है मोहब्बत के फरिश्ते। सबके सामने मन की बात कहने से अक्सर शर्मा जाता है चंदा, और राज खुलने के डर से घबराकर धरती पर उतर आती है मोहब्बत की मारी हुई एक और रात। ऐसे में रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो और अनवारुल हसन का साथ, स्वागत है आपका इस सफर में। नमस्कार।

0: दिल में कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी बस जाती हैं, खुली आंखों से भी बस वही दिखाई पड़ती हैं और बंद आंखों में भी कोई ऐसे ही समा जाता है। मेरे दिल में भी तुम्हारी वही तस्वीर साल दर साल हर सांस के साथ हर लम्हे में तुम्हारे नाम की तरह धड़कती है। कभी सोचूं तो दिल कहता है ये मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत है। तुम्हारी हंसी में वो चहक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन करते हैं। जब तुम करीब हो तो दुनिया का कोई भी गम महसूस नहीं होता। दुनिया की हर आवाज मध्यम हो जाती है, सुनाई भी नहीं पड़ती, सिर्फ तुम्हारी धड़कनें सुनाई पड़ती हैं। और तुमने वो पल दिए हैं जो किसी किस्से में मिलते हैं, कहानियों में सुनाई पड़ते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी ही मोहब्बत और तुम्हारी ही यादों का अक्स है जो अक्सर मेरी आवाज में दूसरों तक पहुंचता है। साल दर साल ये खूबसूरती यूं ही कायम रहे, ये मोहब्बत यूं ही कायम रहे और ये तस्वीर यूं ही बनी रहे, सजती रहे, संवरती रहे।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया ही जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं।

इसी को कहते हैं मोहब्बत की शिद्दत, कि आपको बार बार मिलने के बाद भी जब भी मुलाकात हो तो आपको लगे कि शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, और किसी से पहली बार मिलने के बाद भी लगे कि आपको तो एक लंबे वक्त से जानते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार मिले हैं हम। ऐसा होता है क्योंकि चाहत का जो सफर है इसमें जो रानाइयां हैं, जो मोहब्बत है, जो अंगड़ाइयां हैं प्यार की, वो इसे और भी आसान बना देती है। तुम हो तो हर रास्ता आसान है, और तुम नहीं तो हर रास्ता वीरान है, कुछ ऐसा लगता है। और इसीलिए मेरी जो दुनिया है वो तुम्हारी ही आंखों में बंद है, और तुम्हारा हर ख्वाब मेरे दिल की दुआ है। और इसीलिए तस्वीर तुम्हारी दिल में जब बसती है तो बस लगता है उसे कोई मिटा नहीं पाएगा, और दुआ यही है कि बस जहां भी रहो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, करीब रहो, मोहब्बत के धड़कने सुनाई देती रहे तुम्हें। 10:24 और 7 सेकंड हो चुके हैं। इश्क की खुशबू से गुलजार है रजनीगंधा का आंगन, और खूबसूरत रात के चेहरे से इस समा को नकाब हटा के और भी खूबसूरत बना रहा है। जी हां, आपका दोस्त अनवारुल हसन।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

काम काज और भाग दौड़ से भरी जिंदगी में अक्सर हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिल पाता, और अचानक सपनों के देश से आता है कोई और फिर झंझना उठता है दिल का हर तार, जागता है आंखों में खुमार, और इसी को तो कहते हैं पहला प्यार। ये पहला प्यार जब खूबसूरत आंखों में इतने ख्वाब जमा हो जाते हैं कि उन आंखों में नींद के लिए जगह नहीं बचती, सिर्फ खूबसूरत गुलाब खूबसूरत खूबसूरत से महकते हुए, ऐसे ही महकते हुए वक्त में रजनीगंधा सुन रहे हैं आप अनवारुल हसन के साथ।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। जब तुम सामने होते हो तो दुनिया कुछ कम नजर आती है, या साफ साफ नजर नहीं आती, या दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हर चीज रुक गई हो, ठहर गई हो, सांसें रोक ली हो मैंने अपनी। तुम्हारी हंसी में मेरे दिन की धूप है, नर्म गुलाबी और मेरे कल पर रोशनी डालने वाली। और इसीलिए तुम्हारे बिना ये सफर अधूरा सा लगता है, जैसे कोई शायरी बिना अल्फाज के रह गई हो। तुम्हारे साथ चलना, तुम्हारी बातें सुनना, बस वही लम्हा चाहिए। ना बहुत कुछ, ना कहीं शोर, और तुम्हारी आवाज और खामोशी। और इसीलिए तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, क्योंकि तुम हो तो सवेरा है, तुम हो तो बसेरा है, जहां हम अपने हर टूटे हुए ख्वाब को भी आराम दे सकते हैं। तुम वो सुकून हो जिसे

लंबे वक्त तक ढूंढता रहा। हर छोटी छोटी बात में तुम बड़ी खुशी बन जाते हो, वैसे ही जैसे चाय की वो गर्म प्याली, बारिश की कुछ बूंदें और उससे भी ज्यादा तुम्हारी आंखों की वो मासूम सी मुस्कुराहट। तो बस ऐसे ही साथ रहो, मौसम कोई भी हो, रातें कैसी भी हो, अंधेरी हो या चांदनी रातें, तुम हो तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। तो नहीं हो तो आ जाओ, इंतजार है तुम्हारा।

लेकिन कभी कभी मोहब्बत में ऐसा मोड़ भी आता है कि जब मोहब्बत का सहारा भी मिट जाता है और मंजिल का किनारा भी। दर दर भटकते मुसाफिर का फिर क्या हाल होता है। समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:55 हो चुके हैं, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनी गंधा सुन रहे हैं आप अनवारुल हसन के साथ। समाचारों के बाद एक बार फिर लौटेंगे हम।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात के 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंध में